ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि। तदनुसार 18 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर दो मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7 बजकर 2 मिनट से लेकर 9 बजे तक सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, 9 बजकर 2 मिनट पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने, 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10 बजकर 2 मिनट पर सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर।
1: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके
2: ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागात सीमा चौकी का दौरा करेंगे। सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच जारी संघर्ष तेज हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। गाजा में इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग

मारे गए और 22 अन्य घायल हो गए। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज वर्षा की संभावना जताई। हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इनका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। कुश्ती में पूर्व अंडर 17 विश्व चैंपियन नेहा ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिला वर्ग के 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 62 किलोग्राम वर्ग में मानसी ने रजत और सविता ने कांस्य पदक जीता। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सूरज के उठने से पहले उठ जाना तुम प्यारे, या फिर कान के पास आपके हम लगाएं गुड मॉर्निंग के नारे। सुप्रभात, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर शालिनी के साथ। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन गीत के साथ।

हम भी ये चाहते हैं कि भीगी भागी सी सुबह आपके पास आए और आपको गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाए, हम सबको गर्मी से राहत मिल जाए। स्वागत है आपका एक बार फिर से आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुप्रभात शालिनी के साथ। अहंकार रहित जीवन ही सच्चा जीवन है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को अपनी ही बनाई हुई सीमाओं और भ्रम में कैद कर देता है। अहंकार यानी घमंड से व्यक्ति का विवेक जो है वो नष्ट हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता, जिससे उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं। घमंडी व्यक्ति ना हमेशा खुद को हमेशा सर्वोपरि समझता है, सबसे बेहतर समझता है, और इस अति आत्मविश्वास के कारण ही ना वो नई बातें या ज्ञान सीखने का अवसर खो देता है। अहंकार में व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है और अक्सर गुस्से में आकर ऐसे कदम उठा लेता है जो बाद में विनाश का कारण बनते हैं।

बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी चलने का ही नाम है और इसीलिए हम भी चलते जा रहे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं सुप्रभात शालिनी के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। इसीलिए कहते हैं कि अहंकार रही जीवन ही ना सच्चा जीवन होता है, क्योंकि अहंकार जो है वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म करता जाता है। अहंकार के कारण मन में ईर्ष्या, क्रोध और असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जिससे आंतरिक शांति और खुशी खत्म हो जाती है। इतिहास गवाह है कि बहुत अंधकार या अहंकार ने बड़े बड़े साम्राज्यों और शक्तिशाली लोगों का भी नाश कर दिया है ना। तो जब इंसान घमंड से मुक्त होता है, अहंकार से मुक्त होता है, तभी उसे सच्ची स्वतंत्रता, मानसिक शांति और वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। अहंकार की वजह से हमेशा दूसरों से तुलना करता है वो, और श्रेष्ठ दिखने की चाहत जो है वो बनी रहती है, और इसको छोड़ने पर आंतरिक शांति मिलती है, जीवन आनंदमय हो जाता है। अहंकार जो है वो मैं ही सही हूं की भावना को जन्म देता है, रिश्तों में दूरियों को बढ़ाता है, और इससे मुक्त हो जाने पर विनम्रता आती है, रिश्तों में आपसी प्रेम होता है, विश्वास और सम्मान बढ़ता है ना। कहते हैं कि घमंड हूं, अहंकार हूं, गुरूर हूं, इंसान होने के ख्याल में मगरूर हूं, बंधा हूं माया के पाश में मजबूर हूं, रखता हूं पौरुष नर से नारायण होने का, मगर अभी खुद से ही दूर हूं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

लीजिए, हमने आपकी शिकायत दूर कर दी है और दूरियां खत्म हो गई हैं। हम आ गए एक बार फिर से आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर लेकर कार्यक्रम सुप्रभात। बात कर रहे हैं कि अहंकार रहित जीवन ही सबसे सच्चा जीवन होता है, क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, वो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करता। अहंकार मुक्त होने से व्यक्ति अपनी त्रुटियों से सीखता है और उसका स्वाभाविक विकास होता है। जो व्यक्ति अहंकार का त्याग कर देता है ना, वो सबके दिलों में राज करता है और समाज में उसे सच्चा सम्मान भी मिलता है, तनाव से मुक्त हो जाता है, उसे आलोचना से डर या गुस्सा नहीं आता और दिखावे के तनाव से मुक्त हो जाता है। अहंकार से मुक्ति के लिए आपको आत्म जागरूकता और ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे प्रभावी तरीका है आपके लिए जो आपको अहंकार से मुक्त कर सकता है। धीरे धीरे इसकी आदत बनाइए। चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि बूंद सा छोटा जीवन है, इसे नफरत में मत व्यर्थ करो। अहंकार को त्यज कर मन से तुम प्रेम का अमृत स्पर्श करो। सरल बनो, सहिष्णु बनो, बस यही जीवन का सार है। विनम्रता ही सबसे बड़ा इस मानव का श्रृंगार है। इजाजत दीजिए, नमस्कार, ख्याल रखिएगा।

0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा था कि हे गुरुदेव, आप हमें भगवान के द्वारा की गई सृष्टि लीला के बारे में बताइए। सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि का तत्व क्या है, भगवान कैसे ये लीला करते हैं? तो सृष्टि का तत्व बताने से पूर्व सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और हमने पिछले कई कार्यक्रमों में इन स्तुतियों पर चर्चा भी की। आज 22वीं स्तुति में बहुत ही सुंदर तत्व बोल रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी। कह रहे हैं, प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीम स्मृतिम हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषिणा मिषभः प्रसीदताम। भगवान की प्रसन्नता की कामना कर रहे हैं सुखदेव जी। देखिए, जिस प्रकार के भक्त हैं सुखदेव जी, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होंगे ऐसा तो सोचना ही अजीब लगता है, क्योंकि भगवान के लिए उनके हृदय में अपूर्व प्रेम है। और सुखदेव जी के जो शब्द हैं वो उसी प्रगाढ़ प्रेम से उत्थित शब्द हैं, जिन शब्दों से भगवान की वो स्तुति कर रहे हैं। आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। देखिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है ना। यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि भाई, आमतौर पर व्यक्ति ये सोचता है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा है ना। तो ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि को रचा है तो कई बार लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ही भगवत स्वरूप हो गए, भगवान हो गए। लेकिन यहां पर सुखदेव जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कल्प की जब शुरुआत हुई, कल्प एक समय का निर्धारण है सनातन धर्म में, तो एक कल्प में 4000 युग बीत जाते हैं। तो जब सृष्टि लीला भगवान ने की और उस कल्प का आरंभ हुआ, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि से संबंधित स्मृति जागृत कर दी और भगवान के द्वारा प्रेरित वेद रूपा सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकटित हो गई, शास्त्र प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, भगवत ज्ञान दिया। और वो जो सरस्वती जी प्रकट हुई, उनकी जुबान पर, उनकी जिह्वा पर, वो सरस्वती श्री कृष्ण जी को ही उपास्य के रूप में लक्ष्य करती हैं। यानी सरस्वती जी के भी उपास्य श्री कृष्ण हैं, सरस्वती जी भी श्री कृष्ण की ही आराधना करती हैं। तो ऐसे ज्ञान प्रदाता गणों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं श्री भगवान, वो मेरे प्रति प्रसन्न हो, यही कह रहे हैं सुखदेव जी। यानी जिस प्रकार ब्रह्मा जी के मुख से भगवान ने वेदों का प्रवर्तन किया था, उसी प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं कि प्रभु, मेरे मुख से आप अपनी लीला कथा स्वयं प्रवर्तन कराइए, यही आशा कर रहे हैं। यानी आपकी लीला कथा भला मैं क्या बोलूं, मैं जानता ही कितना हूं आपके बारे में। मैं बोलना भी चाहूं तो आपकी लीला कथा बोलने की शक्ति ही मुझ में भला कहां है। आप हैं असीम और मैं हूं ससीम, असीम की लीला असीम ही होती है, सिंधु की अपेक्षा गहरी होती है, विस्तृत होती है। तो प्रभु, जिस तरह से ब्रह्मा जी को आपने याद दिलाया कि सृष्टि कैसे करनी है, ब्रह्मा जी के श्रीमुख से आपने वेदों का प्रवर्तन कराया, इसी प्रकार से प्रभु अब मैं आपकी लीला बताने जा रहा हूं, सृष्टि लीला। तो वो लीला मैं भला कैसे बता पाऊंगा आपकी कृपा के बिना? तो आप ही मेरे मुख में आ जाइए, वक्ता बन जाइए, दिखूंगा मैं बोलता हुआ, सुखदेव जी कह रहे हैं। लेकिन प्रभु आप ही हैं असली वक्ता, है ना? तो आपने कल्प के शुरुआत में, आदि में, प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में स्मृति प्रकाश की थी। तो वो जो स्मृति है वो कैसी थी? वो स्मृति भगवान द्वारा प्रदत्त थी, भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान के ऊपर आधारित थी। तो हे प्रभु, आपने स्वयं तो कहा ही है उद्धव जी को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में कि प्रलय में काल की वजह से जब वेदवाणी नष्ट हो जाती है तो सृष्टि के प्रारंभ में मैं ही ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश देता हूं और उसमें मेरे ही प्राप्ति विषयक धर्म का उल्लेख हुआ है। देखिए, शास्त्रों में कहा भी गया है, पूर्वे ब्रह्मा जन्म लेन नाभि पद्म होइते, तथापि यो शक्ति नाही किछुई देखिते, तबे जबे सर्व भावे लैला शरण, तबे प्रभु कृपाए दिलेन दर्शन, तबे कृष्ण कृपाए स्फुरिलो सरस्वती, तबे से जानिला सर्व अवतार स्थिति, हेनो कृष्ण चंद्रेर दुर्गे अवतार, तान कृपा बिने कार शक्ति जानिबार। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु जी के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी, है ना? ब्रह्मांड के जो अंतर्यामी है, ब्रह्मांड के अंतर्यामी है गर्भोदक्षाई विष्णु जी, जो कर्णावदक्षाई विष्णु जी के अंश हैं, उन्हीं से प्रकट हैं। तो महाविष्णु जी से जो गर्भोदक्षाई विष्णु जी प्रकट हैं, उनके नाभि कमल से प्रकटित हैं ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी प्रकटित हुए तो उन्होंने अपने चारों तरफ जल ही जल देखा, क्योंकि प्रलय का जल था। उस समय उन्होंने घोर तप किया और घोर तप के परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए, क्योंकि कुछ भी देख पाने की उनकी शक्ति थी ही नहीं, उन्होंने तो जल ही जल देखा था अपने चारों तरफ। परंतु जब उन्होंने पूरी तरह से भगवान की शरण ली कि कोई तो है नियामक, कोई तो है, तो फिर भगवान की शरण लेने पर भगवान ने उनको दर्शन दिए और तब श्री कृष्ण ने कृपा की ब्रह्मा जी पर और उनके श्रीमुख से सरस्वती जी प्रकट हुई। तब वो समझ पाए कि समस्त अवतारों की स्थिति क्या है। तो ऐसे श्री कृष्ण के दुर्गे अवतार को भगवान कृष्ण की कृपा के बिना भला कौन जान सकता है, या वो किस प्रकार से सृष्टि करते हैं, किस प्रकार से सृष्टि का पालन करते हैं, किस प्रकार से संहार करते हैं, भला कैसे जाना जा सकता है अगर भगवान की ही कृपा ना हो? तो सुखदेव गोस्वामी जी वस्तुतः कह रहे हैं कि प्रभु आप कृपा कीजिए और आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए, क्योंकि आप ज्ञान के मूल कारण हैं, मूल कारण। इस जगत में जितना भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान हम किताबों से अर्जित करते हैं, स्कूलों में जाकर के पढ़ाई करके जितना भी ज्ञान हमें मिलता है, वो सारा ज्ञान तो पार्थिव ज्ञान है, जागतिक ज्ञान तो पार्थिव ज्ञान है, वो तो इस संसार में आवागमन बढ़ा देता है, वो तो संसार से छूटने का कोई उपाय नहीं बताता है। तो वस्तुतः वो ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में उसे अज्ञान कहा गया है। परंतु दिलचस्प बात यह है कि मनुष्य जीवन इस अज्ञान को एकत्र करने के लिए नहीं मिला है, है ना? क्योंकि देखिए, जो ज्ञान भगवान की तरफ ना मोड़े जो ज्ञान ये ना बता पाए कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं, शरीर में रहने वाले हैं, हम हैं, आत्मा है, हम देही हैं, पर हम देह नहीं हैं। जो ज्ञान ये बता ही नहीं पाए उसे ज्ञान नहीं कहा गया है शास्त्रों में, उसे अज्ञान कहा गया है। और शरीर हमें क्यों धारण करने पड़ रहे हैं, क्यों हमें बारंबार आना पड़ता है, बारंबार मृत्यु होती है हमारे शरीरों की, हमें क्यों बुढ़ापा, बीमारियां, तकलीफें, मौत ये सब झेलनी पड़ती हैं? हम नहीं चाहते कष्ट झेलना, पर हमें कष्ट झेलना पड़ता है, आखिर क्यों, कारण क्या है? तो कारण है द्वितीय अभिनिवेश। यानी प्रथम अभिनिवेश तो यही है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हमें मानव देह मिली है, भगवान को जानना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए भगवान ने बहुत ही कृपा करके हमें शास्त्र प्रदान किए हैं, हमें साधु गुरु वैष्णवों को प्रदान किया है, बहुत ही कृपा करके धाम प्रदान किए हैं। तो भगवान ने तो बहुत कुछ हमें प्रदान किया है, साथ ही सबसे बड़ी देन है ये मानव देह जो भगवान ने हमें प्रदान की है। क्यों प्रदान की है? उन्हें जानने के लिए, उन्हें जानने के लिए। तो जो ज्ञान उनकी तरफ मोड़े, जिस ज्ञान के द्वारा हम उन्हें जान पाए, वही है ज्ञान, बाकी है अज्ञान। और बड़ी ही विडंबना है कि हम अज्ञान की पढ़ाई करते करते अपने आप को कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, अज्ञान की पढ़ाई में डॉक्टरेट हासिल किया है हमने, तो हम पीएचडी हो जाते हैं, हम फिल हो जाते हैं, ऐसी पढ़ाई को करके, जिस पढ़ाई को करने से मात्र हम पेट भरते हैं या अपने शरीर की सेवा करते हैं, इंद्रियों की ही सेवा करते हैं, पर अपने बारे में नहीं जान पाते, ना हम अपनी ही सेवा कर पाते। हम हैं आत्मा, कैद है इस शरीर में, कैद है सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में। स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का है, हमें दिखाई नहीं देता, पर हम अज्ञान के कारण उसमें बंधे हुए हैं, इसीलिए हमारी अवस्था कहलाई जाती है बद्ध अवस्था। बद्ध अवस्था, हम बंधे हुए हैं। तो हम मुक्त कैसे होंगे? जब हम ज्ञान का आश्रय लेंगे। ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम भगवान को शरणागत भक्त जो हैं उनके चरणों का आश्रय लेंगे, और हम श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत जी जैसे ग्रंथों से ज्ञान को हासिल करेंगे, भगवत महिमा को जानेंगे, भगवान के प्रति हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होने लगेंगे, तो इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया है, हमारा जीवन सार्थक हो गया है। तो ये जो ज्ञान के मूल कारण है, कैसे ज्ञान, यूं तो देखा जाए समस्त ज्ञान के मूल कारण भगवान ही है। समझने की शक्ति उन्होंने दी है, बोलने की शक्ति उन्होंने दी है, देखने की शक्ति उन्होंने दी है ना, शब्द उनसे प्रकट है, तो सब तो उन्हीं से ही प्रकट है, तो मूल कारण हर प्रकार के ज्ञान के वही ही है। तथापि जिस ज्ञान को ज्ञान कहा गया है वो है भगवद ज्ञान, विद्या, भगवद विद्या, बाकी है अविद्या। और इस अविद्या में हम जितना प्रविष्ट हो जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, उतना ही हम दूसरे अभिनिवेश में फंस जाते हैं, स्थूल शरीर का अभिनिवेश। लेकिन जो प्रथम अभिनिवेश है, इसकी तरफ हम कभी भी मुड़ नहीं पाते हैं। परंतु मनुष्य देह मिला हमें उस प्रथम अभिनिवेश को पाने के लिए ही है। यह हमारा नैसर्गिक अभिनिवेश होना चाहिए, नेचुरल। क्या कि हम भगवान के दासानुदास हैं, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है ना। इसीलिए यहां पर जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु आप जो ज्ञान के मूल कारण है, आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए, आप मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें, क्योंकि आपका ही तो गुणगान करना है। मैं क्षुद्र जीव आपका गुणगान भला क्या कर सकता हूं। अगले श्लोक में भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव जी, जिस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। 23वें श्लोक में कह रहे हैं, भूतेर महाधिभर्य इमहापुरो विभुर निर्माय शेते यदमुषु पुरुषः भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकः सो अलंकृष्यष्ट भगवान वजांसि मे। 23वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही पंच महाभूतों से शरीरों का निर्माण करते हैं, फिर इनमें जीव रूप से शयन करते हैं, फिर पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण और एक मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। ऐसे सर्वभूतमय भगवान, आप मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दीजिए। सर्वभूतमय भगवान यानी हर प्राणी में ही भगवान है। भगवान ही है जिन्होंने पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन 5 महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण किया है ना। और फिर इस शरीर में परमात्मा के रूप में भगवान शयन करते हैं और हम उसी परमात्मा के अंश हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, ये जो हमारे मुंह पर है, आंख नाक आदि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो, और 5 प्राण तथा 1 मन, इनसे युक्त होकर आप 16 विषयों का भोग करते हैं। यानी जीवात्मा भोग करता है और परमात्मा दृष्टा है, परमात्मा देखते हैं कि हम भोग कर रहे हैं। तो आप सर्वभूतमय हैं प्रभु, यानी समस्त प्राणियों में रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रभु आप मेरे हृदय में भी रहते हैं, मुझ में भी आप हैं, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए आप, और अपनी लीला कथाओं को मेरी वाणी में प्रकट कर दीजिए, मेरी वाणी आपके गुण गाए, कुछ ऐसा कर दीजिए। तो प्रभु देखिए, आप विभू हैं लेकिन मनुष्य के शरीर की सृष्टि आप करते हैं, उसमें अंतर्यामी रूप में परमात्मा रूप में आप वास करते हैं और समस्त शरीरों की सफलता विधान करते हैं, क्योंकि आप पुर में वास करते हैं, शरीर रूपी पुर में वास कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम पुरुष भी है ना। तो आप हैं चैतन्य प्रकाशक आत्मा। देखिए, शरीर में 11 इंद्रियां हों या पंच महाभूत रूपी 16 गुण हो, तो भी अगर आत्मा ना हो और आत्मा के साथ परमात्मा ना हो तो शरीर निर्जीव कहलाता है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रभु इस शरीर में विराजमान हो जाते हैं, साक्षी स्वरूप में, निर्लिप्त भाव में, केवल दृष्टि के द्वारा भगवान सब कुछ देखते हैं, दृष्टि के द्वारा ही सब कुछ भोग करते हैं। तो ऐसे भगवान मेरी समस्त वाणी को अलंकृत करें। सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि देखिए प्रभु, देह में अगर आत्मा ना रहे ना, तो जिस प्रकार बहुत मूल्यवान वस्त्र आदि अलंकार युक्त देह भी साधुओं के द्वारा अस्पृश्य मानी जाती है, अनटचेबल, उसी प्रकार से मेरी वाक्यवली ऐसी ना हो जिसमें आपका अधिष्ठान ना हो, यानी आपका अधिष्ठान शून्य। आप मेरी वाणी में अवश्य रहें, आप ही के बारे में मेरी वाणी गुणगान करें, कुछ भी कहती जाए मेरी वाणी ऐसा ना हो प्रभु, ऐसा कभी ना करना, बस यही मांग रहे हैं, है ना। तो देखिए, जो भगवत रस में डूबे हुए भक्त हैं, वो तो बस भगवान के अलावा कुछ सोच भी नहीं पाते हैं, वो तो हमेशा अपने आप को ही धिक्कारते हैं कि ना कर लू कर्म ज्ञान नहीं बहलो, ना सेव लू चरण तुहार, जड़ सुखे मातिया आपन को वंचई, पेखहूं चौदिश अंधियार। हे प्रभु, मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया जो मुझे आपकी तरफ ले जाए, आपके चरणों की सेवा ही नहीं की। अरे, जड़ सुख में मत होकर मैंने अपने आप को ही धोखा दिया, इसलिए अब चारों दिशाएं अंधकार से भर गई हैं। तुहु नाथ करुणा निदान, तुआ पद पंकजे आत्म समपिलू, मोरे कृपा कुरबी विधान, प्रतिज्ञा तुहार एई, जो ही शरणागत नाही सो जानव परमाद, सो हाम दुष्कृति गति ना ही रही आन, अब मांगो तुआ प्रसाद। आन मनोरथ निशेष छोड़त, कब हाम होबू तुहारा, नित्य सेव्य तुहू नित्य सेवक मुई, भक्ति विनोद भाव सारा। देखिए, भक्ति विनोद जी कह रहे हैं, हमारे बहुत ही प्यारे आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, कह रहे हैं कि प्रभु, आप तो नाथ हैं ना, जगत के नाथ हैं, तो आपके होते हुए मैं अपने आप को अनाथ कैसे कहूं। आप हैं यानी कि सब कुछ है मेरे पास, क्योंकि आप नाथ हैं इसलिए मैं अनाथ नहीं हूं। और दुनिया में जितने भी नाथ हैं किसी के भी, उनमें इतनी करुणा भला कहां हो सकती है जितनी आप में है। दुनिया में कोई किसी को अपना नाथ कहे तो क्या वो जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सकता है? क्या वो दुखों से छुटकारा दिला सकता है? क्या वो किसी को अशेष आनंद प्रदान कर सकता है, ऐसा आनंद जो कभी समाप्त ना हो? क्या कर सकता है नाथ इस दुनिया का? दुनियावी नाथ कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु, ऐसी करुणा किसी में नहीं है जैसी कि आप में है, इसलिए आपके चरण कमल में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, मुझ पर आप अवश्य ही कृपा करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। क्यों? क्योंकि आपकी ही तो प्रतिज्ञा है, कौन त्या प्रति जाने ही नामे भक्ते प्रणश्यति। आप ही तो कहते हैं कि जो मेरी शरणागति ले लेता है फिर उसे कोई कष्ट सता नहीं सकता है, कोई दुख उसे दुखी नहीं कर सकता है, आप ही की तो प्रतिज्ञा है। तो प्रभु, देखिए, मैंने आपकी शरणागति ले ली है। हाँ, मेरे कर्म बहुत अच्छे नहीं हैं, मैं बहुत दुष्कृति युक्त व्यक्ति हूं, लेकिन तो भी एक ही बात समझ आती है कि आपके अलावा मेरी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं भाई, संसार में कितने ही लोग हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, वो तुम्हारी गति नहीं है क्या? तो उत्तर है, नहीं, गति नहीं है वो मेरी। शरीर छूटा तो सब छूट जाएगा, फिर कुत्ते बिल्ली किस योनि में जाऊंगा, वो क्या मुझे बचा पाएंगे? नहीं, कोई नहीं बचा सकता प्रभु आपके सिवाय, आप ही बचा सकते हैं, इसीलिए अब मांगो तुआ प्रसाद। इसलिए प्रभु, मैं आपकी कृपा मांग रहा हूं, आपकी कृपा। तो क्या कृपा मांग रहे हैं आप, अगर भगवान पूछे? तो पहली कृपा तो यही कि प्रभु, दूसरे जो मनोरथ हैं, दूसरी जो अभिलाषाएं हैं, उन्हें मैं कब छोड़ूंगा, कब मैं आपका हूंगा, कब आपका ही होऊंगा, नित्य सेव्य तुहु नित्य सेवक मोहि भक्ति विनोद भाव सारा। प्रभु कब ये समझूंगा कि आप ही नित्य सेव्य हैं, आप ही नित्य सेव्य हैं। जितनी जल्दी समझ जाऊं उतनी जल्दी मैं बच जाऊंगा। मैं इस जगत को ही सेव्य समझता रहा हूं, इस जगत में जितने लोग हैं उनको सेव्य समझता रहा हूं, मेरे शरीर से जो पैदा हुए हैं उन्हीं की सेवा की है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। अज्ञानी हूं ना, अविद्या का शिकार हूं, देह अभिनिवेश का शिकार हूं। तो चूंकि देह में इतना अभिनिवेश है कि देह को ही सेव्य मान बैठा, लेकिन सेव्य हैं आप ही की नित्य सेवा मुझे करनी है और आपका मैं नित्य सेवक बनना चाहता हूं। शाश्वत संबंध है आपका और मेरा, आप नित्य सेव्य हैं और मैं नित्य सेवक हूं, और इस शाश्वत संबंध को मैं समझ लूं तो ये मान लूंगा कि आपकी अतिशय कृपा हो गई मुझ पर। इस संबंध को समझकर इस संबंधानुसार ही कार्य करूं, आपको प्रसन्न करूं, तो सही बात है। सुखदेव जी भी यही कह रहे हैं कि प्रभु आप ही जब मेरे सर्वस्व हैं, मेरे शरीर में भी आप हैं, तो आप ही मेरी वाणी में भी प्रकट हो जाइए ताकि मैं आपका ही गुण

गान करूं। मेरी वाणी सिर्फ आपके बारे में ही कहती रहे और मैं कुछ नहीं चाहता। तो बहुत ही सुंदर चर्चा हो रही है हमारी यहाँ पर, इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, प्रेम धारा को कीजिए स्वीकार। मेरा नमस्कार।

नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में 7 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, पहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर अडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्किन्स 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे, फिर हैदराबाद हाउस से विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों

सदस्यों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच जारी संघर्ष तेज हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। और टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

ये अंदर की जो आग है ना, ये जलती ही रहनी चाहिए। धड़कने गिनने का क्या फायदा, अपने अंदर के जज्बे को जगाए रखना ज्यादा जरूरी है किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, प्रोग्राम शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग दिल्ली, आपके आरजे खुशी के साथ। और जो कैलेंडर की जो तारीखें होती है ना, हर तारीख सिर्फ एक नया दिन नहीं होती है, बल्कि अपने अंदर समेटे होती है अनेकों कहानियां, महान हस्तियों की यादें और इतिहास के अनमोल पल। सो लेट्स स्टार्ट द डे ऑफ 18th जुलाई एंड गेट टू नो आज की तारीख का खास सफर। स्टे ट्यून्ड।

आज है 18 जुलाई और आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, यानी कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मंडेला जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2009 में घोषित किया गया था और ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला के मानवाधिकारों, शांति और सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्षों और आदर्शों को

0: टाइम पर स्टूडियो क्लॉक 15 मिनट्स पास्ट 7 और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आरजे खुशी के साथ। आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अगर बात करें तो 18 जुलाई 1980 का दिन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, यानी कि गोल्डन वर्ड्स में। यू नो व्हाई? क्योंकि इसी दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब कि इसरो ने ISRO ने अपनी स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 की मदद से रोहिणी RS-1 उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। और इसी के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपने खुद के रॉकेट से उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता है। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बता दूं कि आपको पता है 1980 में ही टेलीविजन में पहला रंगीन प्रसारण मद्रास से किया गया था। हमें तो खैर इतना याद नहीं होगा, लेकिन आई एम श्योर उन जो ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया से एकदम से कलरफुल और रंगीन दुनिया में जब देखने लगे होंगे वो सारे सीरियल्स करेक्टर्स, कितनी अचीवमेंट लगी होगी उस वक्त। सची लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से ब्रेक के बाद।
1: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधा

0: रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और इस गाने से मुझे याद आया कि कुछ लोग होते हैं ना, वो पैदा ही तारीफ़ काबिल होते हैं, मतलब तारीफ करते करते थक जाओ लेकिन तारीफ़ ख़त्म नहीं होती। एक के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ और अब दूसरे के बारे में भी बता देती हूँ। 18 जुलाई 2002 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 12वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की और 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान, विशेषकर भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और मुझे लग रहा है कि ये गाना भी ना ऐसे ही वीरों के नाम है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली आपकी आरजे खुशी के साथ। और आज है 18 जुलाई, और 18 जुलाई के दिन जिन महान हस्तियों ने हमें अलविदा कह दिया वो है, उनमें से हैं पीरू सिंह, जो कि भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक है, एक थे। अब्दुल हामिद हमीद केसर, जो कि भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। साथ ही राजेश खन्ना, जो कि हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध, बहुत बहुत ही फेमस रहे ये अभिनेता।

0: of the year to say this track was playing on 102.6 FM Rainbow Station का प्रोग्राम चल रहा है. गुड मॉर्निंग दिल्ली, आपके आरजे खुशी के साथ. और आज के दिन यानी कि 18 जुलाई को जिन महान हस्तियों ने जन्म लिया लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनमें 1861 में जन्मी कादम्बिनी गांगुली जो कि भारत की पहली महिला फिजिशियन थी. साथ ही 1918 में जन्मे नेल्सन मंडेला, जिनके बारे में मैं बता ही चुकी हूं, नोबल पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे और जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ की लड़ाई में बहुत बहुत अहम योगदान दिया. लेती हूं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताती हूं कि अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप अपना जन्मदिन किन सेलिब्रिटीज के साथ शेयर कर रहे हैं. स्टे ट्यून.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात.

मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा इंसान, मतलब मियाँ बीवी का जैसा रिश्ता है, या फिर आप किसी से प्यार करते हैं, कोई ये गाना तक गा दे ना, वो लड़की इतनी इंप्रेस हो जाएगी, आहा मेरे लिए क्या क्या कर सकता है ये इंसान. बस शब्दों का ही तो खेल है, जो बोलना सीख जाए प्यार से वो तो दुनिया जीत लेता है. आज है 18 जुलाई और आज के दिन है हैप्पी हैप्पी बर्थडे स्मृति मंधाना का, जो कि अब फेमस हो चुकी हैं. और जब से क्रिकेट, जो वुमेन क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया है, इन लोगों ने कप्स जीतना शुरू कर दिया है, तब से तो ये और भी पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं. तो ये महिला, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना, और इनके साथ ही आज जन्मदिन है भूमि पडनेकर का और प्रियंका चोपड़ा का, जो कि ये दोनों हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं. तो जब प्रियंका चोपड़ा का नाम आता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ना फौरन जाकर भी है अपनी देसी गर्ल ही. और मूवीज तो बहुत सारी की है प्रियंका चोपड़ा ने, गाने भी प्रियंका चोपड़ा के काफी सारे फेमस हैं, भूमि पडनेकर के भी हैं, लेकिन जब प्रियंका चोपड़ा का नाम आता ना, तो मुझे ये गाना दोस्ताना फिल्म का हमेशा याद रहता है.

तो स्मृति मंदाना, भूमि पडनेकर और प्रियंका चोपड़ा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आज आपका भी जन्मदिन है और आप इनके साथ अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम रेनबो स्टेशन। आपका दिन शुभ रहे। आज है 18th of July और आज की अगर वेदर फोरकास्ट की अगर मैं आप बात करूं, तो भाई भगवान जो है ना, ऊपर वाला सब सोचता है इतने दिनों से, इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतनी गर्मी, भगवान ने सोचा यार मैं गर्मी कर देता हूँ, भाई वीकडेज है, लोगों को काम पे जाना है, अपना एसी में बैठेंगे, काम ही तो करना है, लेकिन वीकेंड पे मैं धूप हटा दूंगा और बारिश नहीं करूंगा, बादल ही बादल होंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, धूप भी नहीं होगी, बारिश भी नहीं होगी, तो मौसम रहेगा क्लाउडी, ना सिर्फ आज, कल, परसों, तरसों, नरसों, मतलब अब तो पूरे हफ्ते बादल बादल बादल ही छाए हुए हैं। हाँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमें थोड़ी से सूर्य देवता के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन बादल बने रहेंगे इस हफ्ते, पूरे हफ्ते मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। आज तो 37 डिग्री जाएगा, लेकिन कल के ऑनवर्ड्स मैक्सिमम पहुंचेगा 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। शालिनी करेंगी कंटिन्यू प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10। प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने में।

ये आकाशवाणी का राजधानी चैनल, माफ कीजिएगा, ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है और आप अब मुख्य समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देशभर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। दो नई रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे, फिर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से हैदराबाद हाउस में मिलेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता व्यक्त की, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मत्स्य पालन, तंबाकू किसानों और रायलसीमा एकीकृत बागवानी विकास योजना से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। अमरीकी सेना के ईरान पर हमले जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के टूटने के बाद लगातार सातवीं रात ईरान पर अमरीकी सेना ने हमले किए। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। जापान ओपन बैडमिंटन में टोक्यो में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की चेन यूफेई से जारी। और फीफा विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

अरे गा रहे तो मन गाने दीजिए ना, इसमें गाने के बहाने ढूंढते हैं लोग और आप कह रहे कि गाए क्यों क्यों, आपको खुश होने से कोई दिक्कत है क्या? मैं आपको बता दूं कि मून ने बंद की है लाइट्स, सन ने शुरू की है शाइनिंग। हाँ वो अलग बात है कि बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रही है, वो अलग बात है, फिर भी मुर्गे की जगह मोबाइल ने दी है वार्निंग कि हो गई है गुड मॉर्निंग। तो मैं क्या जी सोने मौके हो, हम भी कह देते हैं गुड मॉर्निंग, की हाल चाल है। वैसे आप मुझे एक बात बताइए कि सरसों का जो साग होता है ना, अगर वो 2 दिन पुराना हो तो उसे क्या परसों का साग कह सकते हैं, बताइए ना। अरे सच्ची पूछ रही हूँ मैं, हद हो गई, अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, हद हो गई, आप मानेंगे नहीं। चलिए खैर मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, आपके काम की बात बता देती हूँ, और वो ये है कि जो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रहने वाला है 30 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन हाँ, खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फील आपको 40 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना कि आपको ये उमस भरी जो गर्मी है ना वो 40 से 45 डिग्री वाला टेम्परेचर वाला एहसास देगी। तो अभी फिलहाल बारिश होने के आसार तो है नहीं 1-2 दिन तक, लेकिन अगर हो जाए ना तो मुझे जो है माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो फिलहाल इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं दे रही हूँ आपको, आगे अपडेट जो भी होगी वो आपको मिल जाएगी। 2 दिन तक फिलहाल कोई अनुमान नहीं है बारिश का, और मंडे से हो सकती है, सोमवार से हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि आपको ना मैं सलाह दे सकती हूँ इस बात की कि बारिश हो तो बाहर बैठा कीजिए, किस्मत खुल जाएगी, और ना खुली तो क्या हुआ, इतने दिनों से जो शक्ल नहीं धुली थी वो धुल जाएगी। ठीक है जी, एंजॉय करिए अगला वाला ट्रैक, आते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुन रहे हैं आप।

0: घर में पसीना ही बस बह निकले, हदी हो गई है। ये बारिश के आने का नाम ही नहीं ले रही है। यही कह रहे हैं ना, बारिश का इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो मैं बता दूं आपको, पहले बताया मैंने कि बारिश ना 2 दिन तक शायद ना हो, और अगर हो जाए तो मुझे मत डांटिएगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस आपको अपडेट बता रही हूँ। फिलहाल एक और अपडेट है मेरे पास आपके लिए। आप पहले ये जान लीजिए कि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और आप हमें इसके अलावा और कहां कहां पर सुन पा रहे हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे OTT प्लेटफॉर्म, अगर आप उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर आइए जिसका नाम है वेव्स। और इसके अलावा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर आप हमें अलग अलग स्टेट राज्यों में सुन पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। और वो ये है कि दिल्ली में राशन वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ना दिल्ली सरकार जो है वो स्मार्ट टेक्निक का सहारा लेने जा रही है। और वो क्या है, सरकार जो है वो स्मार्ट PDS जो प्रोजेक्ट को लागू करने जा रही है, और इसके तहत राशन वितरण की जानकारी से लेकर राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने और हटाने की सुविधा ऑनलाइन मिलेगी। और इसके साथ साथ ना राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाएं जो है वो अनाज का वितरण और उससे जुड़ी हुई पूरी तरह से जो डिटेल्स हैं वो सारे डिजिटल हो जाएगा। राशन की दुकान पर राशन पहुंचा है या नहीं पहुंचा ये पता करने के लिए आपको बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो खुश हो जाइए। और इसी खुशी में ना मेरे को एक बात याद आ गई है, वो ये कि एक बच्चा जो है वो एग्जाम देने गया और एडमिट कार्ड की जगह ना राशन कार्ड ले गया और अपनी टीचर से बोला कि
1: मैडम मैं ना एडमिट कार्ड लाना भूल गया, ये राशन कार्ड से काम चल जाएगा क्या?
0: तो मैडम भी होशियार थी तो बोली ठीक है ठीक है बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ना मैंने यहाँ पर चावल की बोरियां रखी, तो एक काम करो तुमने ये चावल की बोरी ले जाओ, ठीक है, पेपर की जगह। तो बच्चे ने कुछ देर सोचा और बोला कि
1: मैडम चावल की बोरी तो ठीक है पर साथ में दाल भी मिल जाती तो अच्छा होता ना, खाली चावल कैसे खाएंगे बताइए।
0: फिर तो आप जानते ही बच्चे का क्या हुआ होगा, है कि नहीं? वैसे बात तो ठीक है, खाली चावल कौन ही खाएगा, क्या ही करेंगे उसका, दाल तो होनी चाहिए ना। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए गाने होने चाहिए तो वो मैं आपके लिए प्ले कर देती हूँ। Enjoy Nagada।

ढोल नगाड़े सितार गिटार जो बजाना है बजा लीजिए और खुश रहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी इसी खुशी को देख कर ना बादलों की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाए, वो टपक टपक कर धरती पर यहाँ पर आपके ऊपर गिरने लगे। चलिए तो मैं तो यही आपके लिए प्रे कर रही हूँ कि ऐसा हो पाए फिलहाल। इसके अलावा जो मैं कर रही हूँ वो ये कि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR चल रहा है शो और मेरा नाम है शालिनी, ये तो आप जानते हैं। अगर नहीं जानते कोई बात नहीं है, कोई बड़ा पाप नहीं हो गया आपसे, मैं बता देती हूँ आपको, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और फिलहाल ये आपको मैं बता दूं कि कुछ मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या आप नाराज हैं, आप नाराज हैं, आपने हमारे लिए ये वाला गाना नहीं प्ले किया। ये तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो रिक्वेस्ट बेस्ड शो नहीं है, तो आपके रिक्वेस्ट का गाना तो नहीं चला सकते, लेकिन हाँ हमें पता है कि आपको किस तरह के गाने पसंद है सुबह सुबह, तो उसी तरह के आपका आपके लिए जो उसी तरह का म्यूजिक हम लेकर आते हैं। तो फिलहाल बैक टू द टॉपिक, और वो ये कि एक अच्छे से मैं एक बात बताती हूँ आपका। एक जो गांव की महिला है ना, वो हाथ हिलाकर जो इन्होंने बस को इशारा किया रोकने के लिए, तो बस रुकती है और कंडक्टर पूछता है कि कहाँ जाना है आपको। तो महिला बोलती कि भाई साहब कहीं जाना तो नहीं है, पर ये जो बच्चा है ना हमारा रो रहा है, तो इसको थोड़ा सा पो करके हॉर्न बजा देना गाड़ी का तो थोड़ा खुश हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करें ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकतों पर ना आपको एंट्री नहीं मिलेगी गाड़ी में, कहाँ दिल्ली की बसों में। दिल्ली की बसों में ना अब जो सफर है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर के लिए 1 अगस्त से अनिवार्य किए गए हैं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, और इनका जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए इसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर जोड़े गए हैं, और ये 31 जुलाई से जो है ये वो स्मार्ट कार्ड जो है वो लागू हो जाएंगे। एक पिंक सहेली कार्ड से एक ही बस में 2 बार मुफ्त टिकट जारी नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, समझ लीजिए, ध्यान से सुना करिए बात को। और इसके साथ ही अब पिंक कार्ड से जारी होने वाले टिकट पर महिला यात्री का नाम और यात्रा की डिटेल कि वो कहां से शुरू हुई थी यात्रा उनकी और कहां तक उनका जो गंतव्य स्थान है वो सब कुछ दर्ज हो जाएगा। तो अब आप ना होशियारी नहीं दिखा पाएंगे, आपको पता है ना अब जो है वो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो गई है, तो अभी एडवांस बनी और एडवांस वाले गाना सुनिए यहाँ पर। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR चल रहा है शो।

चोर बाजारी वो भी दो नैनों की नो, कोई फायदे वाली बात हो तो बताइए, क्योंकि लेकिन फिर भी क्या है ना, चोरी करना ना मेरी फितरत नहीं है। नो नो नो नो, मेरी मम्मी ने कहा है ना कि चोरी गंदी बात होती है ना, तो इसलिए मैंने इस बात का ख्याल रखा है। तो फिलहाल कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो मैं आपसे कर लेती हूँ इस बात को हटाकर, और वो ये कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो कुछ लिसनर्स हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जो है वो होशियार हैं। क्या आप भी इतने होशियार हैं कि आप जो है बारिश का इंतजार कर रहे हैं इसलिए कि आप अपनी छत साफ कर सकें? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे कुछ लिसनर्स ऐसे हैं जो इस बात के इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन बारिश तो नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है। आप प्रे करिए, शायद आपकी जो है वो दुआओं में इतना असर हो कि बारिश की बूंदें कुछ आ जाए आपकी छत तक और आपकी छत कुछ साफ हो जाए। लेकिन पूरी तरह से साफ होने के आसार नहीं है। इसके अलावा

0: जो इंटरेस्टिंग बात है वो अलग है, एक और है, वो ये कि अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आप हमें बता सकते हैं 9868107070 पर। अपने साथ साथ दूसरों को भी जो है वो गर्मी में इस भयंकर जो मौसम में है ना वो ट्रैफिक में फंसने से बचा लीजिए, ठीक है। और आपको आपके लिए जो मैं कर सकती हूँ यहाँ पर फिलहाल एक गाना चला सकती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे कमर्शियल ब्रेक्स यहाँ पर होंगे, उसके बाद आपके लिए गाना। ओके, सो स्टे ट्यून्ड टू 102.6 विद मी शालिनी। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
6: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

0: हमें आपकी आंखों में प्यार दिखाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ रेडियो में देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत हमको भी है आपसे। हाँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत है हमें अपने सारे के सारे लिसनर्स से, क्योंकि हमारे लिए वो यहाँ पर अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मैं क्या जी सोने मकलो ठीक थे है ना। चलिए शो में अब एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो आपको मैं बता देती हूं उसको, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी, और शो चल रहा है। यस, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर माय फ्रेंड्स। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो उनको ये नजर नहीं आता कि कोई पैदल भी चल रहा है, और जब वो खुद पैदल चल रहे होते हैं तो उन्हें ये नजर नहीं आता कि सड़क पर गाड़ियां भी चल रही हैं। तो अगर आप ऐसे हैं ना तो मैं आपको नहीं बताऊंगी जो अगली बात मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है आप ऐसे नहीं है तो मैं आपको बता ही दूंगी। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे भी जरूरी एक बात ये है कि जो लोग हमेशा सिर उठाकर चलते हैं ना उन्हें सड़क पर पड़े हुए पैसे नहीं मिलते। क्या हंस रहे हैं? अच्छी बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन आप सोचिए ना अगर आपके सड़क पर पैसे गिर जाएं और आप वापस ढूंढते हुए जाएं जैसा कि आप जाते ही हैं, तो अगर आपको ना मिले तो आपको कितना दुख होता है। तो ऐसा ही दुख दूसरे को भी होता है, तो इसीलिए ना सड़क पर पड़े हुए पैसे मत उठाया करिए, जिसके हैं उसको मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी ना। चलिए एक और खुशी की बात मैं आपको बता देती हूँ, और वो ये कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि DMIC के तहत ग्रेटर नोएडा में विकसित की जा रही है आधुनिक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप तक आवाजाही जो है वो और आसान हो जाएगी। और ग्रेटर नोएडा के जो डाढ़ा गोल चक्कर से टाउनशिप को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन तक किया जाएगा, और ग्रेटर नोएडा को जाम मुक्त बनाने के लिए सभी प्रमुख सड़कें जो हैं उनको चौड़ी करने की विस्तृत कार्ययोजना जो है वो बन चुकी है और इस पर काम शुरू कर दिया गया है। और इसके तहत ना 130 मीटर सड़क जो है वो स्थित डाढ़ा गोल चक्कर से DMIC को जोड़ने वाली सड़क जो है वो चौड़ी की जाएगी, जिसमें जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी आवाजाही जो है वो सुगम हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसके अलावा मालवाहक वाहन जो है वो बिना किसी रुकावट के आ जा सकेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये खुशखबरी तो मैंने दे दी है, और फिलहाल और क्या बचा आपके लिए? गाना चलाना बचा है तो वो मैं चला देती हूँ, राम चाहे लीला।
1: खूब खूब आभार, अपना गुजरात में हालो मने नी आगर बहुत नाम नो गाम छे, त्या मजूर वर्ग बहु छे, तो मने एक गीत नी फरमाइश करी थी अने त्या कई थाकी ने लोका सांजे।
0: नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो है वो रामलीला का सीन नहीं चल रहा है यहाँ पर, अभी थोड़ी देर में आपको गाना सुनाई देगा। देखिए आ गया।

0: तो हमारे जो बहुत कुछ इंटेलिजेंट लिसनर्स हैं उनमें से किसी ने कहा है कि आजकल ना जो ऑनलाइन के जमाने में पैसे गिरे हुए जमीन पर नहीं मिलते हैं, तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि भले ही आपको पैसे जमीन पर गिरे हुए ना मिलते हो, लेकिन कार्ड तो मिलता है ना, आजकल कार्ड चलता है। तो अगर वो कार्ड गिर गया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ उस जमाने से इस जमाने में ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे आप, क्योंकि जब पैसे गिरते थे दो चार तो आप सहन कर लेते थे, लेकिन अगर कार्ड चला गया ना, वाईफाई वाला कार्ड आपका, तो फिर आप जानते हैं ना, पैसे नहीं पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा आपका, तो यार काम नहीं आएगी, समझ गए आप। चलिए फिलहाल आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी शालिनी ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6। और इससे पहले कि मैं आपको और ज्यादा जानकारी दूं और सारी चीजें बताऊं मैं आपको यहां पर, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें, ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आप

0: आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

वेलकम बैक डियरीज, आप हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर विद मी शालिनी और शो चल रहा है क्या? बिल्कुल गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंस यार, चल रहा है शो। और मुझे एक बात याद आ गई कि परिवर्तन ना है, वो परिवर्तन जो है वो कितनी खास चीज़ है ना, कितनी अलग चीज़ है, कितनी अजीब चीज़ है कई बार अगर हम सोचे तो। पहले क्या है ना, घर के बाहर सुरक्षा के लिए आदमी तैनात किए जाते थे ताकि जानवर घर में ना घुसाएं, और अब घर के बाहर जानवर तैनात किए जाते हैं ताकि आदमी घर में ना घुसाएं, है कि नहीं? कितनी अजीब बात। लेकिन कई बार मुझे क्या लगता है कि जानवर कुछ मामलों में इंसान से ज़्यादा वफादार होते हैं, है ना? आपने भी महसूस किया होगा। चलिए फिलहाल मैं फिलोसॉफिकल बातें करूं इससे पहले कि मैं आपको बता देती हूं कि जो परिवर्तन है वो कई बार बहुत अच्छा होता है। और ऐसा एक परिवर्तन आपके लिए हो रहा है, वो है परिवर्तन योजना, जो कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई है, एक महत्वपूर्ण पहल। और इसका जो उद्देश्य है वो दिल्ली एनसीआर की सड़कों से पुराने और भारी प्रदूषण वाले ट्रकों और बसों को हटाकर उनके स्थान पर स्वच्छ ईंधन वाले यानी कि BSVI और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि EVs को लाना है। और इस योजना के तहत पुराने वाहनों को बदलने में लाभार्थियों को कई बड़े वित्तीय लाभ और सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इसकी सारी जानकारी ना आप ऑनलाइन जाकर ले सकते हैं, बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं, बहुत सारी और छूटें मिलती हैं, सब्सिडी मिलती हैं और डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा और क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ मिलते हैं बेहतरीन ट्रैक्स, बेहतरीन गाने, तो वो तो मिलेंगे। जिंग जिंग जिंग जिंग जिंगार।

बस बिगड़ ये चक्कर आ जाएंगे। मैं क्या जी क्या कर रहे हैं, आधी हो गई है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं मुझे अनिकेत शालिनी को। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर चल रहा है शो। मैं क्या जी सुनियो मकड़ो की हाल चाल ने, ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। चलिए तो मैं ठीक हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक बार ना रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्ति जो है वो इंतजार कर रहे थे ट्रेन का, और ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो इतने में एक व्यक्ति बोला कि सुनिए भाई साहब, ये ट्रेन तो टाइम पर जो आती नहीं है, तो फिर टाइम टेबल का फायदा क्या है? तो इतने में दूसरा व्यक्ति बोला कि भाई साहब, ट्रेन अगर टाइम पर आ जाए तो फिर वेटिंग रूम का भी क्या फायदा है, हैं बताइए? फिर क्या था, बोलती बंद? लेकिन यहां मैं अपनी बोलती बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास आपके लिए ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबर है। और वो ये कि बात अब ट्रेन और टाइम टेबल से और वेटिंग रूम से बहुत आगे बढ़ गई है, और वो जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन तक पहुंच गई है, क्योंकि भारतीय रेल के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। और हरियाणा के जींद से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया है, जिससे कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन। और अब क्योंकि टाइम हो चुका और मुझे टाटा बाय बाय आपको बोलना ही पड़ेगा, और अपनी जबान पर मुझे लगाम लगानी पड़ेगी, तो मैं लगा लेती हूँ। और मैं आपको कहती हूँ कि मैं गया जी, ख्याल रखें तो गाना सड़ी जाए, ठीक है? आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी शालिनी। और क्या कहूँ, बस अब कुछ नहीं कहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ। शालिनी सेज टाटा।

नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में 9 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। 2 नई रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। यह यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। स्काई रूट एरोस्पेस आज सुबह भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल बांकुड़ा जिले के मेजिया में स्टील निर्माण इकाई के विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रकोष्ठ की स्थापना की। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर अडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केंस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे, फिर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से हैदराबाद हाउस में मिलेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस तस्काना से राजधानी तालिन में मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता व्यक्त की, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मत्स्य पालन, तंबाकू किसानों और रायलसीमा एकीकृत बागवानी विकास योजना से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। अमरीकी सेना के ईरान पर हमले जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के टूटने के बाद लगातार 7वीं रात ईरान पर अमरीकी सेना ने हमले किए। कल मैक्सिको के दक्षिणी तट के निकट 7.4 की तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइन बाम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भूकंप के बाद किसी नुकसान की खबर नहीं है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है और फीफा विश्व कप में आज रात मियामी के तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये थी अभी तक की खास खबरें। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

सूर्य की घड़ी में 9 बज गए हैं और प्रोग्राम शुरू हो गया है दिल के तराने, गाने नए पुराने, जहां पर आप सुनेंगे बॉलीवुड के ट्रैक्स, वो भी बैक टू बैक टू बैक, साथ ही तड़का लगेगा ओल्ड इज गोल्ड वाले सॉन्ग का 9:15, 9:30 और 9:45, यानी 9:15, 9:30, 9:45 पर रेनबो की ओल्ड डायरी से मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ब्यूटिफुल ओल्ड इज गोल्ड वाले सॉन्ग्स। तब तक आप इंजॉय करते रहिए बीच बीच में बैक टू बैक बॉलीवुड म्यूजिक।

घड़ी के स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने में कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि रेनबो की ओल्ड डायरी से आप सभी लिसनर्स के लिए आशा भोसले की आवाज में ये ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी लिसनर्स के लिए सिर्फ रेनबो स्टेशन 102.6 पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

मोर बनाते ये माल थोड़ा मवाली है, हर सेंटेंस में गाली है, ना बम बहना पटाखा है, ये लड़की पूरी दिवाली है। बूम।

such a beautiful track from the movie Veeradhi Wedding. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने आपके आरजे खुशी के साथ और 9:30 बज गए हैं. इसका मतलब रेनबो की ओल्ड डायरी से आप सभी लिसनर्स के लिए मैं लेकर आऊंगी एक ब्यूटीफुल ओल्ड इज गोल्ड वाला सॉन्ग और ये गाना है मोहम्मद सफी रफी साहब की आवाज में फ्रॉम द मूवी ब्रह्मचारी.

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

और आकाशवाणी रेनबो पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ। अदिति बिष्ट आने वाली हैं स्टूडियो में, जो लेकर आएंगी प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर, विच इज अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम जो आप सुनेंगे 10 से 11, 11 से 12 आपके साथ रहेंगी। प्रियंका वर्मा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें लेकर आएंगी और बनाएंगी बॉलीवुड का कोई एक सरताज। प्ले इट कूल आप सुनेंगे अदिति के साथ 12 से 1, 1 से 2 आप सुनेंगे मेरा वाला सॉन्ग, जहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रियंका को अपने फेवरेट सॉन्ग्स, और उनका बस चलेगा तो वो जरूर कोशिश करेंगी आपका फेवरेट सॉन्ग बजाने की। और रेनबो पर ये गानों का सिलसिला और ये म्यूजिक प्रोग्राम्स का सिलसिला यूं ही कंटिन्यू रहेगा, तो बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

और जो खुशी यानी मेरे जाने का टाइम आ गया है, और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि लाइफ इज गेम, लाइफ एक खेल है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या फिर खिलौना। इसी विचार के साथ आज की खुशी को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, खुश रखिए और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन।

0: All right, now I'm going to slip into a very tiny break. Promise, see you on the other side now.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
2: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: Well, that was Lata Mangeshkar with Saawan Ke Jhoole Pade. And I'm going to say something that I've said before and I'm going to repeat myself. Thank you so much, listeners, that because of you, I learn something new every day. I force myself to find something new and share it with you. Like, for instance, this song. I mean, this song is about swings in the time of monsoon. You know, old Bollywood often showed and sang about these swings in monsoon. And I always thought that this was just a movie-related thing. But turns out that Bollywood was actually inspired by real life. For generations, the arrival of the monsoon turned the branches of banyan, neem and mango trees into gathering places for people. They would come together, play games or talk, and the entire rope swings, they were all celebrating the good weather and the rain. That's why swings appear in our poetry, folklore and films. Literature didn't invent the image. It preserved a tradition that people were already living. But I want to know from all of you, is that tradition common today? Did you ever have a monsoon swing under a tree while growing up? Or do you still have it? That would be amazing. If you want to share stories or memories, please do let us know. WhatsApp us on 9868107070. Meanwhile, I'm going into a very short break.
1: Roz subah savere 7 se 9 ki mulaqat. Thodi gupshup, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर। 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात

मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। लोगों की मदद

0: right, with that, I'm slipping into a very short break. I will see you on the other side.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती.
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती.

अप्रैल तक चलेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल बांकुड़ा जिले के मेजिया में स्टील निर्माण इकाई के विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडोडो मार्टिनेज आचा वासिकोस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। ये सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे, फिर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से हैदराबाद हाउस में मिलेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस तस्कना से राजधानी टलिन में मुलाकात की। अमरीकी सेना के ईरान पर हमले जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के टूटने के बाद लगातार 7वीं रात ईरान पर अमरीकी सेना ने हमले किए। कल मेक्सिको के दक्षिणी तट के निकट 7.4 की तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, 11 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकासित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25

हेलो एंड नमस्ते इंडिया। लाइट कैमरा एक्शन सिर्फ एक फ्रेज नहीं है बल्कि हार्ट बीट है बॉलीवुड की, जहां बनती है मूवीज जो करती हैं आपको एंटरटेन, जो आपके इमोशंस की रोल कोस्टर राइड कराती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, इंस्पायर करती हैं और दिल के अंदर एक पेट्रियोटिक जज्बा भी जगाती है। सो गाइस लेट्स डाइव इन द वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड जिसके लेटेस्ट अपडेट सब के साथ सब उनके हैपनिंग करें। इसलिए लॉग इन करें आप हमारे रेडियो ऐप या फिर चलाएं रेडियो के क्लोज, क्योंकि हम देंगे आपको बॉलीवुड डोज आकाशवाणी रेनबो पर, जहां प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्विस्ट, जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात।

वेल, ये जो पंक्ति है ना, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। वेल दोस्तों, इस भजन की ये जो पंक्ति है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा की रूह को बखूबी बयां करती है। जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं ना, तो हर दिल से यही प्रार्थना निकलती है, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आकाश में रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है, बॉलीवुड ट्रेल्स। जी हाँ, चलिए देते हैं आपको लेटेस्ट

डेट वेल बॉलीवुड से हॉलीवुड के सेलुलॉइड के कैनवस पर उन्होंने ह्यूमन इमोशंस के डिफरेंट शेड्स को इंटेंस तरीके से एक्सप्लोर किया है. उनकी एक्सप्रेसिव आईज, परफेक्टली टाइम पॉजेस, सटल बॉडी लैंग्वेज और एफर्टलेस डायलॉग डिलीवरी ने हर सीन को रियलिज्म और इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है. कई अवार्ड्स और अक्लॉज की झालर उनके नाम जुड़ी है दोस्तों, जो उनके सिनेमैटिक प्रेजेंस को सेलिब्रेट करती है. प्रियंका चोपड़ा है वो नाम दोस्तों, जिन्होंने सिनेमा के कैनवस पर अपनी कहानी को अपने टैलेंट, पैशन और वर्सटैलिटी के रंगों से लिखा है. आज यानी 18 जुलाई को सेलिब्रेट करनी है वो अपना बर्थडे. 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर झारखंड में जन्मी प्रियंका चोपड़ा का बचपन एक शहर तक सीमित नहीं रहा दोस्तों. उनके पेरेंट्स इंडियन आर्मी में फिजिशियंस थे, इसलिए उनकी पोस्टिंग देश के अलग अलग शहरों में होती रही. इसी डाइवर्स अपब्रिंगिंग ने प्रियंका को नए लोगों से, अलग अलग कल्चर से और जिंदगी के विविध एक्सपीरियंस से रूबरू कराया. दोस्तों कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत उन फैसलों से होती है जिनके बारे में हम खुद पता नहीं कर पाते. जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की कहानी भी कुछ इस तरह है. उनकी मामा उनके भाई ने उन्हें बिना बताए उनके फोटोग्राफ्स मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भेज दी और वहीं एक स्टेप उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया. साल 2000 में प्रियंका ने मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत का नाम रोशन करते हुए मिस वर्ल्ड 2000 का क्राउन अपने नाम किया. In 2002, she made her big screen debut in the Tamil film. Next year, 2003 में प्रियंका ने बॉलीवुड में एंट्री की और फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई में सेकंड फीमेल लीड के रूप में नजर आई. ये उनके फिल्मी सफर की शुरुआत थी जहां उन्हें धीरे धीरे अपनी मेहनत, टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हिंदी सिनेमा में एक पावर हाउस एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाई. मुझसे शादी करोगी, एतराज, ब्लैकमेल, क्रश, डॉन, ड्रोना, फैशन, दोस्ताना, अनजाना, अनजानी, रावण, डॉन 2, अग्निपथ, बर्फी, क्रश 3, मैरी कॉम, दिल धड़क ने तो, बाजीराव मस्तानी, द व्हाइट टाइगर जैसे कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को एंटरटेन किया. चाहे एक स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन का रोल हो, एक इमोशनल जर्नी से गुजरती हुई कैरेक्टर हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, प्रियंका ने हर किरदार को, हर न्यूएंस को फाइनेंस के साथ स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया. पद्मश्री से सम्मानित प्रियंका चोपड़ा के नाम यूं तो कई अवार्ड्स और एक्लॉड्स हैं. हॉलीवुड में भी अपनी नोटवर्दी परफॉर्मेंसेज ने से उन्होंने ग्लोबल सिनेमैटिक लैंडस्केप पर एक स्ट्रॉन्ग और एंड्यूरिंग प्रेजेंस एस्टैब्लिश की है. दोस्तों प्रियंका ने अपनी डेब्यू तमिल फिल्म में अपने वोकल टैलेंट से भी अपनी आर्टिस्टिक वर्सटैलिटी शोकेस किया था. जी हाँ, इसके बाद उन्होंने कई म्यूजिक सिंगल रिलीज किए जिससे जिन्होंने उन्हें वोकल टैलेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया. We wish the multi-talented Priyanka Chopra very happy birthday. Priyanka, keep entertaining us with your noteworthy performances. फिलहाल हम जिस मूवी से उनका ट्रैक सुनेंगे वो है जी हाँ, दिल द स्काई इज पिंक का, दिल ही तो है. और ये जो मेलेडी है ना, ये सोलफुल मेलेडी नहीं है बल्कि द स्काई इज पिंक का इमोशनल हार्ट बीट है. इस गाने में प्रियंका चोपड़ा अपने न्यूआंस और डीपली इमर्सिव परफॉर्मेंसेज से अदिति चौधरी के हर एहसास को इतनी खूबसूरती से स्क्रीन पे उतारा है कि क्या कहे. तो चलिए इस ट्रैक को सुनते हैं.

0: ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

जी हाँ, वेलकम बैक। चलिए देते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट। सुखविंदर की आवाज शब्दों में कुछ ऐसे घुल जाती है बंधु। सुखविंदर सिंह की आवाज शब्दों में कुछ ऐसे घुल जाती है बंधु, जैसे झूमती नदियाँ खुद साजों की धुन गुनगुना रही हो। सुरों का ताना बाना कुछ ऐसा बनता है उनकी आवाज में, जैसे हर कहानी उनकी आवाज की कशिश से दिल में उतर जाती हो। विद हिज कैप्टिवेटिंग स्टेज प्रेजेंस एंड मेस्मराइजिंग वॉइस, सुखविंदर सिंह द एक्लेम्ड इंडियन सिंगर कंपोजर एंड लिरिसिस्ट इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे गाइस। सुखविंदर सिंह का जन्म 18 जुलाई 1971 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। बचपन के शुरुआती दिनों में उनका रुझान स्पोर्ट्स, खासकर एथलेटिक्स और स्प्रिंटिंग की तरफ था, लेकिन वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली पैशन म्यूजिक है। इनफैक्ट अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में ही वो लोकल इवेंट्स और छोटी बड़ी गैदरिंग में गाने लगे थे। उनकी पावरफुल वॉइस, नेचुरल टैलेंट और म्यूजिक के टूवर्ड्स उनके पैशन ने धीरे धीरे सबका ध्यान उनकी तरफ खींचा। उनके म्यूजिक करियर के शुरुआती दिनों में सुखविंदर सिंह ने लेजेंडरी कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ म्यूजिक अरेंजर के तौर पर काम किया। इसी दौरान उन्होंने कई गानों में कोरस, वोकल्स और छोटे छोटे पोर्शंस को भी अपनी आवाज दी। प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्हें पहला सोलो ब्रेक 1991 में फिल्म खिलाफ के गाने आजा सनम से मिला। इसके बाद 1997 में एआर रहमान के कंपोज गाने लकी लकी के साथ उन्होंने तमिल सिनेमा में भी अपना प्लेबैक डेब्यू किया। इसके बाद तो एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की म्यूजिकल पार्टनरशिप वक्त के साथ और भी मजबूत होती चली गई। दोनों ने मिलकर एक से बढ़कर एक यादगार सुरीले नगमे दुनिया को दिए, जिन्होंने अपनी मेलेडी, जज्बात और सोलफुल अंदाज से हर जनरेशन के म्यूजिक लवर्स का दिल जीत लिया। लेकिन सुखविंदर जी के करियर का टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ मणि रत्नम की 1998 में रिलीज हुई फिल्म दिल से का सॉन्ग छैया छैया। रमता जोगी वो किसना है, ताल से ताल मिला जब दिल मिले करिए ना, नी मैं समझ गई डूमरो बाजे बंठन देखो डोलना गला गोड़ियाँ उड़ी उड़ी जाए रुत आ गई रे स्लो मोशन हुड़ हुड़ दबंग होले होले बहुत सारे कर हर मैदान फतेह भाग्य भारत भाग्य विदाता स्लो मोशन जैसे कई गानों को सुखविंदर सिंह ने अपने वर्सटाइल वोकल से ना सिर्फ आवाज दी बल्कि उनमें एक अलग एनर्जी, जज्बा और इमोशनल डेप्थ भी भर दी। फिल्म 2008 की एक फिल्म थी, जी हाँ, असलम द मिलियनेयर का ट्रैक जय हो में भी सुखविंदर सिंह की आवाज की कशिश सुनाई थी। इस ग्लोबली एक्लेम्ड सॉन्ग ने उनका नाम क्रेडिट परफॉर्मेंस में शामिल था। जय हो ट्रैक ने न सिर्फ दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स का दिल जीता बल्कि 81 एकेडमिक अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का प्रेस्टिजियस ऑस्कर अवार्ड भी अपने नाम किया। इसके बाद 52 ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर अ मोशन पिक्चर का सम्मान भी हासिल किया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत के गौरव को बढ़ाने वाले सुखविंदर सिंह को अपनी बेहतरीन सिंगिंग के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर से भी सम्मानित किया चुका है। सुखविंदर सिंह ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, मराठी और बंगाली समेत कई भारतीय भाषाओं में भी अपनी

0: कितना है, इस गाने को सुनते हैं। जी हाँ, जिसमें सुखविंदर सिंह की आवाज सिर्फ एक गीत को नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति के दिव्य एहसास को जीवित कर देती है। इस कॉम्पोजिशन में उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोकल रेंज, इम्पेकेबल ब्रेथ कंट्रोल और सुरों पर लाजवाब कमांड पर हर नोट को अलग रंग से रूहानी रंग देती है। तो चलिए सुनते हैं बिना दिल के इस ट्रैक को, वो किसना है। वैसे आपको एक और बात बता दें, जी हाँ, कि एक ऐसा गाना है जिसमें सुखविंदर सिंह जो है ना वो गा भी रहे हैं और प्रियंका चोपड़ा पिक्चराइज है, वो है गल्ला गोड़ियां। जी हाँ, दिल धड़कने दे को।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

सुरिंदर सिंह की बुलंद आवाज में जुनून भी है, इस ट्रैक में नजाकत भी है, शक्ति भी और भक्ति भी है ना। वैसे म्यूजिक की बात करें तो ए आर रहमान और इस्माइल दरबार ने मिलकर एक ऐसा साउंडस्केप क्रिएट किया है जो क्लासिकल भी है, सिनेमैटिक भी है और स्पिरिचुअल भी है। आकाशवाणी रीड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड थ्रिल्स, जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। हर नई फिल्म के साथ वो अपनी एक्टिंग के नए डायमेंशन एक्सप्लोर करती हैं। वो कमर्शियल सिनेमा और कंटेंट ड्रिवन स्टोरी टेलिंग के बीच एक सीमलेस बैलेंस क्रिएट भी करती हैं। बॉलीवुड के सिनेमैटिक कैनवस पर उन्होंने अपने रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेज, एफर्टलेस स्क्रीन प्रेजेंस और डीपली इमर्सिव एक्टिंग से एक अलग ही पहचान बनाई है। भूमि पेंटकर है वो नाम जो अपनी अदाकारी से ऑडियंस को एंटेन करती आई है, और आज इस टैलेंटेड एक्ट्रेस का हैप्पी हैप्पी बर्थडे। 18 जुलाई 1989 को मुंबई में पहली बार आंखें खोली भूमि ने। बचपन मुंबई के वाइब्रेंट और कल्चरली रिच माहौल में गुजरा, जहां उनके अंदर क्रिएटिविटी और परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रति लगाव धीरे धीरे शेप लेता गया। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने 6 साल तक एक रिनाउंड प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इस लर्निंग फेज में उन्होंने सिनेमा के क्राफ्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग की गहरी समझ ली, जो बाद में उनकी परफॉर्मेंसेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। भूमि ने 2015 में दम लगा के हईशा फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। उनका डेब्यू किसी ग्लैमरस हीरोइन के रूप में नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर के साथ हुआ। इस फिल्म में संध्या के किरदार में उन्होंने अपनी इमोशनल सिंसेरिटी, एफर्टलेस रियलिज्म, स्टोर स्टरिंग परफॉर्मेंस से हर फ्रेम को इमोशंस की गहराई और कैरेक्टर की इनर स्ट्रेंथ को खूबसूरती से उभारा। इस फिल्म में उन्हें उनके एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया। टॉयलेट एक प्रेम कथा, शुभ मंगल सावधान, सोनचरिया, बाला भीड़, भक्षक, बधाई दो जैसे कई फिल्मों के जरिए भूमि ने हर जॉनर में अपनी वर्सटैलिटी का एक नया आयाम पेश किया। सोशल ड्रामा से लेकर इंटेंस थ्रिलर्स और मेन स्ट्रीम कमर्शियल एंटरटेनर्स तक उन्होंने हर नैरेटिव में अपनी एक्टिंग के नए शेड्स एक्सप्लोर किए। वी विश भूमि अ वेरी हैप्पी बर्थडे, कीप एंटरटेनिंग अस भूमि विद योर परफेक्ट परफॉर्मेंसेस। फिलहाल अब हम जो ट्रैक सुनेंगे वो उनकी डेब्यू फिल्म का है, जी हाँ, मोह मोह के धागे। और वैसे भी जो ट्रैक है ना दोस्तों, इसे एक रोमांटिक मेलोडी नहीं है बल्कि दम लगा के हईशा में भूमि की ब्यूटिफुली रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस का एहसास भी है। पर भेजिए वो आप हमें बॉलीवुड सरदार से जुड़ा जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब, जी हाँ, कि वो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें प्रियंका चोपड़ा डांस कर रही हैं और जो पीछे जो बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनमें एक कैरेक्टर की आवाज़ है सुखविंदर सिंह। तो आपको बताना, मैंने इस बारे में आपसे अभी यू नो थोड़ी सी बातें भी की हैं, तो आप बताइएगा हमें कि वो ऐसा कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म का बता दीजिए वरना, कौन सी फिल्म का गाना या कौन सा गाना, कोई भी बता दोगे तो चलेगा, कि जिसे प्रियंका चोपड़ा डांस कर रही हैं और एक मेल की जो आवाज़ है, जो मेल कैरेक्टर है उसमें एक जो आवाज़ है वो सुखविंदर सिंह की है।

वेल गाइस, ये जो आप डांसिंग ट्रैक सुन रहे हैं ये है फिल्म दिल धड़कने दो का। और इस ये जो ट्रैक है, ये जो एनर्जेटिक सेलिब्रेशन सॉन्ग जो है, इससे प्रियंका चोपड़ा की वाइब्रेंट डांसिंग स्किल्स और सुखविंदर सिंह की इलेक्ट्रिफाइंग सिंगिंग स्टाइल का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रियंका के एफर्टलेस डांस मूव, एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज और इन्फेक्शियस एनर्जी ने हर फ्रेम को अलाइव कर दिया, लगता है ना। और सुखविंदर की आवाज, वो तो इस गाने की जान है, हार्ट बीट है। जी हाँ, और आज है इन दोनों का हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रिल्स में। और मैंने पूछा है कि आपसे 9868107070 पर कि वो ऐसा कौन सा ट्रैक है जिसे प्रियंका चोपड़ा जो है वो अपनी डांस मूव इंटेन कर रही है और सुखविंदर सिंह अपने सिंगिंग से हमें इंटेन कर रहे हैं। तो हमें जो फर्स्ट मैसेज आया हुआ है प्रवीण चौहान का खारगोन मध्य प्रदेश से, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब लिखा है और 11:30 एग्जैक्ट, क्या बात है। आपके लगता है मोबाइल के साथ बिल्कुल साथ में ही थे और इसी के साथ जी हाँ हमारे मैसेजेस लगता है फिर से कहीं चले गए। आज दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन नहीं ले पा रही हूँ, बहुत बहुत इसके लिए हम सॉरी फील कर रहे हैं सीरियसली, लेकिन क्या करें, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है ना। और आप तो जानते ही हैं, जी हाँ, जब इंसान थक जाता है तो मशीनें क्या है, वो तो इंसान की बनाई हुई है, कठपुतली है हमारी, तो वो भी हमारी खराब हो जाती है कई बार। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके साथ हैं इस समय बिल्कुल लाइव। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, बड़ा प्यारा मैसेज है, राम राम जी, राम राम जी। देखिए फिर से हमारा मैसेजेस जो है वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो हैं आपके साथ। हेलो नमस्ते इंडिया, जय जगन्नाथ जी, प्रियंका जी हमारी छोटी लाडली आए हो, देश सेवा और धार्मिक ज्ञान की चर्चा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बड़े सही है जी आप। रोहित खेरा दिल्ली से आप मैसेज कर रहे हैं, दिल कहे देश सेवा कीजिए, दिल से सदा प्रभु का नाम लीजिए, जितना हो सके सबको प्यार दीजिए, विचार सदा शुद्ध और आध्यात्मिक रखिए, ऐसे विचार मन में लाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। माह में लगभग एक बार आप आती हैं, इंतजार में पलके थक जाती हैं, इसलिए आते रहेगा, मिलते रहेगा, मधुर गीत के साथ ज्ञान बांटती रहेगा, नमन है आपके पूजनीय माता पिता को। थैंक यू सो मच रोहित जी, बहुत बहुत प्यारा मैसेज है, दिल को छू गया ये मैसेज। लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे कि मैं आई थी लेकिन प्रोग्राम हमारा दूसरा था, सेटेलाइट था, जी हाँ। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है सलीम मलिक का, गलत जवाब है, बहुत सारे दोस्तों ने गलत जवाब दिया है, क्या बात है, क्यों, डॉली ने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है, हरीश गौर ने हमें मेरठ से बिल्कुल सही जवाब दिया है, और इसी के साथ रवि जोशी जी ने भी गलत जवाब दिया है, फुरकान जी ने, क्या बात है, लगातार 3-4 मैसेज किए 11:37 पे, उनके भी 5 मैसेज हैं, बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हमें ओके रॉबर्ट का मैसेज आया है लेकिन इन्होंने भी गलत जवाब लिखा है। और इसी के साथ हम कहेंगे दोस्त आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़ी रही है और फिलहाल एक ट्रैक आपका वेट कर रहा है। जी हाँ, ये जो ट्रैक है ना, ये धुरंधर का, आई एम टेलिंग यू गाइस, इस ट्रैक में जो सबसे खूबसूरत कॉम्बिनेशन है वो पता क्या है, पहले सुनिए फिर आती हूँ आपसे बात करने के लिए कि उस ट्रैक का मुझे जो यूएसपी है वो क्या लगता है। मैं हूँ प्रियंका वर्मा, आपके साथ प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में।

इस ट्रैक में प्यार की सॉफ्टनेस और लॉन्गिंग दोनों ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं ना, और इस ट्रैक का रियल मैजिक है इनके वोकल्स। जी हाँ, जैस्मीन और सतेंद्र की जो अलग अलग टेक्सचर्स के साथ अपने खूबसूरत इमोशनल कैनवास क्रिएट करते हैं। इन दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल हैं, चाहे गाना एहसास से दूसरे एहसास से स्मूथली ग्लाइंड करता है। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। नेक्स्ट प्रोग्राम प्ले इट कूल, रेडी रहिएगा अदिति के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ठीक 1 बजे आऊंगी मेरा वाला सॉन्ग लेकर। जी हाँ, जो गाने वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब, उसके बारे में जानेंगे। आप 9868107070 पे भेजेंगे। 2000 ईयर के बाद के गाने हो, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हो, ज्यादा डांट नहीं लगाना अगर पुराने गाने भेजो तो, और मैं नहीं लगाऊं तो। जी हाँ, पहले ही बता देती हूँ मैं। चलिए इसी के साथ ठीक है, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गैरफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी सेवा

कान से मोहम्मद फुरकान जी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून, एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है अंदाज मूवी का। अंदाज से जो देखने के आपने गाने हमें लिखे हैं, ओके सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके ठीक है, कोशिश की जाएगी मोहम्मद फुरकान जी। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, ओके सुखलाल बाला हमें वेस्ट बंगाल से लिखते हैं, अंदाज मूवी का आएगा मजा, बरसात का ये गाना सुना दीजिए। ओके कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ आपने कहा है कि प्रियंका चोपड़ा का

0: द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: प्रणव शिंदे मुंबई से हमें लिखते हैं, क्या मैसेज लिखा है इन्होंने हमारी तारीफ में। ला ला ला, प्रियंका जी, आपकी आवाज में वो जादू है जो हर दिल को छू जाता है। जब आप बोलती हैं तब रेनबो पर तो दिल्ली का हर लम्हा मुस्कुराता है। हवाओं में बिखरती है जब आपकी आवाज की ये सुरीली तान। प्रियंका जी, आपकी सादगी और अंदाज पर फिदा है सारा जहां। कानों में रस खोलती है आपकी ये प्यारी सी आवाज। थकी हारी दिल्ली को पल भर में दे जाती है गहरा सुकून और नया सांस। क्या बात है, आपके ये चॉइस जो है, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, ये प्ले हो रहा है फ्रॉम द फिल्म यस बॉस। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज।

हाँ, वैसे तो गाने कहते ना कि अगर तुम जो कहो वही बात सुनेंगे, तुम जो कहो वही बात सुनेंगे, इसको कोई पूरा कर सकता है? जी हाँ, मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे, हालांकि मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, लेकिन तुम जो कहो वही बात सुनेंगे इस

शुक्रिया दोस्त रवि जोशी मेरठ से हमें लिखते हैं। इसी के साथ हमें मैसेज आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। बिल्कुल कर लिया है। और जी एस गिल का पटियाला से है दर्दे डिस्को फ्रॉम ओम शांति ओम। इसी के साथ ओके ये हमें मैसेज आया है गुड आफ्टरनून प्रियंका, तुझे देखा तो ये जाना सनम, लवली ट्रैक, डीडीएलजे का बहुत प्यारा ट्रैक है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत

वैसे अगर ये आपने मूवी देखी है ना, तो सीरियसली ये जो मूवी है, इस खासकर इस गाने की बात करूँ ना, तो इसमें झिलमिल चैटर्जी का जो किरदार प्रियंका ने बड़ी मासूमियत के साथ निभाया स्क्रीन पर, मतलब बिना ज़्यादा शब्द हैं उस उनके कैरेक्टर में, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से वो कैरेक्टर जो है वो बयां करती हैं अपना, कि वो क्या कहना चाहती हैं, उनके एक्सप्रेशन के सरल एक्सप्रेशन हैं। आकाशवाणी रीन पर प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। वैसे गाइस, साउंड एयर में वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड हमारे कानों तक पहुँचती है और म्यूजिक सुनाई देता है। तो क्यों ना अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचाएं अपने कानों तक। इसी के साथ हमें मैसेज आया फिल्म भूल भुलैया का, मेरी डोलना मेरे सुन। ओके, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, ये गाना मैंने क्यों कर दिया है। और इसी के साथ, हेलो मैम, आई एम गुलाब सिंह फ्रॉम सहारनपुर, मैं अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ ये गाना, दिल दिया गलना। ओके, टाइगर जिंदा है मूवी का, मेरी वाइफ पुष्पा कोहली, माई डॉटर अनन्या सिंह कोहली का नाम भी शामिल कर लीजिए। बिल्कुल कर लिया जी। और इसी के साथ प्रियंका जी, तुम जो ना भी कहो फिर भी हम समझ लेते, दिल से दिल तक का साथ रहेंगे। आपको याद रहा वो लाइन? चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी को तो लगा कि मैंने वो लाइन बोली है, उसे कंप्लीट किया जाए। तुम जो ना भी कहो फिर भी समझ लेते हैं, दिल से दिल तक का साथ रहेगा। ओहो, जब तक रवि जोशी मेरठ से हमें लिखते हैं, क्या बात है। इसी के साथ, नमस्ते दीदी। ओके, राजेश खन्ना की पुण्यतिथि पर प्लीज अनुरोध, फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर। श्रीपाल गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से, जी बिल्कुल कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ मैसेज आया है, फिल्म राज का और तेरे नाम का हमें ट्रैक सुनना है, सोनी गुप्ता नागलोई से हमें लिखती हैं। ओके, और इसी के साथ, हेलो गुड आफ्टरनून, ओके प्लीज मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। ओके, सॉरी मैं अपना नाम लिखना भूल गई, लवली। कोई बात नहीं, दोबारा लिख दीजिए। इसी के साथ, गुड आफ्टरनून मैम, मैं रिंकू कुमार। ओके, आपने हमें बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से लिखा है, आपने दो चार गाने लिखे हैं। ओके, इसी के साथ हमें रायपुर से मैसेज आया है कुलभूषण जी का, और इसी के साथ, बर्फी मूवी देखी नहीं, अब देखने का ट्राई करूंगी। ओके, ये बिल्कुल, ये मूवी जरूर देखना। ओके, आपकी आवाज में जो मीठी सी मुस्कान हमेशा बनी रहे, थैंक यू सो मच। डॉली हमें लिखती हैं दिल्ली से, गुड आफ्टरनून विजेंद्र कोला घटोल। ओके, इसी के साथ सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, प्रियंका जी वेरी हेल्दी एंड हैप्पी सैटरडे, गुड आफ्टरनून। ओके, आपने हमें मिस्टर आशिक का गाना लिखा है, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। और कासगंज से राधे श्याम, ओके प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। ओके, धीरे धीरे नजर, ये कौन सी फिल्म का गाना है जरा मुझे बताइएगा। और इसी के साथ

हमें मैसेज आया है, ओके क्या करे क्या करे क्या करे, मैसेज आ रहे हैं और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। ओके राम राम जी, राम राम जी। और ये में मैसेज आया है, ओके रोहित खेरा जी का मैसेज है और ये कहते हैं कलयुग में अवतार हो आप। ओहो क्या बात है, कलयुग में अवतार हो आप, दिल से सबके जिससे जुड़ गए वो तार हो आप, रोशन हो जाए सारा जहां ऐसे स्टार हो आप। वनमा जी कुछ भी कहो, सुपरस्टार हो आप, निरंतर आते रहा कीजिए भाई के प्यार और आशीर्वाद के साथ, अपना साथ बनाए रखिए, यूं ही हम सबको अपनी सुदबुद्ध से वाकिफ कराते रहिएगा, मेरे रंग दे बसंती चोला। थैंक यू सो मच। मेरे पास ना कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, पता है आपके मैसेज का जवाब देने में कितना अच्छा लिखते हैं कि क्या कहें, दिन बना देते हैं। और इसी के साथ डियर प्रियंका जी, सो स्वीट लवली वॉयस, ओके ये मिसेस धर्म भाटिया ने हमें लिखा है, ये हमारी बहुत तारीफ की है, थैंक यू सो मच। चर्ची के साथ हेलो, मेरा वाला सॉन्ग थ्री इडियट का बहती हवा सा, विकास पाठक हमें लिखते हैं, ओके इसी के साथ मैं बहती हवा सा क्यों कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैंने कहा था मेरे डोलना हमें मैसेज आया था, तो चलिए इस गाने को सुनते हैं।

पता है दोस्तों, आवाज परफेक्ट ना भी होना फिर भी गाना गा लेना चाहिए। मैं कहती हूँ ना, हमेशा मजाक मजाक में ही कहती हूँ कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए जी हम मेरे वाला सॉन्ग चाहे कैसा भी हो क्योंकि गाने सिर्फ सुर और ताल का खेल नहीं होता बल्कि दिल की आवाज होता है। हर इंसान के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो पाते हैं।

मैसेजेस शामिल नहीं कर पा रही, पर क्या करें, समय की पाबंदी आप भी जानते हैं, समय से होना चाहिए। और इसे आदिल कुमार गुनौर, शुक्रिया, धन्यवाद प्रियंका जी को, प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू सो मच दोस्त। और इसी के साथ मैसेज आया कि हाय डियरेस्ट प्रियंका मैम, कैसी हैं, मैं सो रही थी, शोर सुनने में लेट हो गए। अंशी शर्मा हसनापुर मेरठ से लिखती हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें, और ये मैंने आपका दोस्त पढ़ा है, आपका नवलू वरक फ्रॉम गांव मलपुर जिला, आपने 5-6 बार लिख दिया है, मैंने लिखा है आपको। इसी के साथ जयराम खोरवा, सच बहुत खूबसूरत है दीदी, थैंक यू सो मच। विजेंद्र अकोला घटोल हमें लिखते हैं, इसी के साथ हमें वरुण लिखते हैं, अलीगढ़ से लिखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे, जी हाँ बिल्कुल सेलिब्रेट कर चुकी हैं, और क्रिश का गाना, मैंने उनकी फिल्म का गाना लगाया है बर्फी का, और आपको हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। इसी के साथ टेक केयर गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड गेस देश का ख्याल रखिए, देश का मान बढ़ाते रहिए, और अपना भी ख्याल रखिए। जलवा जलवा।

पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मालडोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबरस के निधन पर शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने के आदेश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल के लिए सरकारी

नमस्कार भारत की नमस्कार। दोपहर के 2 बजे हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित हुए रॉकेट विक्रम-1 ने अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक सफल प्रवेश कर लिया है। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस टीम को फोन पर रॉकेट विक्रम-1 के सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचने पर बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने विक्रम-1 की टीम को उनसे मिलने के लिए बुलाया। गृह मंत्री अमित शाह आज

गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने के आदेश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल बांकुड़ा जिले के मोजिया में स्टील निर्माण इकाई

अस्पताल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल बांकुड़ा जिले के मोजिया में स्टील निर्माण इकाई के विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में माओगंज पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस

अस्पताल ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल बांकुड़ा जिले के मोजिया में स्टील निर्माण इकाई के विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में माओगंज पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर

वेल वेल वेल, आपके साथ हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। एंड भी जैसे कि हमने बात की थी कि कौन से होते हैं टॉक्सिक लोग और कैसे उनके साथ आप कोप अप कर सकते हैं।

0: जी बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि दिल संभल जा जरा, क्योंकि फिर से तू किसी पे भरोसा करने चला है, फिर से तू उन लोगों के साथ उठने बैठने लगा है जो तुझे टॉक्सिक वाइब्स दे रही है। एंड वेल, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने प्रोग्राम आशियाना में। एंड हमारे दोस्त रवि जोशी मेरठ से मुझे कह रहे हैं कि आरती जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी, कैसी हैं आप? कुछ रिश्ते एक किराए के आशियाने की तरह होते हैं, कितना भी सजा लो लेकिन वो अपना नहीं होता। ये अपना थॉट है। और साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि आपका सच्चा साथी आप खुद हैं, आने वाले का स्वागत कीजिए और जाने वाले को शीघ्र विदा कीजिए, टेंशन नहीं लेते। दैट्स ग्रेट। इसे भी पॉजिटिविटी कहते हैं कि ज्यादा टेंशन मत लो जो जा रहा है, क्योंकि जो जा रहा है वो आपका था ही नहीं ना, तभी तो जा रहा है। अगर आपका होता तो रुक जाता ना मेरे दोस्त। तो जो आपका नहीं था उसको टाटा बाय बाय करो, और जो आ रहा है, जो आपके पास है, उसका स्वागत करो। हमें ये मैसेज मिला है जो मेरी दोस्त बोल रही हैं, गाने की प्लेलिस्ट बहुत खूबसूरत है, आशियाना प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, आरती जी आप कैसी हैं? और विजेंद्रा कैटोल अकोला से ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही ज्योति मुझे कह रही है कि प्रोग्राम अच्छा है। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ, कुछ टॉक्सिसिटी या कुछ ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस करना चाहें, शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। एंड हमारा साथ बना रहेगा आप सभी के साथ एक और खूबसूरत गीत आप सबके लिए। कौन सा, गेस कीजिए। लॉन्ग द लश्कर।
1: दिस इज समथिंग

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका क्या योगदान होता है हमारे जीवन में,

0: और उनका महत्व हमारे जीवन में कितना है, ये तो सब हम मानते हैं, हमारे सब श्रोता जानते हैं कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमें जीना सिखाते हैं और उनकी भूमिका हमारी जिंदगी में ताउम्र हमारे साथ रहती है। लेकिन क्या सच में ये भूमिका निभाते निभाते कुछ बातों का ध्यान रखना हम भूल जाते हैं? क्या जरूरी होता है कि माता पिता को भी बताया जाए कि उन्हें कैसे समझना है, कैसे सिखाना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है? ये कुछ बातें हैं जो हम उतना बात तो नहीं करते हैं रेडियो डॉक्टर में, लेकिन हमने सोचा इसको बात करना बेहद जरूरी है, तो क्यों ना इस बात से आज हम शुरुआत करें। और इस विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी भी हर बार की तरह बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराती हूं हमारे आज के रेडियो डॉक्टर्स से, हमारे आज के एक्सपर्ट्स से, जो नेविगेट करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम में और आपको बताएंगे व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद हुबे अली, आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
1: नमस्कार।
0: और हमारी दूसरी गेस्ट हैं अलका मल्होत्रा जी, आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए आप दोनों यहाँ आए हैं, नमस्कार अलका जी।
2: नमस्कार। नमस्कार टू एवरीबॉडी।
0: और हम स्वागत तो कर चुके हैं अपने स्पेशलिस्ट का, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अली, क्या होता है उद्देश्य ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाने का, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट?
1: क्योंकि अभी बहुत कुछ देखा गया है कि जब पेरेंट्स और बच्चों का जो कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट कहीं ना कहीं हमारा खत्म होता जा रहा है। लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं और मोबाइल और टेक्नोलॉजी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो बच्चों का पेरेंट्स का आपस में जो कनेक्ट होना है वो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कम हो रहा है। इसी कनेक्ट को वापस जोड़ने के लिए ताकि माँ बाप बच्चों के साथ किस तरह से अपने घर में जुड़ सके।
0: जी, आपने कहा कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और हमारे साथ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं अलका जी, आप ये बताइए कि ये कनेक्ट कम क्यों हो रहा है एंड हाउ इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन क्या जीवन में रोल प्ले करता है?
2: जब से बच्चा पैदा होता है तभी से बच्चा माता और पिता के साथ एक लगाव शुरू करता है और सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन बच्चे की घर में शुरू होती है माता पिता के साथ। तो इसीलिए माता पिता का कनेक्ट बच्चे के साथ होना बहुत जरूरी है। बच्चा स्कूल, दादी दादू, सबको, नाना नानी, सबको बाद में मिलता है, सबसे पहले माता और पिता के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए माता पिता के साथ का लगाव बहुत जरूरी है और वो लगाव बचपन से शुरू होकर एडोलेसेंस में जब बच्चे अपने करियर चूज करते हैं, कैसे अपने माता पिता से डायरेक्शन ले सकते हैं, करियर में क्या उनको जानकारी होनी चाहिए, वो सब भी गेटवे जो है वो माता पिता के द्वारा होता है। टीचर से सीखते हैं पर घर में क्या परिस्थिति है, घर में क्या करना चाहिए, वो माता पिता के साथ का कनेक्ट है। इसीलिए माता पिता का बच्चे के साथ नर्चरिंग, शुरू में लगाव, स्टिमुलेशन से लेकर जबकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, अंत में जब बच्चा घर छोड़ के नौकरी करने लगते हैं, अपना परिवार बनाने लगते हैं, तब तक माता पिता का जुड़ाव और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो
0: जी। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कनेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल हम ये भी सुनते हैं कि जब बच्चे एडोलेसेंट में आते हैं, छोटे बच्चे तो फिर भी हम देखते हैं कि माँ बाप से हर चीज पूछ लेते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं स्कूल जाते वक्त, बच्चे पढ़ाने लिखाने में भी, बच्चों के जब एग्जाम होते हैं माँ बाप उसमें पूरी तरह से दखल रखते हैं, लेकिन जैसे बच्चा एडोलेसेंट एज में आता है तो हम अक्सर माँ बाप को कहते सुनते हैं कि अब तो बच्चा सुनता ही नहीं है, अब तो हमारी चलती ही नहीं है, अब तो हमें डरना पड़ता है बच्चों से। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये एडोलेसेंट एज में जब आता है, इसको कैसे डील किया जाए, ये इतना इम्पोर्टेंट है?
2: सबसे ज्यादा जरूरी है माता पिता का बच्चे के साथ जुड़ना, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जो हम कहते हैं। बेसिकली क्या है कि बचपन से एडोलेसेंट्स में जाते हुए और ज्यादा इंटेंस चेंजेस होने लग पड़ते हैं बच्चों में, वो अपने आप को समझना शुरू करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंस की सोच रखने लग पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि अब हाइट तो मेरी बढ़ गई है, अब मेरा ओपिनियन भी बढ़ना चाहिए, तो उनको ज्यादा जानकारी मिलती है स्कूल से। तो माता पिता का रोल उसमें शुरुआत से ही है लिसनिंग का, सबसे पहले सुने अपने बच्चों को, उनको समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उनको जज नहीं करना है, उन्हें अपने बच्चों से डरना भी नहीं है, उन्हें बच्चे को साथ लेकर चलना है, सुनना है, समझना है, उससे बातचीत करनी है। अगर बातचीत करते रहेंगे अपने बच्चों के साथ तो जुड़ाव रहेगा और जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जहां पर वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं और बच्चे की सोच को समझकर उसे बदल भी सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। वो जमाना गया जब

0: हम लोग छोटे थे और हम अपने माता पिता की बात, क्योंकि वो पिता कह रहे थे तो उस बात को समझ लिया। अब बच्चों को जानकारी है, मोबाइल है, स्कूल है, उनके दोस्त हैं, उनको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। कभी कभी किसी किसी विषय में उनकी जानकारी माता पिता की जानकारी से भी ज्यादा होती है। तो उस किस्से में, उस सिचुएशन में बच्चे की बात सुनना, उसे समझना और अपनी समझ से उसे बातचीत सबसे ज्यादा जरूरी है। रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बात बनेगी तो बात बढ़ेगी ना,
1: बात तो, से बात बनेगी,
0: बात बिल्कुल से बात बनेगी।
1: और ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि पहले से हम कंपेयर करते हैं कई बार कि हम जब छोटे थे तो हम तो ऐसे नहीं करते थे, हमें जो कहा जाता था हम सुन लेते थे, लेकिन इसको जज नहीं करना है। जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली, और जैसे समय बदलता है उस हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंज करना है। बच्चों का एक दूसरी जनरेशन जब होती है तो उसका एक अलग माइंडसेट होता है और अलग उनका एक सारी दुनिया से कनेक्ट होना है। जैसे आजकल डिजिटल एज है तो बहुत सारी चीजें आ भी गई हैं, तो इस बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जो आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ शालिनी मित्तल और आज बात कर रहे हैं पेरेंट्स पर। और आज हमारे साथ हमारे दो विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद अली और अलका मल्होत्रा जी। और हम बात कर रहे थे पेरेंट्स की आवश्यकता क्या होती है बच्चों के लिए, उनकी क्या महत्ता होती है। इस पर तो कोई वाद विवाद है ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं एक दूसरे के लिए वो लाइफ में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिस कम्युनिकेशन, जैसा आपने बताया कि सही कम्युनिकेशन या कनेक्ट ना हो तो भी प्रॉब्लम बहुत विकराल रूप ले सकती हैं। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंटिंग में अक्सर महिलाओं को ही ज्यादा फोकस में रखा जाता है और पुरुषों से उतनी ना तो उम्मीद की जाती है ना उनको पेरेंटिंग में उतना शामिल किया जाता है। तो अगर हम पुरुषों के रोल पर बात करें, फादर के रोल पर बात करें, तो अलका मैम आप क्या कहेंगी, क्या रोल होना चाहिए आपके हिसाब से फादर का?
1: पेरेंटिंग जो है ना, ये एक जैसे शादी 50-50 का रोल होता है ना, वैसे पेरेंटिंग भी 50-50 का रोल होता है। बहुत सारे स्टडीज की गई हैं और बार बार निकल के आता है कि माता से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, माता उसे समझाएगी, बचपन से माता केयर का रोल करेगी, माता स्टिमुलेशन करेगी, माता खाना खिलाएगी, जबकि ये सारी चीजें पिता कर सकते हैं। और पिता जब करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ बढ़ती है। तो चाहे वो स्टिमुलेशन है, कितने पिता हैं जो अपने बच्चे को उठाते हैं, गोद लगाते हैं, गले लगाते हैं, हग करते हैं, कडल करते हैं, ये सब चीजें जो फिजिकल कांटेक्ट होता है ना पिता और माता के साथ, उसके साथ लगाव बढ़ता है। तो पिता के साथ अगर पिता ये ही रोल करेंगे तो उनके साथ भी लगाव जो है बच्चे का वो बढ़ेगा बचपन में। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी के गाने में भी हमने सुना से पिता से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, चॉकलेट
0: जी
1: जो कि बिल्कुल ठीक है, आप चॉकलेट एक्सपेक्ट करिए अपने पिता से, पर साथ साथ आप पिता से कहानी भी एक्सपेक्ट करिए, आप पिता से ये भी एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको घूमने लेके जाएंगे। एक हमने स्टडी करी थी 3 प्रदेशों में और निकल के आया कि पिता जो है वो घर लौट के बच्चे को अपना मोबाइल फोन दे देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने टॉय दे दिया, ये हो गई मेरी पेरेंटिंग का रोल। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा मोबाइल फोन नहीं चाह रहा है, बच्चा माता पिता से बात करना चाह रहा है। तो बच्चे के साथ खेलिए, उसे बातें बताइए, उसको कहानियां सुनाइए, उसको उठाइए, उसको गोद में लीजिए। एडोलेसेंट्स में हम लोग देखते हैं नॉर्मली फादर जो है ना वो एब्सेंट और फन पेरेंट माना जाता है, चॉकलेट देने का पेरेंट, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे से बातचीत करना, लगाव बनाए रखना, उसे गोदी में बिठाना और उससे अपना प्यार बढ़ाना। तो चाहे वो खाना खिलाने का समय है या वो हग करने का समय है, सुलाने का समय है, पिता इक्वल रोल पे कर सकते हैं
0: जी। और जैसे आपने कहा, हमने और जिक्र किया कि कई बार अगर हम पुरानी कुछ पीढ़ियों पर नजर डालें तो बहुत कैटेगोरिकली रोल डिस्ट्रीब्यूटेड था, जैसा कि अब वो लाइंस थिन हो रही हैं या ब्लर हो रही हैं या कहीं कहीं गायब भी हो रही हैं, क्योंकि अब इक्वली वुमेन भी वर्क कर रही है, घर से बाहर निकल रही है और उतना ही दिन या समय वो अपने कार्यस्थल पर भी रहती है। तो उसको पूरी तरह से बच्चे को देखना या उससे एक्सपेक्ट करना कि वो पूरी तरह से एक हाउसवाइफ की तरह देख पाए, वो भी उतना इजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जब रोल या चेंजेस होते हैं समाज में तो उस तरह से एक माइंडसेट में भी रोल

0: या डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, क्या कहेंगे डॉक्टर अली इस बारे में आप कि कैसे ये चेंजेस माइंडसेट्स में आने चाहिए?
1: हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जो मैडम ने बताया 50-50 का जो रोल है, क्योंकि अभी जैसे महिलाएं भी वर्क प्लेस पे बहुत टाइम गुजारती है, तो दोनों अगर इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे गाने में सुना कि माँ लोरी सुनाएगी, तो ये पिताजी भी लोरी सुना सकते हैं। एक मेरे को लगता है कि जो स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अगर कोई फादर है बच्चे को देख रहा है तो बहुत चैंपियन है, वो स्टीरियोटाइप बदलना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो बच्चे का अपब्रिंगिंग भी होगा, और बहुत से जगह में बहुत से स्टडीज भी ये निकल के आ रहा है कि अगर दोनों माता और पिता दोनों बच्चे के अपब्रिंगिंग में इक्वल ये लगते हैं तो बच्चे का मानसिक, फिजिकल और इमोशनल तीनों भी अपब्रिंगिंग अच्छे से होते हैं।
0: जी, और बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सिर्फ यहाँ पर फिजिकल वेलबींग की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल पूरी तरह से एक पर्सनालिटी की अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं कि वो बैलेंस्ड एक पर्सनालिटी बने। और यहाँ पर एक मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं। डॉक्टर अली और डॉक्टर अलका जी, वर्तमान में तीन जनरेशन मौजूद हैं, 1950s, 1990s और 2026। आज के समय में पेरेंट्स को शिक्षित और अनुशासित होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप ही रोल मॉडल हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और बिल्कुल यही मेरा अगला प्रश्न भी था अलका जी आपसे, कि कई बार होता है कि हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए, लेकिन हम कई बार वो खुद फॉलो नहीं कर पाते, चाहे फोन से रिलेटेड बात हो कि हम मोबाइल पर हैं और हम बच्चों को कहेंगे कि मोबाइल मत देखो ज्यादा तुमको नुकसान करेगा, या फिर ईटिंग हैबिट्स हो, या फिर अपने हेल्थ या हाइजीन की बात हो, या स्लीप की बात हो, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप एक रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए?
2: मेरे ख्याल से तो जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग, जब तक आप पेरेंट नहीं बनते हैं ना तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जैसे ही आप पेरेंट बन जाते हैं तो जो भी आप कर रहे हैं वो उसका ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है आपके बच्चे के ऊपर, बनिस्पत के जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को वॉच नहीं करेंगे, अगर आप सच नहीं बोलेंगे और आप कोई भी बात को टाल देंगे तो बच्चा भी टालने की आदत फटाफट सीख लेते हैं। बच्चे, फोन तो एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है कि अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि देखिए तुम अपना समय फोन के ऊपर आधा घंटा दीजिएगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, और आप सारा टाइम फोन पे लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा समझ रहा है कि ये रूल इनके लिए नहीं अप्लाई करता, मेरे लिए करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या डिफरेंस है जो कि इनमें नहीं है। तो धीरे धीरे करके जो भी आप अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसे खुद करके दिखाइए, तो उससे बच्चा सीखने लग पड़ता है। अब हम जेंडर सोशलाइजेशन की भी बात करते हैं कि महिला काम करने जाने लग पड़ी है, पुरुष किचन में जा सकते हैं, पुरुष खाना बना सकते हैं, पुरुष खाना परोस सकते हैं, केयर कर सकते हैं बच्चों की भी घर में और बड़े बूढ़ों की भी। यही चीज अगर वो अपने घर में देखेंगे कि मेरे पिता भी किचन के अंदर जाते हैं, मेरी माता लाइट बल्ब बदल लेती है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये कोई जेंडर्ड रोल्स नहीं है कि ये पिता ही कर सकता है और ये माता नहीं कर सकती, और ये माता ही कर सकती है और पिता नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं रोल मॉडलिंग। तो जब आप पेरेंट बन जाते हैं तब ऑल द मोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं है कि आप क्या बता रहे हैं, पर आप क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चे को, और वही चीज बच्चे बार बार सीखते हैं। शाउटिंग इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। आप बच्चे को बोलिएगा कि आप ऊंची आवाज में बात मत करिए, और आप माता पिता एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, हर एक बात में डिसअग्री कर रहे हैं, हर एक बात में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बच्चा तो समझ गया ना उसी समय कि ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के
0: और माता पिता ये समझ रहे हैं कि बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो सब ऑब्जर्व करते हैं,
2: सब ऑब्जर्व करते
0: हैं। जी जी, जब हम स्लीप की बात करें, हाइजीन की बात करें, अलका जी ने बताया किस तरह से हमें करके रोल मॉडल बन के दिखाना है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कई घरों में कि बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्स या प्रेशराइज किया जाता है कि आप पढ़िए, आपको कुछ बनना है, या कुछ उनकी ऐसी पेरेंट्स की अपनी इच्छाएं हैं जो वो नहीं कर पाए या कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो वो उनको प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, और इससे कई बार बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। अगर अच्छा पेपर नहीं हुआ तो कई बार वो ऐसा स्टेप भी उठा लेते हैं कि अपने को नुकसान पहुंचाना या सुसाइड तक बात कई बार पहुंच जाती है, मेंटल उनका ब्रेकडाउन भी हो जाता है। तो इस तरह से किस तरह से उनको हैंडल किया जाए इमोशनली कि मेंटल हेल्थ उनकी सही रहे, और अगर ऐसा कोई डील कर रहा है तो क्या सिम्टम्स उसमें देखने चाहिए कि उन्हें पता लगे कि मेरा बच्चा उस तरफ तो नहीं जा रहा है।
1: सबसे पहले प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें ये देखे कि हमने एक स्टडी की थी कि ड्राइवर्स क्या

ये मेंटल हेल्थ के बच्चे जो शिकार हो रहे हैं एंजाइटी है, डिप्रेशन है या सेल्फ हार्म है, तो उसके हमको तीन ड्राइवर्स मिले हैं। ग्लोबली भी ये स्टडी है, यूनिसेफ WHO की, और इंडिया में भी ये स्टडी है। एक तो जो घर में कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चों के, खास तौर के यूथ यंग एडल्ट्स के ऊपर जो मानसिक प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चे इसे कोप नहीं कर पाते, इसलिए सेल्फ हार्म टेंडेंसीज या घर से बाहर रहना, दूर रहना, अकेले रहना ये शुरू कर देते हैं, ये एक हुआ। दूसरा, इस एज में पर्टिकुलरली यूथ्स और यंग एडोलेसेंट्स में लव अफेयर्स की वजह से भी काफ़ी बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और तीसरा जो आपने बताया प्रेशर, या तो एग्जाम का प्रेशर है या जॉब लगने का प्रेशर है, ये तीन जो ड्राइवर्स है ये बच्चों के लिए मानसिक संतुलन को बिगाड़ने में बहुत काम कर रहा है।

0: खुल के बात ना करना, हंस नहीं पाना और आंख में आग डाल के बात नहीं कर पाना। और इसमें जो पेरेंट्स का जो मेन रोल है, थेरेपिस्ट जो करेगा सो करेगा, पेरेंट्स को चार चीजें, अगर आपका बच्चा इस किसी भी स्थिति से गुजर रहा है, सोशली अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है, तो चार चीजें करें। एक तो उसकी बात को आप समझे, पहले उससे बात करें, लिसन एंड डू नॉट एडवाइस। हम लोग बहुत जल्दी बच्चे को एडवाइस करना शुरू कर दें, तो बच्चे की बात को हम सुने एक। दूसरा हम उसको ये बताएं, उसको रीअश्योर करें कि भाई मेरा आपको सपोर्ट होगा, जो भी परिस्थिति गुजर रहे हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरा, अगर उसको कोई ख्यालात आ रहे हैं या उसको कभी कभी हेलुसिनेशन डेल्यूजन्स हो रहे हैं, तो उसको हम एक्सक्लूसिवली चैलेंज ना करें, भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, एकदम से जो नहीं करके हम कहते हैं तो ये ना करें। और चौथी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, बच्चे के साथ में मिलके उसके साथ सॉल्यूशन को ढूंढे, ना कि अपना सॉल्यूशन उसके ऊपर थोपे। तो अगर ये चार चीजें हम करते हैं तो बहुत ज्यादा बच्चों को हम इसमें से निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। या एक और होता है कि बच्चा अगर ऐसे कुछ कर रहा है तो उसका ये स्कूल में प्रॉब्लम है, स्कूल चेंज कर दिया, यहाँ पे है नानी के घर भेज दिया, शादी करके दे दो, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। उसको आप बात को समझिए, थेरेपिस्ट के पास ले जाइए। अभी तो बहुत से सिस्टम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत काम किए, टेलीमानस में आप बात कर सकते हैं 144-16 नंबर 14416 पे 24/7 कॉल करके वार्तालाप किया जा सकता है, काउंसिलिंग की जा सकती है, मनोदर्पण के थ्रू इसे बात की जा सकती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक से आप सब डिस्ट्रिक्ट में और सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो उसके नीचे सीएससी यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो काउंसिलर है उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो वहां जाके भी आप वार्तालाप किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है, प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चे की भावना को समझे और उसको सही दिशा में ले जाएं।
1: जी, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हमें इस कार्यक्रम में आज पता लग रही हैं। हमें श्रोता लिख रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, विषय हमें पसंद आ रहा है और बहुत अच्छी जानकारी आपके विशेषज्ञों के माध्यम से हमें मिल रही है। तौसीफ अहमद हमें लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कि इनकी एक बेटी है अभी 2 साल की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन चाह रहे हैं कि किस तरह से उसको पाले पोसे, इस के माध्यम से कुछ मदद मिल सके।
0: 2 साल का बच्चा है, सबसे पहले तो बच्चे के जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका हुआ होगा डिलीवरी, तो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड करके आता है, उस कार्ड में लिखा होता है कि 2 साल के बच्चे की क्या माइलस्टोन्स रहने चाहिए। बच्चे को आप साथ में रखिए, बच्चे को आप खिलाने में आप माता और पिता दोनों भी भागीदारी करिए, बच्चे से बात करिए। हम लोगों को लगता है कि 2 साल का बच्चा क्या ही बात करें, मगर आप जितना उससे बात करेंगे उतना सोशल और इमोशनल कनेक्ट माता पिता के साथ बच्चे का बढ़ता है। तो जैसा जैसा बच्चा आपके साथ बड़ा हो रहा है, आप बच्चे को उसी तरह से साथ में बड़ा करिए, ना कि अभी बहुत से घरों में देखा जा रहा है कि माता पिता दोनों जॉब पे है तो नैनी के साथ ही बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, तो वो कनेक्ट हमारा बच्चे के साथ रहा नहीं जाता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपका बच्चा वो छोटा है, उसके साथ अगर आप ग्रो होंगे तो जो एडोलेसेंट अवस्था में आके अगर हम बच्चों को, फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आते हैं और बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि अब इनको मेरी याद आ रही है और ये अब मेरे ऊपर जो है बॉसिंग कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए। तो ये छोटे बच्चे के साथ जब आप खुद बड़े होंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके नहीं आएंगे।
1: साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत कमजोर है इनकी बेटी, तो इसका मतलब फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसा आपने बताया इमोशनल तो देना ही है, फिजिकल पे भी इन्हें ध्यान देना होगा। देवदत्त पारसोलिया जी हमें लिख रहे हैं कि इन्हें ये विषय बहुत पसंद आया है और एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आपको धन्यवाद, आप इस तरह से हमें मैसेज कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं पेरेंट्स पर विशेष रेडियो डॉक्टर। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक गीत सुनकर वापस आएंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हमसे पूछते रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स 4 बजे तक स्टूडियो में रहेंगे।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीना।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में, हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार शालिनी जी, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी जी यशपाल जी, बताइए क्या पूछना है आप? विषय सुन लिया हमारा,
2: टॉपिक अच्छा है। दोनों एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बोल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं हमारे स्पेशलिस्ट आज, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
2: शालिनी जी, मेरा इशू है ना वो हेल्थ से रिलेटेड है। अब जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, मतलब जो 40 से जिनकी कम है, 40 से कम के, तो उनकी खुद की ये जो लाइफ स्टाइल है, मतलब ऐसे अनहेल्दी है, डिसिप्लिन नहीं है, दोनों वर्किंग भी हैं, तो उनको ज्यादा हेल्थ का इम्पोर्टेंस भी नहीं इतना, आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इम्पोर्टेंस। तो वो इस वजह से या कुछ दूसरे मजबूरी से दे, मतलब वो बच्चों को भी उतना नहीं टेक केयर कर पाते हैं। तो सबसे मुझे ये फियर है, लगता है कि मतलब बच्चे भी जो आगे भविष्य में भी उनको हेल्थ वाइज उनका जो है ना इशू वो रहेगा, देयर विल नॉट बी हेल्दी जनरेशन। बस एक मेरा इसी पर।
1: जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं यशपाल जी, और इसीलिए जरूरत पड़ रही है हमें ये कार्यक्रम भी करने की, क्योंकि सीधे कहीं ना कहीं ये जो रोल है पेरेंट्स का, ये उनके स्वास्थ्य पर, हमारे आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है, जैसा आप डर दिखा रहे हैं, ये डर हमारा भी है। और इसीलिए हम आज गेस्ट लेकर आए हैं, स्पेशलिस्ट लेकर आए हैं, कि वो बता रहे हैं कि सीधे सही अच्छी पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए और हेल्थ पर कैसे ध्यान देना चाहिए। कुछ आप और कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे?
2: नहीं, बस इनकी एडवाइस थोड़ा लेना चाह रहा था कि इसमें कैसा कुछ कम कुछ पॉसिबिलिटी है, मतलब ठीक होने का कुछ।
1: जी जी, मैं हमारे विशेषज्ञ से पूछ लेती हूँ, किस तरह से माइंडसेट चेंज किया जाए बच्चों का?
3: देखिए, हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही समय पर जो भी भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सही समय पर खाए। आप जब भी खाना खाते हैं तो अकेले अकेले ना खाए, हम जब आप पेरेंट्स खा रहे हैं बच्चों के साथ मिलकर खाना खाए, और खाने में जो जंक फूड है इसको हम लोग अवॉइड करें अगर हेल्दी रहना है। खाने के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और जो कुछ हमारी बुरी आदतें हैं, जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं साथ में चाय पी रहे हैं, तो फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। तो आप खाने के घंटा पहले और खाने के घंटे बाद तक चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। तो अच्छी आदतें डालें, हम लोग खुद भी हेल्दी रहें, बच्चों को भी इस हेल्थ की आदत डालें, हेल्दी फूड की।
4: हेल्दी फूड और एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
1: जी, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, और ये आजकल देखा जा रहा है कि जो सर्वेज हुए हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, धूप में नहीं खेल रहे हैं, जैसा आपने एक्सरसाइज की बात की कि बैठे बैठे ही, क्योंकि आजकल गैजेट्स बहुत हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोन पर या टीवी पर या मोबाइल पर वो मैक्सिमम समय अपना यूज कर रहे हैं, उसके कारण बहुत सारी फिजिकल भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, जैसे नेक पेन, और ये इस पर हम कार्यक्रम करते रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरह की जब ऑनलाइन बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं और उनको समझ नहीं होती है उस एज में, कई बार बहुत यंग छोटे बच्चों को भी ये सारी सुविधाएं दे दी जाती है पेरेंट्स द्वारा, तो जब बहुत छोटे हैं उनको पता नहीं है किस तरह से साइबर फ्रॉड हो सकता है उनके साथ, तो ये सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, या ऑनलाइन सेफ्टी, और किस तरह से पेरेंट्स भी खुद समझें और बच्चों को समझाएं?
4: एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी ऑनलाइन स्पेस में ये है कि आप खुद अपना बिहेवियर मॉडल करें। तो अगर आप ऑनलाइन स्पेस में कम रहेंगे तो फिर ही आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप भी ऑनलाइन कम रहिएगा फर्स्ट। तो अपने आप को मॉडल करिए कि आप अपना समय कितना बिता रही हैं फोन पे, कितना समय पिताजी बिता रहे हैं फोन पे, कितना वो स्क्रोल कर रहे हैं रील्स को, और फिर आप बच्चे को कह सकते हैं कि चलिए आप दोनों, अब उसमें फिर कॉन्वर्सेशन, बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है कि बच्चे के साथ तय किया जाए कि आप फोन पे कितना समय बिताएंगे। देखिए, कुछ तो ऑनलाइन काम आजकल स्कूल से भी आने लग पड़ा है, तो इसीलिए अगर हमें उसको भी डिस्काउंट करना है तो दोनों को अग्री करना पड़ेगा कि आपके स्कूल के काम के लिए इतना समय, और आपकी अपनी एंटरटेनमेंट, आपके फ्रेंड्स को कैच अप या जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए इतना समय, वो आपको बच्चे के साथ तय करना पड़ेगा। यदि आप बच्चे के साथ तय करेंगे तो फिर उसका, उसको बच्चे के साथ ही ट्रैक करिए कि अगर हमने फैसला किया था दोनों ने मिलके कि आधा घंटे का समय हम लोग बिताएंगे, उसमें से एक घंटा मान लीजिए आपको स्कूल के काम के लिए चाहिए, आधे घंटे का टाइम आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए बिता रहे हैं, तो आपने कब फोन उठाया और आपने कब उस फोन को रखा, ये दोनों ट्रैक करेंगे, माता पिता और बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बाउंड्रीज, दूसरा उसको ट्रैक करिए खुद दोनों मिलकर, और तीसरी चीज खुद आप भी समझिए कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन आपको कैसे मिल सकती है। ये जानकारी चाहे आपको स्कूल की प्रिंसिपल से बात करके करनी पड़े या आपको स्कूल की टीचर से बात करके जानकारी लेनी पड़े और पेरेंट्स से जानकारी लेनी पड़े, उनके बच्चे कितना समय बिताते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा अपने आप को इस बारे में जागरूक रखना पड़ेगा कि बच्चे कितना समय मोबाइल फोन पर और इंटरनेट पर, मोबाइल फोन के इंटरनेट पर बिता रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे को क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आप कर सकती हैं, कितना स्क्रीन टाइम, आजकल तो एप्स आपको बता देते हैं कितना स्क्रीन टाइम आपका बच्चा यूज कर रहा है, तो वो उन सब डायमेंशंस को खुद को पहले जानकार पढ़ना पड़ेगा, तो वो जानकारी आपको टीचर से, आपको प्रिंसिपल से, आपको अपने फ्रेंड से मिल सकती है। तो अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्शन के बारे में जागरूक करिए, फिर अपने बच्चे के साथ तय करिए कितना समय के वो बताएंगे। और जो अभी डॉक्टर अली कह रहे थे, बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे की ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर देखते रहिए कि उनको उस ऑनलाइन स्पेस से ज्यादा मेंटल प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, वो आइसोलेटेड तो नहीं हो रहे हैं। यू हैव टू वॉच द चाइल्ड्स बिहेवियर, आपको खुद देखना पड़ेगा कि बच्चे की आई कांटेक्ट की बहुत अच्छी बात करी डॉक्टर अली ने, तो क्या आपका बच्चा आपसे बात करने में, ऑनलाइन स्पेस के बारे में बात करने में, क्या वो खुलकर बात कर पा रहे हैं कि वो बच्चे कुछ आपको लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं, तो ये आपको ओपननेस रखनी पड़ेगी, फिर ही आप खुद दोनों मिलकर एक ऑनलाइन सेफ स्पेस तय कर सकते हैं।
1: जी, इस बीच हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ बात करना चाहते हैं, फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
5: हेलो, नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार, कैसी हैं आप?
5: मैं अभिषेक बेदी बोल रही हूँ।
1: जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या कहेंगे?
5: नमस्कार डॉक्टर शालिनी जी, आजकल कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जैसे मेरे पास ही स्कूल है, मेरी दीवार के साथ, वहाँ टीचर ये ग्रेज करती हैं कि अगर बच्चे का रॉन्ग है उस पर अगर काटा लगा दिया तो पेरेंट्स शिकायत लेके आ जाते हैं। बच्चों को थोड़ी हमें ना सुनने की आदत होनी चाहिए, हम हर बात उनकी मान लेते हैं तभी हम प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं।
1: जी, ये एक बात इनकी सोच है और कुछ हद तक सही भी है, ऐसा हमने भी देखा है। क्या कहेंगे डॉक्टर अली?
5: हेलो, नहीं मैं बीच में सॉरी बात करती हूँ, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं पेरेंट्स, जिससे कि बच्चे जो हैं वो इमोशनली बिल्कुल जीरो हो गए।
3: ये जो मुद्दा है, बहुत से पेरेंट्स अभी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इसका एक तरीका ये है कि आप बच्चे को जिस भी स्पोर्ट्स में हो जरूर ये कोशिश करें कि अपना बच्चा स्पोर्ट्स में रहे। स्पोर्ट्स में बच्चा रहेगा तो कभी जीतेगा कभी हारेगा, और इससे बच्चे को हार और उसके पेरेंट्स को हार में भी किस तरह से खुश रहना चाहिए ये स्पोर्ट्स सिखाता है। तो जो ओवर प्रोटेक्शन का जो मसला आ रहा है, इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है, घर में बैठे हैं तो आप अंताक्षरी खेलिए, कुछ ना कुछ इस तरह से गेम्स करते रहिए जिसमें बच्चा हारना और जीतना, पेरेंट्स हारना और जीतना दोनों को फेस करे, तो आपस में फिर सीख जाते हैं कि किस तरह से भाई गलती हो तो गलती को गलती मानो, तो उससे फिर ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी,
5: सबसे बड़ी टीचर है, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ साल मदर जो जॉब भी करती है, कुछ छुट्टी लेके बच्चों साथ इमोशनली जुड़े, उनको बचपन अपना सुनाए, उनकी बातें सुने, एक दूसरे के दिल में घुसे। जैसे
1: बिल्कुल यही बात अभी अलका जी कह रही थी कि कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और जब कनेक्ट होगा एक दूसरे की बात समझेंगे तभी बात से बात निकलेगी, दूर तलक जाएगी, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद वेदी जी हमसे कनेक्ट करने के लिए। एक और हमारे श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो
6: हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, बताइए।
6: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार,
6: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: जी बताए, क्या पूछना है?
6: मुझे ये पूछना है कि जैसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास और उनको उनका कैसे हो, आजकल के बच्चे ये देखे जाते हैं कि वो कमजोर टाइप के हैं, जैसे हमारे बराबर वो उतना काम या कुछ कर नहीं सकते, और जैसे उनको कुछ चीज बताओ तो ऐसे मायूस से हो जाते हैं, तो ये बच्चों का विकास और शारीरिक विकास कैसे होगा?
3: बच्चों को अपने वार्तालाप के सेंटर में रखिए। मैं आपको एक बताता हूँ, बराक ओबामा को जब नोबेल प्राइज मिला था तो उन्होंने फोन करके अपनी बच्ची को जो 11 साल की है और दूसरी बच्ची 8 साल की, उन्होंने कहा मुझे देखो वो नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो बच्ची ने कहा अरे आज आप भूल गए, आज बो का बर्थडे है, बो है उनका पोर्चुगीज कुत्ता, घर का फैमिली डॉग। दूसरी बेटी ने कहा अरे तीन दिन का वीकेंड की छुट्टी है, आप कैसे भूल गए हमारा? तो मतलब जो नोबेल प्राइज है आप, हम जान रहे हैं उसकी क्या अहमियत है। बच्चे को अगर सेंटर, बच्चे के लिए उसकी समस्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर माता पिता बच्चे को सबसे ज्यादा सेंटर पे रखे, भाई वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, वो उसका मानसिक मतलब स्कोलेस्टिक स्कूल में परफॉर्मेंस, घर में परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से रह रहा है, अगर वो टच और कनेक्ट आप शुरू से रखेंगे तो ये जो समस्या आ रही है कि बहुत बच्चा मेरा कमजोर हो गया मैं, तो ये बातें नहीं आएंगी, बहुत हद तक आप इसको खत्म कर सकते हैं।
1: जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं। ये मैसेज हमें लिखा है नानी तरिंग जी ने अरुणाचल प्रदेश से, और उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी अकेले पेरेंट हैं, बचपन से कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं दी, बट लास्ट वीक पिताजी और मेरा झगड़ा हो गया, नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये पूछ रहे हैं।
3: देखिए आप पिताजी, आपने पहले ही बताया कि पिताजी ने मुझे जो है बचपन से ये किया है और आपकी अच्छी केमिस्ट्री है, तो आप वार्तालाप कीजिए। जैसे अलका जी ने बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द कम्युनिकेशन, डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है, अभी तो आपकी शुरुआत डिसएग्रीमेंट की, आगे जाके और बहुत सी बातें होंगी जिसमें डिसएग्रीमेंट होगा, पर ये डिसएग्रीमेंट का हल जो है आपस में बात करने से ही सुलझा जा सकता है।
4: और इसमें पहले आपका तो सवाल ही नहीं उठता ना, आप फोन उठाइए, सीधा जाइए और पिताजी से बात करिए और अपने डिफरेंसेस को खत्म करिए। जरूर जब आप एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगी तो कोई ना कोई हल निकल आएगा।
1: जी अगर, और मुझे लगता है कि आप अभी देर ना करिए, जैसा अलका मैम कह रही हैं, जैसे अली सर कह रहे हैं, आप फौरन कॉल लगाइए अपने पिताजी को, उनसे बात कीजिए और जो भी आपकी मिस कम्युनिकेशन या जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर करिए, और हमें मैसेज करके या मेल करके हमें जरूर बताइए कि आप कितने खुश हैं अब, क्योंकि आपको बहुत खुशी मिलेगी जब आप अपने पिताजी से बात कर पाएंगे और जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर कर पाएंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर, और अपने फीडबैक्स भी आप सभी हमें उस पर भेज सकते हैं। एक और हमारे साथ हमारे कॉलर हैं। हेलो
7: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
7: नीति गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी जी स्वागत है, बताइए।
7: मेरा कहना है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक शब्द आता है डिमेंशिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं मति भ्रंश, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो मेरा पूछना है कि वास्तव में इसमें क्या होता है, मतलब ब्रेन में कुछ कमी आ जाती है, और बच्चों में भी ये बीमारी होती है क्या, कृपया विस्तार से बताइए।
1: जी मैं पूछती हूँ, हमारे एक्सपर्ट सुन रहे हैं आपकी बात को।
3: डिमेंशिया मतलब मेमोरी में स्लोली स्लोली कमी हो जाना, आमतौर पे ये बच्चों में नहीं होती है, आमतौर पे ये होती है 60-70 साल के बाद, स्लोली स्लोली जब एजिंग का शुरू होता है तब लोग अपनी अपनी मेमोरी खोलने लगते हैं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक जो पुरानी मेमोरी है, जो पक्की मेमोरी होती है, बचपन की मेमोरी, वो इंसान बहुत जल्दी खोता नहीं है, बहुत जल्दी क्या होता है जो रिसेंट पास की जो मेमोरीज है वो चली जाती है। पर अगर बच्चे में अगर इस तरह की कोई बात है कि वो भूल रहा है तो उसको जो है स्वास्थ्य कर्मी को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज के साथ ये होता है, पर उसके अंदर जो है घर वालों को समझ के उसके साथ ये करना जरूरी है। पर अगर बच्चे में अगर किस तरह से अडल्ट है, यंग अडल्ट है, एडोलेसेंट है, या बच्चे में अगर डिमेंशिया का कोई प्रॉब्लम है तो उसको दिखाना चाहिए।
1: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। और हमारे पास दो मैसेज मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो लगभग एक सी बात है, इसमें मैं दोनों को एक साथ लेना चाहूंगी। इन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंट फादर, अगर सिंगल मदर है उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी में। और दूसरा प्रश्न किया है अशोक जी ने दिल्ली से कि मेरा 8 साल का बच्चा है और वो मेरे साथ रहता है, वाइफ मेरी वर्किंग है, 600 किलोमीटर दूर रहती है, बच्चे के इमोशंस को कैसे पहचाने, क्या करें कि उनको मदर की एब्सेंस फील नहीं हो। तो कहीं भी जहां पर एक पेरेंट मिसिंग है तो कैसे डील किया जाए।
3: एक पेरेंट मिसिंग है तो कहीं ना कहीं तो इशू तो है, क्योंकि दोनों पेरेंट का बच्चे का बड़ा होना और एक पेरेंट में बच्चा बड़ा होना, ये दोनों में काफी अंतर होगा। आप एज अ सिंगल पेरेंट यही है कि हम बच्चे को अगर माता है तो माता पिता दोनों की तरह से प्यार दे, क्योंकि आप और अब आप काम कर भी कर रहे हो, जैसे बच्चे को आप नींद में से उठने से देख रहे, लास्ट में सोए तक खाना खिलाने का सारा कुछ काम आप कर रहे हो, तो आप बड़ा काम तो कर रहे हो। या तो आपका पेरेंट एब्सेंट है, या मतलब या तो डाइवोर्स केस है, या फिर दूर है किसी काम की वजह से, तो आप वो अपना प्यार बच्चे को तो दे रहे हो। इसमें यह है कि जो इमोशनल कनेक्ट है, बहुत बार हम देखते हैं कि भाई सिंगल पेरेंट है, आप भी अपने काम में व्यस्त है, तो जो जरूरी है वो जरूरत वाला काम कर दिए, फिर उसके बाद अपने काम में लग गए। थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज डिफिकल्ट, बट इफ द सर्कमस्टेंसेस अगर ये मांगता है तो आपको माता पिता दोनों बनना पड़ेगा अगर सिंगल भी है तो।
1: जैसा अभी उन्होंने भी लिखा था अरुणाचल प्रदेश से उन्होंने कि उनके फादर ने भी उनको बचपन से अकेले पाला और कभी उनकी कमी महसूस होने नहीं दी मदर की। तो ऐसा नहीं है, पूरी तरह से एक डेवलप्ड पर्सनैलिटी हो सकती है। अनिल कालरा जी, डॉक्टर अनिल कालरा हमें गुरुग्राम से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और ये हमें लिखकर भेजा है सरोज मल्होत्रा जी ने साकेत मेरठ से, नमस्ते डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे दूसरे बच्चे से कंपैरिजन बहुत करते हैं और एजुकेशन का प्रेशर बहुत है, मॉरल वैल्यूज बहुत कम है, ये सीखने की बहुत जरूरत है, किसी के पास फुर्सत नहीं है इसको सिखाने की।
3: ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंपैरिजन। सबसे पहले हमको बच्चों में और आपस में भी बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन हमको एकदम खत्म कर देना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। जो भी बच्चा कर रहा है, कितना एग्जाम में कितना मार्क्स ला रहा है, नहीं ला रहा है, वो उस बच्चे की आप कितनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उस पर काम करें, ना कि हम किसी को भी कंपेयर करें। तो जो कंपेरिजन की टेंडेंसी है हमारी टीचर्स को, हमारे घर में, पेरेंट्स को और दोस्तों में भी, इसको पहले खत्म करना चाहिए। अननेसेसरी, दिस इज अनहेल्दी कॉम्पिटिशन।
4: और इसके लिए आई थिंक बहुत जरूरी है कि जो पेरेंट है ना वो खुद कंपैरिजन करना बंद करें। सबसे पहले आप खुद कंपेयर करना बंद करिए और फुर्सत की तो बात करिए ही मत, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप बच्चा दुनिया में लाए हैं ना और आपके घर में बच्चा है तो आपको फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। उसकी सिर्फ फिजिकल केयर और फिजिकल नीड्स को नहीं लुक आफ्टर करना है, उसकी इमोशनल नीड्स को, उसकी सोशल नीड्स को भी आपको लुक आफ्टर करना है। इसीलिए अगर आपने पेरेंट बनने का जिम्मेवारी ली है तो आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। आई मीन दैट्स अ गिवन। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि बिफोर यू बिकम अ पेरेंट बी रेडी फॉर पेरेंटहुड, बिकॉज पेरेंटहुड इज अ लॉन्ग जर्नी और उसके लिए उसका कोई एस्केप रूट नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बच्चे को लाए हैं तो उसको समय देना होगा।
1: जी, और आजकल हम यही देखते हैं कि ये जो बात हो रही है फुर्सत नहीं है, ये तो एक अलग बातचीत का मुद्दा है, लेकिन लेट मैरिजेस हो रही हैं, मदर्स और फादर दोनों लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उनके, तो जब लेट मैरिजेस हो रही हैं, बच्चे प्लान कई बार नहीं कर रहे हैं या बहुत लेट कर रहे हैं, तो क्या वो भी इम्पैक्ट डालता है?
4: एब्सोल्युटली डालता है। और उसके लिए अगेन, जब आपने लेट मैरिज करी, आप अपने अपने करियर पाथ में बहुत एंट्रेंच हो गए हैं दोनों माता पिता, पर अगर आपके लाइफ में एक बच्चा है, जैसे डॉक्टर अली भी कह रहे थे, तो बच्चे को नानी, बच्चे को दादी नानी के ऊपर ना छोड़कर अपना समय, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए भी आपको बच्चे के साथ समय, सबसे जरूरी बच्चे के साथ समय, बच्चे को सुनना, बच्चे के साथ कनेक्ट बनाना, उसको कडल करना, उसको इमोशनल, उसके साथ चीजें करना, कहानी साथ बनाना, सैर पे साथ जाना, उसके साथ खेलना, तो एक बॉन्डिंग आपको बचपन से ही अपने बच्चे के साथ बनानी पड़ेगी, फिर अडल्टहुड में वही बॉन्डिंग आसान होती चली जाती है।
1: अच्छा, बहुत एक सेंसिटिव इशू मैं अभी लाना चाह रही हूँ जो हम अभी तक बात नहीं कर पाए हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं बच्चों को, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, और उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको डील करना थोड़ा सा टिकलिश होता है पेरेंट्स के लिए, तो कैसे उनको अलग से डील किया जाए, ये भी एक मुद्दा है समझने का।
3: हाँ, अगर आपका बच्चा फिजिकली स्पेशली एबल्ड है या मेंटली स्पेशली एबल्ड है, तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उसको सही डॉक्टर के पास दिखा के अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके एक्सेप्ट करें। बहुत से पेरेंट बहुत सा समय आदत डाल देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, या हुआ है तो क्यों हुआ है, या हमको श्राप हो गया है, या ये, तो उसको एक्सेप्ट करें कि ये है। कोई भी बच्चा हो या किसी में भी कोई भी फिजिकल एक स्पेशल ये है, तो कोई ना कोई उसका दूसरा बात ऐसा होता है कि वो उसमें चैंपियन बन सकता है, तो उस बात को हम देखें, उसको मैं बच्चे को भी ये बताया कि भाई तुम्हारा एक चीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे लोकोमोटर प्रॉब्लम है, हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो दूसरी कोई बात हो सकती है, उसको हम निखारे बाहर और बच्चे को उसके अंदर एक्सेल करने के लिए उसकी मदद करें, उसका साथ दें। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स समझते हैं मेरे ही बच्चे को क्यों हुआ, तो पेरेंट्स के एसोसिएशन इंडिया में बहुत जगह है, आपके गांव में, आपके शहर में होंगे। पेरेंट्स एसोसिएशन एक नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में परिवार के नाम से चलता है, उस एसोसिएशन से आप जुड़िए। उसमें ऐसे ही बच्चों के बहुत से पेरेंट्स एक साथ आते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, गाइडेंस बताई जाती है, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा सरकार से ये बताया जाता है। तो जब आप देखते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में, बहुत से लोग हैं, तो एक साथ मिलकर उस बच्चे को क्या उसके अंदर निखारा जा सकता है, उसको निखार के उसको चैंपियन बनाया जा सकता है।
1: जी, तो प्रयास किए जा सकते हैं। और आपने बताया कुछ जो ये साइट्स हैं, क्या हैं जिनके बारे में आपने बताया कि उनसे जुड़ा जा सकता है?
3: हाँ, परिवार करके आप डालोगे एनजीओ फॉर पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो ये साइट पे जाके आप जुड़ सकते हैं इसके साथ।
1: अच्छा, और एक बहुत इम्पोर्टेंट और मुद्दा होता है कि कम्युनिकेशन तो कई बार होता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन जो है उसमें अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स खुलकर अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है जब एक ग्रोइंग बच्चा है घर में, एडोलेसेंट हो, तो कितना इम्पोर्टेंट है। मैं दोनों का व्यूज जानना चाहूंगी, अलका जी आपका भी और डॉक्टर अली आपका भी इस बारे में।
4: एडोलेसेंस में एक चीज जो हमें ऑब्वियसली दिखने लग पड़ती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो लड़कियों में अलग किस्म के चेंजेस होते हैं और लड़कों में अलग किस्म के चेंजेस होते हैं। इसके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। आपको सेक्स एजुकेशन तो आ ही जाएगी, पर सबसे पहले तो ये जो हमारे चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। तो हम जैसे समाज में लड़के और लड़कियां और इस बदलाव के बारे में बात से शुरू कर सकते हैं कि अभी आपको लग रहा होगा लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, उनको पीरियड्स आने शुरू हो रहे हैं, इससे बातचीत आप शुरू कर सकते हैं। एंड देन इवेंचुअली आप सेक्स एजुकेशन क्या होगा, तुम्हें लगता होगा लड़कों की रुचि तुम्हारे में बढ़ रही है, या लड़कों के साथ भी बात की जाती है। मेरे हस्बैंड ने खुद मेरे बेटे के साथ ये सबसे पहले उनका जो पहला लंच हुआ था इकट्ठा, ऑफकोर्स हैविंग बीन टुगेदर, बट एक मैन टू मैन लंच उनका इकट्ठा हुआ था, वही बात थी कि तुम्हें अब लग रहा होगा कि तुम अपनी क्लास की लड़कियों के साथ आइडेंटिफाई करो, किसी के साथ ज्यादा घूमना चाहते हो। ये इनके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। और ये बातचीत जब हम करने लगेंगे एज पेरेंट्स, तो वो फिर एक बॉन्डिंग बनती है, वो एकदम से नहीं हो सकती। अगेन, बचपन से अगर आप अपने बच्चे के साथ खुलकर बात करना शुरू करेंगे तो 10, 11, 12 साल की उम्र पे ये बातचीत बहुत आसानी से हो सकती है। पर हमने बचपन से ही कभी बात ही नहीं करी, कहानियां नहीं सुनाई, कहानियों से जुड़ते हुए क्यों क्यों के सवालों के जवाब नहीं दिए, सच जवाब, तब तक फिर आप बाद में एकदम से ये बात नहीं उठा।
1: और जब पेरेंट्स से ओपन कम्युनिकेशन होगा तो फिर उन्हें किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सोर्स कई बार गलत भी होते हैं, गलत डायरेक्शन में भी उनको भेज सकते हैं। आप क्या
3: कहेंगे? तो सेक्स एजुकेशन के बदले अब हम लोग काम बात शुरू करें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे इंडिया से कहना चाहता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। इसमें 8 अलग अलग बिंदु है। सबसे पहले हम बात करें रिलेशनशिप्स की, हम बात करें वैल्यूज, कल्चर, हम कैसे बड़े हो रहे हैं, जेंडर को हम अंडरस्टैंड करें, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, वायलेंस

0: और कैसे स्टे सेफ कर सकते हैं इसकी बात करें, हेल्थ हेल्दी वेलबींग की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें कि लड़के में लड़की में क्या है, उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर और लास्ट में आता है सेक्स एजुकेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन सब चीज़ों की बातें अगर हम बच्चा जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है स्लोली स्लोली अगर हम इन बातों पर करेंगे तो ये जो दिक्कतें आ रही है, डायरेक्टली सेक्स एजुकेशन की बात करना इंडिया के कल्चर में बहुत डिफिकल्ट है पेरेंट्स के लिए। हमने आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में टीचर को भी इसकी ट्रेनिंग दी है, बट अभी भी टीचर ये बोलते हैं कि भाई कैसे पढ़ाएं यंग बच्चों को, बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इसके माध्यम से हम शुरू करते हैं, क्यों क्यों वाला जो सवाल जवाब होता है, तो आप यू कैन रीच टू दैट पॉइंट व्हेन पेरेंट्स एंड बच्चा आपस में बात कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 पॉइंट्स जो आपने बताए हैं ये सबको समझना बहुत जरूरी है। और चलते चलते बस मैं चाहूंगी थोड़ा नटशेल में आप बताएं क्या आज का जो विषय है उस पर आप हमारे श्रोताओं को बोलना चाहेंगे चलने से पहले।
2: आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्ड कब बनाना पड़ेगा, और वो बॉन्ड शुरू होगा बात करने से, लिसन करने से, उन्हें अंडरस्टैंड करके रिस्पेक्ट से उनको सपोर्ट करने में। तो बात करिए, सुनिए उनकी बात, समझिए उनकी बात, और फिर रिस्पेक्टफुली मिलकर सॉल्यूशन ढूंढिए। जरूर आपके लिए ये जर्नी बहुत ही सिंपल और आसान रहेगी।
1: डॉक्टर अली,
0: सारे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट देखिए, मानसिक फिजिकल स्पिरिचुअल सोशल किस तरह से बच्चा कर रहा है, और शुरू से अगर बच्चे से जैसे मैडम ने कहा कि बॉन्डिंग अगर होती है तो ये सब के पता करना बच्चा हमारा किस स्थिति से गुजर रहा है, और स्पेसिफिकली फिजिकल तो दिक्कत आता है, मेंटल दिक्कत नहीं आता, बच्चे से वार्तालाप करने से कम्युनिकेशन करने से ये चीज़ों को हम लोग हल कर सकते हैं।
1: जी, तो अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद देते हुए कि जो इस कार्यक्रम से जुड़े, हमें मैसेज किया, हमें कॉल किया। आप अगर हमें कुछ और लिखना चाहते हैं, आप हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, या किसी कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। और अब धन्यवाद दूंगी अपने आज के रेडियो डॉक्टर्स का, डॉक्टर सैयद हुबे अली हमारे साथ रहे। आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में, और अलका मल्होत्रा जी आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों आए इस विशेष अंक में, पेरेंट्स पर हमने ढेर सारी बातें की, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: और स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: मेरी तेरी बोली
1: आए हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी हैं। दोनों देशों ने सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के उप हिमालय और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और खेलों में पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। और फीफा विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वो भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहां हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करें, दीवारें साफ करें, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करें तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं, वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो। कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चींटियां, मच्छर आदि पनपते हैं। और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया

सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है। इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और ये सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। साफ सफाई इंसान की फितरत होती है। वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझ और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है, और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें, और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई, हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं, और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर, देश, सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा, और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

स्वागत है आप सभी का। आप हैं अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। डिटॉक्स, जी हाँ, प्रोग्राम है अल्फाजिन डिटॉक्स, लेट्स डिटॉक्स। और आज की सीरीज लेट्स डिटॉक्स में हम क्या डिटॉक्स करने वाले हैं भाई? हमने आशाना में भी बात की थी, डिटॉक्स कीजिए उन लोगों को जो आपकी नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आपके आसपास के ऑरा को खराब कर रहे हैं। और अभी क्या और डिटॉक्स कर सकते हैं भाई? हर उस चीज को डिटॉक्स करना है जो हमें परेशान करती है, क्योंकि खुश रहने का जो परमात्मा ने हमें गुण दिया है उसको हमें भूलना नहीं है और हमेशा खुश रहना है। और हार तो कभी माननी नहीं है ना दोस्त, किसी भी बात पे। कभी कभी हर बात से मुझे फर्क पड़ता है, ऐसा लगता है कि कभी कभी हर बात से मुझे फर्क पड़ता है और कभी कोई बात मुझ पर असर ही नहीं डालती। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। तो लेट्स डिटॉक्स टू ऑल द टॉक्सिसिटी एंड द पीपल हु आर मेकिंग यू अनकंफर्टेबल। एंड वेलकमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए है बहुत ही खूबसूरत सा गीत, हो सादा एक दीवाना था फिल्म से, माय वेरी ओन फेवरेट। एंजॉय कीजिए इसको, वापस आते हैं आप सभी के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

वेल वेल वेल, आप सभी के साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन अपनी दोस्त आरती मल्होत्रा के साथ। थैंक यू सौरभ फॉर वेलकमिंग मी एंड थैंक यू। और भाई, मैं अपने सभी लिसनर्स को और दोस्तों को ये कहना चाहूँगी कि ओवरथिंकिंग ना एक शब्द होता है कि बहुत ज़्यादा आप सोचने लगते हैं चीज़ों को। और आपने देखा होगा आपके आसपास के लोग अपने में ही गुम रहते हैं, उनसे आप कोई भी बात कीजिए उनको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे, वो अपने आप में ही खोए रहते हैं। असल में उनका दिमाग उस टाइम पर काम कर रहा होता है। यहाँ तक कि ये हालत हो जाती है कि अगर हम मेडिटेशन के लिए भी जाएँ और परमात्मा में लीन होने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें, तो भी हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ओवरथिंकिंग। और कुछ लोग इतना सोचते हैं कि सोच में ऐसे खो जाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर अपने ही दिमाग से होती है और ये उनको पता नहीं चलता, अपने से ही खुद से ही लड़ते रहते हैं। तो ओवरथिंकिंग को डिटॉक्स करना है, अपनी लाइफ से क्या डिटॉक्स करना है, लेट्स डिटॉक्स में आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग पर। और उसे डिटॉक्स करेंगे किस तरह से, बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो म्यूज़िक थेरेपी है मेरे पास जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक और खूबसूरत सा गीत। सुभान अल्लाह आप सभी के लिए।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

इंसान की आदत भी अजीब है ना दोस्त, कि नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और अगर कुछ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। कदर कीजिए, परमात्मा ने इतनी खूबसूरत आपको जिंदगी दी है। कहते हैं 44 लाख कितनी योनियां, मुझे तो शायद ठीक से गिनती भी नहीं पता कितनी योनियों को पार करके हम इंसान की योनि में आते हैं, और उसके बाद हम कदर नहीं करते अपनी जिंदगी की। आप सही हैं, आपका रंग रूप अच्छा है, आपके हाथ पांव अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को भी देखिए ना जिन्हें कुछ मिला नहीं जिंदगी में, जो अपाहिज हैं, बेचारे हैं, जो आपके जैसे स्कूलों में नहीं पढ़े, इतना काम किया। तो ये जो सब्र होता है ना, ये सब्र जरूर रखना चाहिए। अगर ये सब्र आप रख लेंगे तो ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमारे जो बड़े हैं हमसे हमेशा कहा करते थे कि अपने से नीचे देखो, अपने से नीचे देखने पर ज्यादा संतुष्टि मिलती है कि हाँ मेरे पास वो सब कुछ है। और फिर आपके अंदर थैंकफुल नेचर आता है। रोज थैंक्स करो, सबको थैंक्स करो, परमात्मा का थैंक्स करो, अपनी फैमिली का थैंक्स करो, अपने आसपास के लोगों का थैंक्स करो, उन लोगों का थैंक्स करो जो आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे तो डेफिनेटली फर्क आ जाएगा और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। हमने खुद को थोड़ी ख़राब करना है ना ओवर थिंकिंग करके, हमें तो खुद के लिए जीना है और बहुत अच्छे से। एंड वेल, अभी एक और सॉन्ग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शान एंड श्रेया घोषाल की वॉइस में। डू यू नो? ओ रियली, डू यू?

वेल वेल वेल, समय हो चला है अब मेरे चलने का. ठीक है, इसके बाद और कौन कौन से प्रोग्राम सुनेंगे आप वो मैं बता देती हूँ. आप सुनेंगे आशुतोष भारद्वाज के साथ सैटेलाइट्स, और चंद्रानी मुखर्जी लेकर आएंगी मैसेज मसाला मिक्स आप सभी के लिए. तो फिलहाल अपनी आरती को दीजिए इजाजत और बनी रही है आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ के साथ.

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 ने अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसे स्काईरूट एयरोस्पेस ने विकसित किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत की अंतरिक्ष यात्रा की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी की एक राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि पेंशन संबंधी विवादों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर हो ताकि पेंशन भोगियों को अदालत न जाना पड़े। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें कुमाऊं और गढ़वाल के बीच रेल संपर्क बेहतर होगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मोलदेवा, उत्तरी मेडेसडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा के लिए रवाना होंगी। रूस पर यूक्रेन के ने रात भर हुए ड्रोन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और 51 लोग घायल हुए। अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी हैं। दोनों देशों ने सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के उप हिमालय और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और खेलों में पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। और फीफा विश्व कप के आज तीसरे स्थान के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला। कल फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी.
1: एब्सोल्युटली आपकी वाणी आकाशवाणी. आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स बिल्कुल. और वक्त हो चुका है 7:05 और फिलहाल आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर. और सिटी की बहुत सारी अपडेट यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं. बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं. मौसम के बारे में बताएंगे. क्या कुछ खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताएंगे. स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6. आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है.

और हमारा भी चैन बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि हम बेचैन हो जाते हैं आपके बिना। लेकिन बिल्कुल एक ऐसी उपलब्धि, अब उसके बारे में बात करेंगे, जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया और भारत ने अंतरिक्ष में बिल्कुल अपना एक नया इतिहास रच दिया है। और देश की एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयर स्पेस ने अपने विक्रम 1 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिट रॉकेट है, और जिसने सफलतापूर्वक कई पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया। और ये उपलब्धि भारत ने एक निजी स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है। और बिल्कुल ऐसी ऐतिहासिक सफलता के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उनकी टीम को बधाई दी और बिल्कुल उनको मिलने के लिए भी बुलाया है, और उन्होंने बिल्कुल इस लॉन्च को लाइव देखा। और इस उपलब्धि के लिए देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए उन्होंने सपने साकार करने के लिए बधाइयाँ दी हैं। और सबसे खास बात यह है कि स्काई रूट की शुरुआत कुछ ऐसे इंजीनियरों ने की जिन्होंने कभी इसरो में काम किया, और आज वही युवा उद्यमी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को एक नया इतिहास लिख रहे हैं वहां पर। और ये बताता है कि जब प्रतिभा और मेहनत और अवसर एक साथ आते हैं तो आसमान की सीमा नहीं रह जाती। और विक्रम 1 मिशन सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती स्टार्टअप संस्कृति, आत्मनिर्भर भारत और स्पेस टेक्नोलॉजी की ताकत का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में निजी कंपनियों की भी उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष सेवाओं में बड़ी भूमिका निभानी नजर आ सकती है आपको। तो बिल्कुल आप भी अपने इरादे मजबूत रखिए और जमीन से उठकर अंतरिक्ष तक पहुंचना अब बिल्कुल मुमकिन हो गया, बहुत आसान हो गया। बिल्कुल जब हम सपने देखते हैं और उनको हम साकार कर लेते हैं बिल्कुल कड़ी मेहनत के बाद, तो ऐसे मुकाम हम हासिल करते हैं और उनसे हम बिल्कुल गर्व गौरवान्वित महसूस करते हैं। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ सिटी लाइट्स आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

बिल्कुल, ये जज्बा हमेशा हमारे साथ होना चाहिए कि हम जीत सकते हैं और बिल्कुल कभी हार नहीं माननी हमें। और बिल्कुल आप सभी दिल्ली वाले ये सोच रहे होंगे कि मौसम बहुत उलट फिर कर रहा है अपने, बिल्कुल इस मूड को कैसे पहचाने, है ना। और जब भी आप घर से सुबह बाहर निकलते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं, क्या कुछ होगा, मतलब समझ नहीं आ रहा। लेकिन मौसम विभाग IMD के मुताबिक आज बिल्कुल मौसम में कुछ बदलाव महसूस आपको हो सकते हैं कुछ वक्त के बाद और कल से भी, और कई इलाकों में कल से शायद हल्की फुल्की बरसात भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उमस से आपको राहत अभी मिलनी मुमकिन नहीं है और इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। और नमी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है अभी कुछ दिनों से, और बारिश के बाद लोगों को बिल्कुल इससे थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिल्कुल 20 तारीख के आसपास से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं और तापमान में थोड़ी सी गिरावट महसूस हो सकती है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लगभग 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक रहने की संभावना है। और बिल्कुल हवा भी हमारी अभी फिलहाल AQI जो इंडेक्स है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद कोशिश यही है, शायद उम्मीद ये की जा रही है कि उसके बाद जब बरसात होगी तो इसमें थोड़ी सी आपको बेहतरी महसूस हो। और बिल्कुल आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और बिल्कुल मास्क लगा के रखिएगा अगर आप थोड़ा एलर्जिक हैं तो। और वीकेंड पर कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बारिश की सब संभावना है, तो इसलिए अपना छाता अपने साथ ही रखिएगा और उसको ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना आपको, है ना, क्योंकि मौसम कब करवट बदल दे ये कहा नहीं जा सकता। और बिल्कुल बारिश हो जाए और सड़क पर सावधानी से जब आपको जो भी है साइकिल है या फिर गाड़ी है या फिर टू व्हीलर है फोर व्हीलर, सभी को बहुत ध्यान से चलाना है आपको, और जल भराव वाले रास्तों पर बहुत वहां पर जाने से बचिए और ऐसे रास्तों को चुनिए जहां पर आप सेफली कम्यूट कर सकते हैं। फिलहाल आपके साथ हम हैं यहां पर, आपको बहुत ही अमेजिंग गाने यहां पर सुना रहे हैं और स्टे ट्यून्ड हमारे साथ सुनते रहिए। फिलहाल सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। वक्त हो चुका है 7:05 और 58 सेकेंड्स। फिलहाल सुनते रहिए हमारे साथ

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक एवरीवन, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार को आप सैटेलाइट सुन रहे हैं हमारे साथ और मैं हूं आशुतोष आपके साथ। और फिलहाल बिल्कुल भारत ने हरित परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बिल्कुल बढ़ा चुके हैं हम। और जब कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई बिल्कुल, तो इस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिया। और ये ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। और सबसे खास बात यह है कि इसे 100% स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है और बिल्कुल इसका डिज़ाइन से लेकर तकनीक तक सब कुछ भारतीय इंजीनियरों की मेहनत का परिणाम है। और आज जब हम बात कर रहे हैं इसकी खूबियों की, तो इस ट्रेन में 10 कोच हैं और करीब 2600 यात्रियों को एक साथ ये सफ़र इसमें कर सकते हैं इस ट्रेन में। और इसकी अधिकतम जो रफ्तार है मैक्सिमम स्पीड वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और लेकिन बिल्कुल ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है बल्कि भारत के भविष्य की झलक भी है। और यात्रियों के आराम का भी पूरा ध्यान इस ट्रेन में रखा गया है। अगर ट्रेन का इंटीरियर आधुनिक है, सीटें आरामदायक हैं और व्हील चेयर से आने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था इसमें है। बहुत ही स्पेशल ट्रेन है ये। और सुरक्षा के लिए धुआं और आग का पता लगाने वाले स्टार्टअप सेंसर लगाए गए हैं। और ट्रेन के इंजन की आवाज़ भी पारंपरिक जो ट्रेन की तुलना में काफ़ी कम है और जिससे इसका सफ़र है ना और भी शांत और आरामदायक बन जाता है। बिल्कुल जैसे हम आपके साथ जुड़े जाते हैं ना, इतने सुकून के साथ आप हमारे साथ सुनते हैं, ट्रैक सुनते हैं, इतने अच्छे से लेटेस्ट ट्रैक्स हम आपके लिए प्ले करते हैं। और इस ट्रेन की एक और ख़ास बात यह है कि जब ये हाइड्रोजन ईंधन से संचालित होती है और हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ इंजन माना जाता है। और बिल्कुल, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचता है। और यही वजह है कि दुनिया के कई विकसित देश अब इस तकनीक की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अब भारत भी इस दौड़ में मजबूती से शामिल हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ट्रेन को रवाना किया गया तो वहाँ मौजूद स्कूली बच्चों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला था और सभी इस नई तकनीक को करीब से देखना चाहते थे और इसका हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल उत्साहित थे। बिल्कुल आप भी हमारे साथ यूँ ही इस सफ़र पर लगातार चलते चले जाइए क्योंकि सफ़र बहुत ही सुहाना है। और ये जो पीछे आवाज़ आ रही है आपको ट्रेन की, इस सफ़र पे हम आपको लिए चलते हैं। फिलहाल इस मौसम को एंजॉय करते चला जाइए और इस सफ़र को जो हमारे साथ हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं सिटी लाइट्स में। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: बिल्कुल, आज है 18 जुलाई और वक्त हो चुका है 5:35 और ये है बिल्कुल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी लाइट्स में। और बिल्कुल, जब भी आप अपने पर्स की तरफ देखते हैं तो क्या नजर आता है, बिल्कुल हरे भरे नोट है। बिल्कुल, आप भी सोच रहे होंगे क्या बात है, आज तो मतलब नोटों की बातें हो रही हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने नोट, जब कई बार आपके कपड़े धुल जाते हैं ना, तो क्या होता है कि नोट भी धुल जाते हैं साथ में है? उनका बिल्कुल ऐसा हाल हो जाता है कि आप बिल्कुल सोच सोच के भी पछताने लग जाते हैं। कभी वो मुड़ जाते हैं, कहीं फट जाते हैं, और कुछ ही महीनों में इतने पुराने लगने लग जाते हैं कि बिल्कुल कई बार तो दुकानदार उनको लेने से मना कर देते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में अब बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल हमारे इंडिया में प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर नोट आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा सुनने में आया कि आरबीआई बिल्कुल इस तैयारी में है कि आप पॉलीमर के जो नोट है ना, जो प्लास्टिक नोट है ना, उनको अब यहाँ पर बनाया जाए और उनको संचालन में लिया जाए और सभी के लिए इस्तेमाल में लाया जाए उसको। और इनका बिल्कुल मजबूती होती है इसके अंदर, इसके अंदर सुरक्षा है। कागज़ के नोट जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनके, लेकिन पॉलीमर नोट जो होते हैं पानी में, नमी में और गंदगी में उनका जो असर होता है उस पर आसानी से नहीं होता है। और इनकी जो उम्र होती है, लाइफ होती है ना, जो कागज़ के नोटों से कहीं गुना ज़्यादा होती है। और यानी बार बार अब नए नोट छापने की भी ज़रूरत कम ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि नकली नोट बनाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि प्लास्टिक जो नोट होते हैं ना, उसमें आधुनिक सुरक्षा फीचर्स और पारदर्शी विंडो और ख़ास तरह की प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें कॉपी करना आसान नहीं होता है। तो बिल्कुल ये सभी के लिए फ़ायदे का एक कह सकते हैं कि एक बिल्कुल मौका है सभी के लिए। और ऐसे में ये कोई बिल्कुल ऐसे नहीं कि पहली बार ये इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्निक, ये 60 से ज़्यादा देशों में इस्तेमाल की जाती है, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसे इसमें पहले से ही इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल वहाँ पर होता है और ऑस्ट्रेलिया इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला पहला देश था। और बिल्कुल आरबीआई ने ये अभी फिलहाल नहीं बताया कि वो कब से इस को चलन में लेके आएगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद छोटे नोटों से इसकी शुरुआत की जाएगी। और इस योजना से बिल्कुल सभी को फ़ायदा होगा, भारतीय मुद्रा व्यवस्था और बिल्कुल आधुनिक हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और टिकाऊ भी बन जाएगी बिल्कुल। तो अगली बार जब आपके हाथ में नया नोट आए ना, तो बिल्कुल हो सकता है कि वो प्लास्टिक का नोट हो, तो सरप्राइज मत होइएगा, है ना। तो आप भी बस हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर हम लेकर आते रहते हैं, और साथ साथ आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। फिलहाल आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स और सिटी की बहुत सारी अमेजिंग अपडेट्स यहाँ पर आपको सुना रहे हैं, साथ ही साथ संगीत का भी आनंद ले रहे हैं हम यहाँ पर। शनिवार की शाम है तो बिल्कुल अब पैसों की बात हुई है, तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए और यहाँ पर डांसिंग मूड तो बनता है। फिलहाल स्टे ट्यून, सुनते रहिए हमारे साथ और आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं आशुतोष के साथ।
1: क्या बात है, क्या चीज़ है, पैसा क्या।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

बिल्कुल, और ज़िंदगी ऐसी ही सुहानी बिल्कुल चलती रहेगी। अब आप भी पॉजिटिव रहिए, और क्योंकि अगर आपके या फिर आपके घर में किसी ने इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आवेदन किया है, तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रक्रिया के पहले दिन शानदार रफ्तार उन्होंने पकड़ ली, और आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 24 घंटों में ही तकरीबन 72% छात्रों ने अपनी सीट रिजर्व कर ली हैं। और बिल्कुल, जिन्हें पहले राउंड में सीट मिली उन्होंने बड़ी संख्या में बिना देर किए उसे स्वीकार कर लिया। और ख़ास बात यह रही कि 5,141 छात्रों को उनकी पहली पसंद यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज और कोर्स मिल गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इससे साफ है कि इस बार छात्रों को अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के आधार पर काफ़ी सोच समझ कर उन्होंने आवेदन किया। और अगर आपको पहली पसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। एडमिशन प्रक्रिया अभी जारी है, और सीट स्वीकार करने के बाद भी छात्रों को आगे के राउंड में अपग्रेड करने का विकल्प मिलेगा। यानी कि अगर बाद में राउंड में आपको ऊंची पसंद वाला कॉलेज या फिर कोर्स उपलब्ध होता है तो वहां जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। सो ये इससे मतलब आपको मायूस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमेशा बिल्कुल होपफुल रहिए। और वहीं जिन छात्रों ने अभी तक अपनी सीट स्वीकार नहीं की है तो उनके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया पूरी करने बेहद जरूरी है, और इसके बाद संबंधित कॉलेज दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और फीस जमा करने के बाद ही प्रवेश की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। सो इसलिए आप पूरे अलर्ट रहिए और पूरे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कीजिए। और अगर आप भी DU एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा हैं तो समय समय पर कॉमन सीट एप्लीकेशन सिस्टम यानी कि CSAS पोर्टल पर अपनी स्थिति जरूर देखते रहिए, और वहां पर सभी जरूरी अपडेट्स आते रहेंगे। हर अपडेट पर नजर रखें और तय समय के भीतर ही सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करें। बिल्कुल, और हम सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, उनको बधाइयां देना चाहते हैं, और उनके आने वाले जो जीवन है उसके लिए भी बहुत सारे उनको हम बिल्कुल विशेष देना चाहते हैं। और उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिलेगा और अपनी नई शैक्षणिक यात्रा सफल बिल्कुल आपकी सफलतापूर्वक रहेगी, और आप जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं बिल्कुल आपको ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गानों की डोज लगातार मिलती चली जाती है, और आपको इतना अच्छा हम एक म्यूजिकल डोज देते हैं ना, और उससे माहौल पूरा तैयार हो जाता है। फिलहाल आप सुनते रहिए सिटी लाइट्स। हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी उनको भी हम शामिल करेंगे, उनके नाम हम शामिल करेंगे। फिलहाल सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6।

बिल्कुल आपको मिलवाएंगे, अपने जो आने वाले जो हमारे जो आरजे हैं आपके प्रेजेंटर्स हैं उन सभी किससे इंट्रोड्यूस आपको जरूर करवाएंगे। बिल्कुल मैसेज मसाला मिक्स लेकर चंद्रानी मुखर्जी कुछ ही पलों में आपके साथ जुड़ जाएंगी 6:02 से, और उसके बाद आप सुनेंगे हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का स्पेशल प्रोग्राम सैटरडे सिजलर और सुहासिनी, उसको लेकर आएंगी आपके लिए 7:02 से, और उसके बाद चंद्रानी दोबारा लौटेंगी म्यूजिक मस्ती लेकर। बिल्कुल म्यूजिक की जबरदस्त डोज आपको वहाँ पे मिलेगी, वो बैक टू बैक बहुत ही लेटेस्ट ट्रैक्स आपको सुनने को मिलेंगे, और बिल्कुल उसके बाद आप सुनेंगे रेनबो सेलेब्स 9:02 से, और ताहिर उसके आपके साथ जुड़ेंगे उस प्रोग्राम में, और आलोक श्रीवास्तव हमारे साथ होंगे जो कवि आलोक श्रीवास्तव जी हैं, और बिल्कुल आज उनसे जो भेंट करेंगी वो होंगी राजश्री त्रिवेदी, और बिल्कुल सुहासिनी एक बार फिर से लौटेंगी इन द ग्रूव लेकर 10:02 से, और ताहिर फिर जुड़ेंगे आपके साथ रंगे महफिल में 11:02 से रात को। फिलहाल बस अब मेरे चलने का वक्त हो चुका है, लेकिन चलने से पहले जो हमारे लिसनर्स हैं ना उनको बिल्कुल हम शामिल जरूर करेंगे, और हमारे साथ सौरभ अनेजा इस वक्त गाजियाबाद से कनेक्टेड हैं, थैंक यू सो मच और गुड इवनिंग हमें भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ विजेंद्र घटोल इस वक्त अकोला महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, गाने बहुत पसंद आए बहुत बहुत शुक्रिया, और जोया इस वक्त हमारे साथ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं, और आई थिंक जरूर आप ऑनलाइन हमें सुन रहे होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए, और उन तमाम श्रोताओं का जो हमें मैसेज नहीं भेज पाए लेकिन फिलहाल हमें सुन रहे हैं। और बस आपको अपडेट दे दूं कि चंद्रानी आ चुकी हैं स्टूडियो में और बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग गानों के साथ। फिलहाल बस अब चलता हूँ और अपने मैसेजेस आप रेडी रखिएगा, नंबर हमारा वही 9868107070। फिलहाल आशुतोष लेते हैं आपसे अनुमति और उस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ, आपका सफर बहुत ही अमेजिंग गुजरे, थैंक यू सो मच, हैप्पी सैटरडे, टेक केयर।

आकाशवाणी रेनबो पर इस वक्त प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 ने अंतरिक्ष की यात्रा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने के लिए 2800 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का निर्णय लिया है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन किया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा ने युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता की घोषणा की। और रूस पर यूक्रेन के रात भर हुए ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मौत, 60 घायल। अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी। दोनों देशों ने सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। और खेलों में पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। फीफा वर्ल्ड विश्व कप में आज तीसरे स्थान के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला। कल फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसी के साथ इस घंटे के समाचार समाप्त होते हैं। आप जुड़िए रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, और दोस्तों चांद जब आता होगा तो आपको चांद की याद जरूर आती होगी, इसीलिए चांद को भी आपकी बेहद बेहद बेहद बेहद बहुत ज्यादा याद आती है। और आज हम आपसे इसलिए तो आ गए हैं इतने दिनों बाद मिलने के लिए, बाप रे बाप कितना ज्यादा मिस किया हमने आपको, आपको पता है आपने भी मिस किया होगा हमें, हमें भी पता है। और दोस्तों कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जिन्हें पहली बार देख कर ही दिल कह उठता है, अरे इनसे तो हम पहले भी मिल चुके हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे पुराना कोई नाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि बस एक ही मुलाकात में कोई ऐसा खास शख्स बन जाता है जो दिल के किसी कोने में अपनी जगह बना लेता है, पर फिर चाहकर भी दोबारा उससे मुलाकात नहीं हो पाती, अगर उसकी याद बरसों तक साथ चलती रहती है। क्या आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा खूबसूरत लम्हा मिला है, ऐसा कोई अनकहा सा लम्हा आया है? अगर हाँ तो देर मत कीजिए, अपनी कहानी अपनी यादें और अपने एहसास अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए 9868107070 पर। आकाशवाणी रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स में हाजिर है आपकी दोस्त, आपकी हम सफर गुफ्तगू ये नाचीज, जिसका नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, चांद मुखर्जी।

दोस्तों होता है ना जिंदगी में, यूँ तो हम तमाम लोगों से मिलते हैं, तमाम सारी बातें भी करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी ऐसे इंसान से हमारी मुलाकात हो जाती है कि लगता है कि भाई वाह क्या बात है, इनसे तो लग रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, या हो सकता है कि इनसे हमारी ये पहली मुलाकात नहीं है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि अगर आप किसी से पहली बार मिले हो और आपको ऐसा लगा हो कि नहीं नहीं ये हमारी पहली मुलाकात नहीं हो सकती, ये इन शख्स से तो हम पहले भी मिल चुके हैं, बस यही आज हम जानना चाहते हैं। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि कभी किसी के साथ आपकी ऐसी मुलाकात हुई हो कि उससे मिलने के बाद आपको दोबारा उनसे मिलने का मौका नहीं मिला हो, लेकिन उसी मुलाकात में आपको लगा हो कि वाओ ये इंसान कितने अच्छे हैं ना। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं 9868107070। चांद है आपके साथ और आप हैं ना हमारे साथ।

शायद रूहों की भी अपनी याददाश्त होती है, शायद रूहों की भी अपनी याददाश्त होती है, तभी तो कुछ लोग पहली मुलाकात में भी अजनबी नहीं लगते, तभी तो कुछ लोग पहली मुलाकात में भी अजनबी नहीं लगते।

और दोस्तों बस आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी पहली नज़र थी जो आपके दिल पर अभी तक छपी हुई है, या कौन सी ऐसी वो मुलाकात थी जिनसे मिलने के बाद आपको लगा अरे इनसे तो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा हकीकतन हुआ नहीं था क्योंकि आप कभी मिले ही नहीं थे उनसे। वो आपकी पहली मुलाकात थी लेकिन आपको लगा नहीं कि आप उनसे पहली बार मिले हैं, बस यही आज हम आपसे जानना चाहते हैं। 9868107070 पर आपको बताना है चांद है आपके साथ। और हमारे पास जो पहला मैसेजेस, बाप रे बाप, इतने सारे लोगों को ये एहसास हुआ है, हमें तो पता ही नहीं था। इतने सारे लोगों ने मैसेज भेजना शुरू किया है, इतने सारे लोगों ने भेज दिया है। लिखते हैं पहला मैसेज इनका आया है कि चांद आप इतने दिन से कहाँ थी? अरे जनाब, हम रेडियो अपने कलेजे से लगाए घूम

रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब आपसे मुलाकात होगी, और लिखते हैं कि कई बार कुछ रिश्ते पहली मुलाकात में ही अपने से ही लगने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे बरसों पुराना कोई नाता हो, और कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी दिल में ऐसी याद छोड़ जाती है कि फिर उसी शख्स से दोबारा मिलने की ख्वाहिश हमेशा बनी रहती है। शायद इसे ही दिल का सच्चा एहसास कहते हैं। तेरी याद का मौसम कभी ढलता ही नहीं, बिछड़ने का जख्म आज तक भरता ही नहीं, मुलाकात की उम्मीद लिए बैठे हैं हम मगर तेरा इंतज़ार कभी ख़त्म होता ही नहीं। बिल्कुल, ये मोहम्मद सरफराज आलम जी जो कि हाट दर्शना बाजार ज़िला अररिया बिहार से लिखते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत अच्छी अच्छी अपनी स्वरचित कविताएं हमें भेजते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आलम जी। अगला मैसेज पे हम आ जाते हैं। चांद मुखर्जी, मेरी खुशी का लम्हा वो पल था जब रेडियो गोल्ड पर रेडियो जॉकी रेखा से मेरा पहला बार छोटा सा साक्षात्कार सीधे लाइव प्रसारित किया गया था। ये मेरी यादगार का सबसे बहुमूल्य लम्हा था जो पहली बार महसूस हुआ था। अनिल शर्मा वरिष्ठ श्रोता है हमारे, सरिता बिहार से लिखते हैं, दिल्ली से लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इस बात की हमें बेहद बेहद बेहद खुशी है। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैसेज मसाला मिक्स। अभी अभी ट्यून किया, ट्यून करते ही गाना चल रहा था, एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई, बेहद सुंदर शुरुआत। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी, हम भी शामिल हो गए हैं, हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए। किशन वजैनी वनजानी, नीलम स्वाति और कीशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, ये रोज हमें मैसेज करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सब हमसे जुड़ते हैं लेकिन अपने और दोस्तों को भी बताइए, और हमारे दोस्त जब नए नए दोस्त जुड़ते हैं और वो मैसेज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके मैसेजेस के साथ ही। कार्यक्रम ओह याद मत दिलाओ उनकी याद, चांद नाम जी, जख्म फिर हरा हो जाएगा। वैसे भी चंद्रमा की शीतल प्रकाश व आषाढ़ सावन की रिमझिम फुहार भी विरह में अग्नि सा प्रतीत होता है। आज का टॉपिक सुनकर दिल बरसों पुरानी याद में खो गया। हीरा मणि वर्मा जी लिखते हैं, दंत रहेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से। अच्छा जी, ऐसा हुआ है तो आप जल्दी से कुछ अच्छा सा अपने घर में बनवा के आप खा सकते हैं, आप खुद बना के दूसरों को खिला सकते हैं ना, खुशी में कुछ एंजॉय कुछ अलग करना चाहिए। ब्रजेश सिंह, दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच यूपी से लिखते हैं, गुड इवनिंग मेरी क्यूट सी। अच्छा जी, आपने मैं देख भी लिया, लखनऊ FM रेनबो। अच्छा, ये तो ये लिखते हैं कि ये पहले, अच्छा ओके, अभी लिखते हैं कि मेरा दिल्ली चैनल पर आज तक कभी मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन साथ अभी भी बना हुआ है हमारा, ये बहुत बड़ी बात है। इससे मैं नेपाल से सुन रहा हूँ, क्या बात है। लोग जब हमें दोस्त, हमारे सारे दोस्त हमें दूर दूर से सुनते हैं ना, तो सच में हमें बहुत बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गुड इवनिंग चांद जी, मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर दिल्ली इंडिया से लिखते हैं, जिंदगी में मुलाकात भी हुई और बात भी हुई, कुछ समय का प्यार भी हुआ, अब हम बेगाने हैं उसके शहर में। जिंदगी तू क्या चाहती है, मेरा फ़लसफ़ा भूल कर खुद मेरी मंजिल ढूंढती है। सॉन्ग बेहतरीन, नाम तो बताया नहीं आपने। अच्छा मोहम्मद इम्तियाज़, अच्छा मोहम्मद इम्तियाज़ जी, ज़रा गमों के बादल से बाहर निकलिए और अच्छी ज़िंदगी जिए हम लोग के साथ। हम लोग के साथ FM रेनबो के जितने दोस्त हैं ना, हम लोग सब साथ रहेंगे। अभी हम सुनाएंगे आपको एक बेहतरीन सा गाना और उसके बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद आपके मैसेजेस हमारे पास होंगे, तो इसलिए मैसेजेस का सिलसिला जारी रखिएगा। आज हमने आपसे जानना चाहा है कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी से आपकी पहली मुलाकात हुई हो और वो आदमी या वो इंसान आपको बिल्कुल भी अजनबी ना लगा हो, आपको लगा हो कि अरे इनसे तो शायद हमारी पहली भी मुलाकात हो चुकी है, या किसी की पहली मुलाकात ऐसी हुई हो कि दोबारा मिलने की बस चाहत रह गई हो, दोबारा आपसे कभी मुलाकात उनसे मुलाकात हो ही ना पाई हो, आप हमें बता सकते हैं 9868107070 पर। और आपके साथ है चांद।

0: ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
1: और दोस्तों, हमने कहा था कि हम वापस आ जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ। इतने सारे मैसेज आए हैं तो पढ़ना तो हमारा फर्ज बनता है दोस्तों, क्योंकि आप इतनी मेहनत से लिख रहे हो तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा ना। अगला मैसेज हमारे पास आया है यश शिंदे जी का, दोनों शाह एक साथ है, मुंबई से। लिखते हैं, चांद जी को नमस्ते, आपको भी नमस्ते। पहली मुलाकात में किसी अजनबी से सदियों पुराना अपनापन महसूस होना एक बेहद खूबसूरत एहसास है। पहली बार मिले थे मगर ना जाने क्यों सदियों पुराना कोई नाता सा लगा। वो अजनबी होकर भी इस दिल को अपनी ही धड़कन का साया सा लगा। नजरों का जादू, दुनिया की इस भीड़ में जब पहली बार निगाहें मिली, वो अजनबी चेहरा न जाने क्यों अपना सा लगा। एक पल की उस मुलाकात में कुछ ऐसा जादू था कि बरसों का कोई अधूरा ख्वाब सच होने लगा। यह शिंदे जी, अच्छा लिखा है आपने, ऐसी कोशिश जारी रखिए। मेरा नाम चंद्रसेन भारती है और मैं लखीमपुर से हूँ। गुड इवनिंग। मैं अपनी प्यारी पत्नी रितिका शुक्ला के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि जब मैं उनसे पहली बार मिला तो ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें बरसों से जानता हूँ, जबकि हमारी मुलाकात उनसे कभी हुई नहीं थी। शायद इसलिए कहते हैं कि कुछ रिश्ते पहली मुलाकात में ही अपने से लगने लगते हैं, मानो उनका कई जन्मों का साथ हो। रितिका, अच्छा ये उन्होंने अपनी बात लिखी है तो उनके आवाज़ में बोलना पड़ेगा, रितिका तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशी हो, हमेशा यूं ही मेरे साथ रहना। लव यू माई लाइफ, लव यू माई वाइफ। जी, ये हमने आपकी तरफ से कह दिया। आज आपको जरूर बहुत अच्छे अच्छे खाने के लिए मिलेगा। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, शाम का प्रोग्राम मैसेज मसाला सुनकर पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है। कस्बा बलराम से इरशाद अहमद शाह अजहर अहमद शाह जी ने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेनबो से जुड़े रहने के लिए। मैसेज मसाला मिक्स में आरजी साहिबा को प्यार भरा नमस्कार, आदाब। बरसों के बाद अचानक से मिले और बात हो गई और कुछ उन्होंने कहा, कुछ ने कहा और याद आ गई। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर जी लिखते हैं, चांद मुखर्जी साहिबा जी शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। अगला मैसेज, देख के जमाने के चलन हमने भी बड़ी दिया, हमने भी बदल दिया अपने चलन। रिश्ता सभी से है पर वास्ता किसी से नहीं। जावेद आलम मोहम्मद जयान जयपुर से ऐसा लिखते हैं, अरे भाई ऐसा क्या है, सबसे प्यार करिए, ऐसा किसी से नाराज मत होइए, है ना। सनी कंबोल लिखते हैं, विल सुलर पटियाला से लिखते हैं, जब रेनबो रेडियो पर सुना था 2011 के बाद से सीधे मैंने 2024 में सुनना, फ़ोन पे तो लगा कि ये तो वही है जिस पे दिल बहुत पहले मुलाकात हुई थी। दोबारा 2024 से अभी तक रोज़ सुन रहे हैं, लेकिन आपने इतने दिनों तक सुना क्यों नहीं, हम आपसे नाराज़ हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया, गुड इवनिंग सुषमा फ्रॉम दार्जिलिंग से लिखते हैं, लविंग योर प्रोग्राम, इंजॉइंग अ लॉट, सो सो सो मेनी थैंक्स टू यू सुषमा जी, आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला मैसेज, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप, हम बहुत अच्छे हैं, जो गाने चल रहे हैं आप बहुत ही अच्छे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। यूएसए में एक नाम था, उसमें एक नाम था, अच्छा आपने अपना नाम नहीं बताया, अब उसी में होगा शायद किसी गाने में, लेकिन अगर आप नाम बताते तो मैं और अच्छा लगता। सुनील दियाली लिखते हैं, गैंगटोक सिक्किम से, बारिश हो रही है और खूब मज़ा आ रहा है प्रोग्राम सुनने में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़े दिनों के बाद रेनबो पर आज चांद खिला, प्रकाश गोगिया नमस्कार जी, करकर डुमा दिल्ली से लिख रहे हैं। तो चलिए इसी बात पर बेहतरीन सा ट्रैक सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।

दोस्तों, कभी कभी अजनबी चेहरे हमारी अधूरी दुआओं का जवाब लगते हैं। और उसने सिर्फ मुस्कुराकर देखा था और मुझे लगा कि किसी ने मेरी तन्हाई पढ़ ली। ऐसा होता है दोस्तों, और उसी याद के सहारे, उसी खूबसूरत चेहरे के सहारे, या वो एक खूबसूरत एहसास के सहारे कभी कभी तो पूरी ज़िंदगी भी गुजर जाती है। अगला मैसेज हम पढ़ लेते हैं। ज़िंदगी में इंसान सब कुछ भूल सकता है। चांद मुखर्जी को आदाब, आपको भी बहुत बहुत। लिखते हैं कि ज़िंदगी में इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर अपना पहला प्यार नहीं। वो पल कितना खुशगवार था जब हम किसी को देखते ही दिल दे बैठे थे। वो मासूम चेहरा, वो नीली नीली आँखें जिनमें डूब कर प्यार का एहसास जाग उठा था। वो लम्हा कितना खूबसूरत और खुशियों भरा था। लेकिन ऐ खुदा, तूने ये मोहब्बत क्यों बनाई है? अगर आई है तो फिर इसमें क्यों जुदाई है? गंज डुडवाड़ा से शमशुल कमर राही साहब लिखते हैं और थैंक्स लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमशुल साहब आपको मैसेज करने के लिए। लेकिन यही तो ज़िंदगी है ना, तभी तो मज़ा है ना। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा, अगर सब कुछ कुछ, तो फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा, ऐसे ही नहीं मज़ा आता है ना। विष्णु प्रसाद दांगी, ग्राम खजूरिया, तहसील ब्यावरा, ज़िला रायगढ़, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। पहली मुलाकात मेरी रेनबो डेली रेडियो से हुई, उसके बाद मैं हर रोज़ इसे सुनने लगा हूँ और आप कभी आपको भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस रेडियो के माध्यम से काफ़ी दोस्त बने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, आपका नाम बहुत अच्छा है। अगला मैसेज हमारे पास आया, मैं एक टीचर हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं प्रधान शिक्षक के रूप में ट्रांसफर होकर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में गया, तो बच्चों के हाव भाव देख कर लगा कि अरे मैं तो इनसे पहले भी मिल चुका हूँ। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से सरकते। वैसे आपको पता है रंजीत जी, हम किसी भी बच्चे को देखते ना, हमें तो लगता है कि इनसे पहले ज़रूर मिल चुके हैं और उनको ज़रूर से गोद में उठा के कस के प्यार कर लेते हैं हम। और अगला मैसेज हमारे पास, आपके फिल्म रेनबो के कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं सुनकर बड़ी बहुत झूम उठता हूँ। कुमार गौरव इंदुकर, नेशनल पार्क तालुका चेमूर डिस्ट्रिक्ट चंद्रापुर से लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज लिखने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है कि कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फराद, फारिया तारिया, ये रोज़ हमें मैसेज करते हैं। इनके पास यही मैसेज है, यही मैसेज का पैटर्न है जनाब। लेकिन अगर आप कुछ टॉपिक से जुड़ा हुआ लिखेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। चांद को नमस्कार। एक सफ़र में को पैसेंजर जो अनजाना होता है, लेकिन सफ़र के ख़त्म होने पर यही एहसास होता है कि पहले से ही पहचान थी, रह जाती है कभी ना भुलाने वाली यादें। रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं। बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। आदाब आरजे चांद, तुसी कैवे हो जी, आप की मीठी वॉइस में शो को एंजॉय कर रहे हैं जी। प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से लिखते हैं, तो बड़ा सा धन्यवाद जी। अगला मैसेज भी हम आ जाते हैं। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं, इन 2029 आई सॉ शाहरुख खान परफॉर्मेंस ऑन स्टेज व्हाइल आई वाज वर्किंग इन सिंगापुर। ओके, I queued up to take his photograph, but instead I was looking at him. He looked at me and he smiled and said, "You are very beautiful." I never saw him face to face ever. Oh my God, Zoya, आप तो हवाओं में उड़ने लगी होंगी तब तो, जब उन्होंने आपको beautiful कहा। आप सच में बहुत beautiful हो, क्योंकि आप आकाशवाणी रेनबो से जो जुड़े हुए, और जो भी आकाशवाणी रेनबो से जुड़ा होता है वो खुद ब खुद ब्यूटीफुल हो जाता है विदाउट एनी फेस पैक, यू नो। आरजे ये अगला, अच्छा वो कुछ पूछ रहे हैं। विपिन नेहरा जी काशीपुर उत्तराखंड से लिखते हैं कि रेखा जी कहाँ चले गए, कहाँ खो गए? अरे कोई खोया नहीं है जनाब, सब आपके आसपास है। सुनते रहिए, कभी ना कभी आपको ज़रूर सुनने को मिल जाएगा। गुड इवनिंग चांद, कैसे हैं? आपके साथ हैं, सवाल अपने आसान पूछा है, अरे जवाब देना उतना ही कठिन। डॉली लवली सॉन्ग सिलेक्शन, अच्छा सवाल जो हमने पूछा है वो इतना कठिन नहीं है जनाब। अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप हमें बता दीजिए बिना झिझक, हम चुपके से पढ़ लेंगे और सबको बताएंगे, नहीं चुपके से हम पढ़ के आप तक पहुँचाएंगे। और अगला मैसेज है कांच से, मोहम्मद फुरकान लिखते हैं, आपके टॉपिक बहुत अच्छा है। दिल्ली में चांदनी चौक में एक सज्जन मेरी पहचान, मेरे 5 साल पहले, अच्छा कपड़े की शॉप पर बहुत अच्छी खासी जान पहचान हो गई, यहाँ तक कि हम एक साथ होटल में खाना खाने गए। फिर उसके बाद पिछले साल वो सज्जन मुझे शहजानपुर कपड़े मार्केट में मिले, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मैंने उन्हें देखते ही फौरन पहचान लिया।
मैं बोला आप मुझे 4 साल पहले दिल्ली चांदनी चौक पर एक कपड़े की शॉप पर मिले थे, फिर उन्होंने उनको याद आया, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। और फिर मुजफ्फरनगर के, वो भी अच्छा, वो मुजफ्फरनगर के रहने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही होता है कि कभी कभी हम नंबर एक्सचेंज नहीं कर पाते और वो मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोबारा हम कभी मिल भी जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही बस हम जानना चाहते थे, अगर आपके साथ हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं। अगला मैसेज निम्बाराम गोदारा बिरलोका नागौर राजस्थान से लिखते हैं, हमारे यहाँ फसलें आईसीयू में, बारिश नहीं है। होगी जनाब, होगी। कभी कभी ऊपर वाला ना हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है। तो चलिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। आज हमने आपसे जानना चाहा है मैसेज मसाला मिक्स में कि क्या आपसे किसी की पहली मुलाकात में ऐसा लगा है कि अरे इनसे तो हम पहले भी मिल चुके हैं, या किसी की पहली मुलाकात आपसे हुई है और उसके बाद दोबारा कभी मुलाकात तो नहीं है लेकिन की यादें आपके दिल में यूं ही जस की तस बनी हुई है, तो आप हमें बता सकते हैं 9868107070।

और दोस्तों, आपके मैसेजेस का सिलसिला यूं ही हम शुरू करते हैं फिर से, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आए हैं। बाप रे बाप, अगला मैसेज हमारे पास आया है। कैसे हैं आप? हम एकदम अच्छे हैं आरजे जी। अच्छा, रोज़ मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते पसंद आ रहे हैं। प्रोग्राम में आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। ज़िला मुरादाबाद से, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। दोस्तों, ये हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इन्होंने एक मैसेज रखा हुआ है, लेकिन हम इनके इतने शुक्रगुजार हैं कि ये हमारा मैसेज, हमारा प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स या जो भी प्रोग्राम है वो सुनते हैं और अपने अपनी बताते हैं कि हमसे जुड़े हुए। इस बात की हमें बहुत बहुत बहुत खुशी है और आप सबका भी बहुत बहुत हम शुक्रिया करेंगे कि आप इस तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, कौन कहता है कि पहचान जरूरी है जनाब? रूह मिल जाए तो सदियों का तारुफ हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं। अभी हमारे पास करीब 14 मिनट और हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर से लिखते हैं कि इनको प्रोग्राम अच्छा लगता है। ज़िंदगी कैसी है पहेली, कई बार इंसान जिस पे मिलना चाहता है उससे मिलना नहीं हो पाता। नेचर से आप नेचर ने आपको जिससे मिलवाना है उसी से मिलना पड़ता है। अच्छा जी, ये तो है, मिलना तो पड़ता है, लेकिन कभी कभी किसी की मुलाकात बहुत दिल में खास एहसास दे जाती है। जैसे कि अभी हमारे पास एक बहुत दूर से मैसेज आया था, आउट ऑफ इंडिया से, लिखते थे कि उनका शाहरुख खान से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनको ब्यूटीफुल कहा और वो याद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी दिनों तक रहेगी। हमें लगता है ना, ये प्यारी सी बात थी। राम मोहन अमरावती से लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे चांद। आरजे चांद जी, मेरा नाम पंकज है, अमरावती महाराष्ट्र से हूँ, ये मेरा नंबर है और कल शाम से मेरे मैसेज किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहा है। देखिए जी, आपका राम जी आपका प्रोग्राम में शामिल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका शामिल नहीं हो रहा है। देखिए, शामिल हो गया, इसका मतलब अगर आप मैसेज करोगे तो शामिल हो जाएगा। हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली। हाउ आर यू टुडेज टॉपिक? आई वुड लाइक टू से दैट आई हैव ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू टॉकिंग टू जर्नलिस्ट। आई वर्क इन पोस्टल डिपार्टमेंट एंड आई टॉक टू कस्टमर। सो वन डे वन कस्टमर कम टू मी एंड सेट एंड शी टर्न आउट टू बी अ जर्नलिस्ट फ्रॉम सम चैनल। माई ड्रीम वॉज फुलफिल्ड दैट डे। आई वॉन्ट टू मीट अगेन। ओके ओके, जस्ट कीप ड्रीमिंग, सम डे योर ड्रीम विल डेफिनेटली कम ट्रू, ऐसा हम विश कर सकते हैं आपको। हाई, गुड इवनिंग डियर चांद मैम, कैसे आप? हम बहुत अच्छे हैं। मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि मैम, जब बात किसी ऐसे अजनबी इंसान से मिलने की आती है तो एक मेरे कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम पूजा था, और वो जब भी हम क्लास में मिलते थे तो वो एक दूसरे को देखकर देखा करते थे। कोई फ्रेंड नहीं था उसका कॉलेज में, न्यू कॉलेज था उसका फर्स्ट टाइम। लेकिन अब उससे उसके अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई और है ही नहीं मेरी, वो मेरी बेस्टी है आज भी। आई एम अंशी शर्मा, हस्तिनापुर मेरठ यूपी से, ऐसा लिखते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी किसी से ऐसी मुलाकात होती है कि वो हमारा ज़िंदगी भर का साथ ही बन जाता है। नमस्कार चांद जी, कार्यक्रम और गाने अच्छे लग रहे हैं। आपका कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। देहरादून से आलोक पवार और मिनी, ऐसा लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी ज़र्रा नवाजिश है जो आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, यूँ हमारे साथ जुड़े हुए। सब मन का भ्रम होता है, अजनबी अनजान ही होते हैं। एक दो बार मुझे भी डाउट हुआ, बात करके सब क्लियर हो गया। प्रवीण चौहान जी खरगोन मध्य प्रदेश से, ऐसा लिखते हैं। जी जी, ऐसा आपका एक्सपीरियंस है तो ये आप कह रहे हैं बात, हम आपकी बात भी मान लेते हैं। कार्यक्रम पेश करने वाले चांद जी को प्यार भरा नमस्कार, आपकी सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, लाल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आदाब चांद जी, एक गाना सुना दो। अच्छा जी, गाना तो हम सुना रहे हैं आपको लगातार, आप हमारे साथ जुड़े।

रहो, आप इस तरह से गाने सुनते रहोगे। लिखते हैं कस्बा बलराम से इरशाद अहमद शाह, इन्होंने तो अभी पहले भी मैसेज किया था, आप गाने की फरमाइश भी कर दी है, हमारा भी मैसेज पढ़ो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे मैसेज लिखो तो जनाब, हम पढ़ेंगे ज़रूर, आप मैसेज जब लिखोगे। लिखते हैं ऑनलाइन हो ऐसे देखते नहीं स्क्रीन पर, गाने की प्लेलिस्ट बहुत खूबसूरत है, चांद हमारा नाम भी शामिल कीजिए प्लीज़, आज हमारा आज का पहला ही है। अच्छा FM रेनबो ऑनलाइन ऐसे दिखाता नहीं, गाने बहुत एंजॉय कर रहे हैं। विजेंद्र गहलोत लिखते हैं आलोका से, आलोका अच्छा सॉरी, ये लिखते हैं क्या लिखते हैं, अच्छा वीरेंद्र जी लिख रहे हैं, वीरेंद्र गहलोत जी लिख रहे हैं, अकोला से लिख रहे हैं। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप असल में क्या हो रहा था, आपके मैसेज पता है क्यों शामिल नहीं हो रहे थे, क्योंकि आप लगातार मैसेज करते जा रहे थे और वो बार बार ऊपर चले आते, तो एक बार मैसेज करके इंसान को शांत होकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम, जब भी गुड इवनिंग, हाई स्कूल के पेपर दे रही थी तो मेरी मुलाकात एक लड़की से भी, सच में उस दिन हमारा लड़की से हुई, सच में उस दिन हमारा लास्ट पेपर था और वो लड़की मेरे दिल में बस गया। अच्छा लड़की लिखा है ना, लड़का लिखा, अच्छा लड़के से हुई, अच्छा लड़का दिल में बस गया और तब अभी तक मुझे उसकी याद आती है, लेकिन हम जिंदगी में अभी तक कभी नहीं मिले। चलिए क्या बात है, अच्छी बात है ना, वो कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आपके दिल में एक अच्छी याद बन के आपके दिल में रहती है, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगला मैसेज, हमारी पहली मुलाकात की दास्तान लंबी है, पर जो आज आपसे मुलाकात हुई है प्यारी प्यारी बहन, बहन ना जाने कब सुनने को मिलेगी दोबारा। अच्छा जी नाम तो बताया नहीं आपने अपना। अगला मैसेज, अच्छा ये तो बताइए, आज की मुलाकात किसी को नहीं आ रही है, नेक्स्ट कब आएंगे, सब हमसे यही पूछ रहे हैं। अभी सुनते तो रहिए रेनबो, हम आ जाएंगे। बंगाली हो तुम मेरे खुदा, अच्छा तो बंगाली तो हम ही हैं लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं जनाब। गुड्डू धाकड़, मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गाँव से कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, उनको देखकर ऐसा लगा कि उनसे पहले से जान पहचान है, उनसे उसके बाद हम कभी नहीं मिले। जी कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी किसी ऐसे अनजान शख्स से मुलाकात होती है, उनसे हेल्प भी मिलती है लेकिन दोबारा मुलाकात नहीं होती, बस उनकी यादें रह जाती है। यही तो आज हम आपसे जानना चाह रहे थे मैसेज मसाला मिक्स में कि आपके साथ ऐसा कब हुआ है, क्या हुआ है। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड इवनिंग स्वीट वॉइस चांद मुखर्जी, खूब भालोवाशी तुम्हें के सफ़र में हूँ, बेटी के घर बेंगलोर से मायके सिलीगुड़ी जा रही हूँ, सिलचर 28 जुलाई जाऊंगी, माय फेवरेट प्रोग्राम मीरा सिंह सिलचर आसाम से, ऐसा लिखती है। मीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप रास्ते में भी और कहीं और जाके भी रेनबो का साथ नहीं छोड़ दी है ना। अगला मैसेज, इतने सारे मैसेज आप भेजोगे जनाब तो कैसे आएगा। लिखते हैं बहुत बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, देखिए हम लास्ट वाला पढ़ दे रहे हैं आपका मैसेज, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आज के विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरी पहली बार अमिताभ बच्चन जी और आमिर खान जी से केरल में 9 अगस्त 2019 के दिन शुक्रवार सुबह 10:12 भी होते हैं ना मुलाकात हुई थी, तो वो लम्हा मेरे जीवन के शानदार लम्हों में से एक है। जी बहुत बहुत मुबारक हो आपका कृष्ण कुमार मिश्रा जी कि आपने ये आपकी जीवन में वो लम्हा, उतना प्यारा सा लम्हा आया और आपने वो हमसे शेयर करने का आपको मौका भी मिला। हेलो गुड इवनिंग मैम, मैं बलवंत सिंह चौहान विलेज फलसारी मार्केट गाजा तहरी गरवहाल उत्तराखंड से हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है मैम, आज के टॉपिक पर बहुत ही अच्छा है। मेरा मैसेज तो पढ़ लीजिए मैम मैसेज पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा और मैसेज हमने आपको पढ़ लिया, थैंक्स सिस्टर। एक अगला मैसेज आया हमारे पास, किसका है ये, ओके अगला मैसेज हमारे पास, बहुत सारे मैसेज है दोस्तों लेकिन हमारे पास क्या नहीं, आप टाइम बहुत कम बचा है तो इसलिए हम आपको कुछ अपनी बातें भी कह देते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग वक्त से नहीं तकदीर से मिलते, इसलिए पहली मुलाकात में भी अपने से लगते हैं है ना, और जब आप किसी ऐसे इंसान से मिली है ना तो बस उनकी याद चुपके से अपने, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा हम फ़ोन पे और इस पे कॉन्टैक्ट पे और फ़ोन कर करके उनको याद करें, कभी कभी कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिस वजह से हम अपने दिल को
बहुत ही ज्यादा दिल को बहुत ही ज्यादा हम सुकून दे सके, दिल में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो

0: सारा सा हो, हमेशा दिल को परे, अरे गर्मी हो रही है, अरे बरसात नहीं हो रही है, अरे बारिश नहीं हो रही है, अरे बहुत ठंड हो रही है, नहीं नहीं जनाब, दिल को बहुत ही सुकून से और खुशी से रखिए और प्यारे से रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। बस हम आपको लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपको नहीं आपके साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और एक सुनाएंगे ब्यूटीफुल सा ट्रैक और उसके बाद जुड़े रहिए आप हमारे साथ।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
7: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
8: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
0: और दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये साथ बहुत अच्छा लगा होगा और इस साथ को आप अपनी यादों में ज़रूर बनाए रखेंगे और हमें बताएंगे भी ज़रूर कि आज की शाम आपको चांद के साथ कैसा लगा। लेकिन चांद की आपके साथ एक और मुलाकात होनी बाकी है, तो बस 1 घंटे के बाद पूरे 1 घंटे के लिए हम बेहतरीन म्यूज़िक की तैयारी करने जा रहे हैं और वो लेकर आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर। मैसेज मसाला मिक्स, अब दीजिए इजाज़त।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना, 24 घंटे

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 ने अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसे स्काईरूट एयरोस्पेस ने विकसित किया है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रामनगर देहरादून की पहली सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत वाहन चोरी मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत, 10 अन्य घायल हुए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। संजीव श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक और प्रदीप कुमार शेट्टी को सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार। आधार ऐप को 4 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया। डिजिटल पहचान सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ा। रूस पर यूक्रेन के रात भर हुए ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मौत, 60 घायल। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के अंतर्गत आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। और खेलों में फीफा वर्ल्ड विश्व कप में आज तीसरे स्थान के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला। कल फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो लगातार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जब बातें दिल की हो जाए पूरी, फिर आए संगीत की बारी। एक घंटे तक सुनिए अपने पसंदीदा नॉनस्टॉप फिल्मी हिट सॉन्ग्स, बिना किसी रुकावट, बिना किसी ब्रेक, सिर्फ आप, म्यूजिक और मस्ती। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ, क्योंकि सिर्फ यही हर धुन दिल से गुजरती है। आकाशवाणी रेनबो पर म्यूजिक मस्ती चांद के साथ।

0: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी रेनबो पर म्यूजिक मस्ती चांद के साथ।
4: Bellissimo.
5: Oh.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की बात है जाने जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मस्ती के साथ आपने काफी सारी मस्ती की होगी, हमने तो यहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, यही सोचिए कि आप मस्ती कर रहे हैं। तो आप चांद को दीजिए इजाजत, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपसे फिर होगी जल्द मुलाकात, आप हमारा इंतजार कीजिएगा और हमें बहुत याद कीजिएगा, क्योंकि जब हमें हिचकी आती है ना तब हमें लगता है कि आप हमें याद कर रहे हो। तो आपसे मुलाकात होगी फिर कभी ना कभी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो के ही किसी ना किसी प्रोग्राम में। तो क्या आपका चांद जाए, बोलिए ना, बाय।

लीजिए पेश हैं एफएम मुख्य समाचार। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू, चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा में अलग गुट का दर्जा मिला। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखों की कारखाने में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में एआई और आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी एग्री होकाथान योजना को मंजूरी दी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज पुरी में श्री गुंडीचा मंदिर में श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हार्मूज जलमरू मध्य अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। और खेलों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बारगोहन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेनबो स्लिप्स। आज के हमारे विशेष अतिथि कवि श्री आलोक श्रीवास्तव, भेंट करता हैं राजश्री त्रिवेदी।
1: नमस्कार। रेनबो सेलेब्स प्रोग्राम का आगाज आज हम कर रहे हैं इस जज्बात से, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। संजीदा शायर और पत्रकार आलोक श्रीवास्तव से आज हमारी गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आलोक?
2: बहुत बहुत शुक्रिया एफएम रेनबो का और राशि जी आपका भी, आज आपने याद किया अपने इस नए नवेले प्रोग्राम में। तो मैं बहुत अच्छा हूँ और अक्सर कोई पूछता है कि कैसे हैं आप, तो मैं कहता हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ।
1: वो तो आप हैं आलोक। मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, पिछले दिनों एक बहुत ही खूबसूरत शिव तांडव स्तोत्रम सुनने को मिला और मुझे पता चला कि उसका भावानुवाद है वो आपने किया है। ये ख्याल, ये सोच कैसे आई, क्योंकि इसे बहुत प्यार मिला, इसे लोगों ने एक्सेप्ट किया और ये बिल्कुल वायरल हो गया चारों तरफ, कैसे?
2: ख्याल, विचार और प्रेरणा, ये दोनों ही जो हैं वो हमारे हिंदी फिल्म जगत के ख्यात अभिनेता
1: आशुतोष
2: राणा जी का था। और एक चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की कि आलोक, मैं चाहता हूँ कि शिव तांडव स्तोत्र जो है उसका भावानुवाद हिंदी में किया जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों शिव अनुरागी जो हैं वो उसे पढ़ते हैं और संस्कृत के कारण उसके भावों को, उसके शब्दों को सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं
1: और समझ भी नहीं पाते हैं।
2: तो पहले तो मुझे कठिन लगा ये कार्य, मैंने उनसे कहा भी कि बड़ा पेचीदा काम है, लेकिन फिर मतलब संक्षिप्त में कहूँ तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो कार्य हुआ और हमने उसके 5 जो श्लोक हैं उनका भावानुवाद हिंदी में किया। सचमुच में मुझको व्यक्तिगत रूप से कल्पना नहीं थी कि वो इतना सुंदर जो है, और उसका पाठ भी आशु भाई ने बहुत आत्मा से, बहुत आत्मीयता से, वो चूंकि स्वयं भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो वो उस लिहाज से भी उन्होंने जो एक तरह से एक स्तुति है वो शिव की हमारी तरफ।
1: सुनाएंगे क्या थोड़ा?
2: हाँ मैम, बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है मैं एफएम रेनबो पर उसका पाठ कर रहा हूँ। इसके कुछ श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट डमट डमट डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, वे मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है, समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा, नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम। अब ये तो शिव तांडव के श्लोक हैं, अब शिव क्या है ये उन्होंने मुझे समझाया आशुतोष राणा जी ने। और फिर वो जो मैंने लिखा कि शिव क्या है, विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा।
1: बहुत सुंदर। और आप के परिचय में मैंने कहा था कि बेहद संजीदा कवि, और अपने ही जिसे आपने लिखा है, भावानुवाद किया है, और पढ़ते हुए आपकी आंखें पूरी तरह से नम हो गईं। शिव भक्त आप होंगे जरूर, क्योंकि ये संभव ही नहीं है इस तरह की रचना करना बगैर अगर कहीं से वो प्रेम या श्रद्धा या विश्वास उसमें ना हो। चलिए थोड़ा सा आपका मूड बदलते हैं और आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
2: संभवतः ये मेरे पसंद का क्या है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये भी मेरी एक बहुत ही जज्बाती, ये राजा मेहंदी अली खान साहब का लिखा हुआ गीत है फिल्म मेरा साया का, और इस गीत को मैं हमेशा ऐसे सुनता हूँ कि जैसे मेरी स्वर्गवासी माँ जो है वो मुझसे बात कर रही हूँ।
1: कौन सा गाना?
2: जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: आइए सुनते हैं।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो सेलिब्स। हमारे साथ हैं पत्रकार और शायर आलोक श्रीवास्तव और मैं हूं राजश्री त्रिवेदी। आलोक, आप बहुत भावुक हो जाते हैं, रिश्तों का कवि कहा जाता है आपको, आपको दुष्यंत की परंपरा का आलोक कहा जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे शिव तांडव पर। आप शिव भक्त हैं, जरूर होंगे, तभी जैसे मैंने कहा कि इस तरह से ये बात आई और आप पढ़ते पढ़ते इतने संजीदा हो गए, इतने इमोशनल हो गए।
1: ईश्वर में पूरी आस्था है और शिव जो है वो मेरे आराध्य हैं, हैं क्या आराध्य रहे हैं, और मुझे लगता है कि शिव जो हैं वो संपूर्ण देव हैं, जो जैसे कहते हैं ना देवाधिदेव हैं, तो उनकी जो कृपाएं हैं, उनके जो मैसेजेस हैं हमारी आज की जिंदगी में भी, कि मतलब आप सब कुछ दूसरों का जो भी अधर उधर जो भी खराब हो रहा है उसको अगर ठीक करना, मतलब जैसे नीलकंठ विष को धार लेना और स्वयं सिद्ध होकर और अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करना। देखिए क्या है, आपके आसपास हर तरह का वातावरण, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो इन सब के बीच में से एक राह निकाल के अगर मैं कंटेम्पररी शायरी जो हमारी है उसके लिहाज से बोलूं तो वो जैसे निदा फाजली साहब की गजल है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो
0: जिंदगी
1: क्या है किताबों, उसमें एक शेर है कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। ये ही है जिंदगी, और मुझे लगता है कि शिव जो हैं वो यही मैसेज देते हैं इंसान को, मनुष्य को, कि इस जगत की जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें तुम्हें देखना है अपनी दृष्टि से और फिर अपनी दृष्टि को विकसित करना है, और जितना कुछ हो सके अपने आसपास के विष को वो धारण करके और फिर अपना उद्धार अपनी तरह से करना।
0: क्या भविष्य में भी ऐसी कुछ और योजनाएं हैं इस तरह?
1: हाँ हाँ, हमने सप्तपदी कर ली है, ये भी एक आशुतोष राणा जी का ही वो था कि होता ये है कि हम विवाह मंडप में जब जाते हैं तो 7 वचन जो है वो कन्या की तरफ से होते हैं और 5 जो है वो वर देता है, पता किसी को नहीं होते, ले सब लेते हैं ठीक है।
0: तो वो पता था?
1: नहीं, मुझे भी नहीं पता था मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब ये हो गया शिव तांडव तो फिर उन्होंने कहा कि ये सप्तपदी भी जो है हमें करना है।
0: इस तरह की और भी चीजें सामने आएंगी।
1: तो अब आपको पता होगा कि आप क्या कहने वाले हो विवाह मंडप के बीच में बैठ के जो तो अभी पंडित ने पढ़ दिया तो आपने उसको कहा दिया हाँ भाई हाँ ठीक है हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब आप उसको समझ भी लो कि आप क्या कह रहे हो, क्या आपसे कहलवाया जा रहा है और क्या आपसे वचन लिया जा रहा है।
0: बहुत सुंदर। जब आप वो पढ़ रहे थे शिव तांडव स्तोत्रम तो आपने बाद में ये बात कही कि आपकी आंखें इसलिए भी नम हो गई क्योंकि वो आप अपनी माँ से किसी तरह से रिलेट करते हैं। आपकी वो गजल भी बहुत मशहूर हुई माँ वाली, कौन सी बात है ऐसी जिसे आप आज भी वैसे याद करके और इतने संजीदा हो जाते हैं लोग?
1: मुझे लगता है कि हम जो है ना बहुत सारी दुआओं का प्रतिफल होते हैं, मनुष्य जो होता है वो बहुत सारी यात्राओं के बाद का एक पड़ाव है। अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जिस योनि में आते हैं, तो चूंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं और इन चीजों को बहुत मानता हूं, जो नहीं मानते उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पड़ाव है जो योनियों का उत्कृष्ट है, देवों ने मनुष्य को बहुत विचार के बाद गढ़ा होगा। तो जब आप इसमें आते हैं तो आप सिर्फ आप नहीं होते हैं, मेरा शेर है कि मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, बहुत सारी दुआओं का प्रतिफल होते हैं आप, माता पिता, आपके रिश्ते। कोई अगर ये कहता है कि वो सेल्फ मेड है तो वो झूठ बोल रहा है, वो गलत कह रहा है, वो सेल्फ मेड नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा रही हैं, ये क्या है, ये मैं सेल्फ मेड हूं? नहीं, क्यों? आपने एक माध्यम मुझे दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मेरे जीवन में एक सहयोग दिया, तो मैं अपने आप को सेल्फ मेड कैसे कह सकता हूं? ठीक इसी तरह हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जीवन में कि हम ये मानने लगते हैं कि भाई हम स्वयंभू, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, वो मनुष्य की मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी कोई भी व्यक्ति सेल्फ मेड नहीं होता, और मेरे भावुक हो जाने का या जज्बाती हो जाने का कारण ये है कि मैं ये समझता हूं कि जैसे कोई रचना है, अम्मा है या कोई भी रचना, बाबूजी या कोई गजल, कोई रचना, कोई भी काम जो मैं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको ऑपरेट कर रहा है ना। अपन कहते हैं ना, देखिए बड़ों से सुना है अपन ने, कितनी बार सुना है, क्या सुना है, यार हमारा जीवन बड़ा सहज सरल, पता नहीं कौन से हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे, कोई हमको संताप नहीं है। ठीक वैसे ही यार पता नहीं यार क्या चल रहा है जिंदगी में, पता नहीं कौन से पाप किए थे, कौन से

0: कर्म हमारे बुरे थे, ये क्यों होता है, ये क्यों जुमले आते हैं आपके उसमें, ये आपके सबकॉन्शियस में आए क्यों? ये इसलिए आए क्योंकि आप उसमें बिलीव रखते हैं. आप एथिस्ट हैं तो आप नहीं मानेंगे, आप केमिकल एक कॉम्बिनेशन मानेंगे खुद को, ठीक है. लेकिन अगर आप एथिस्ट नहीं है, आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, मेरा तो अब धरती पवन गगन समीरा इनसे बना हुआ हूं मैं, वो जो हमारी माइथोलॉजी कहती है. तो मेरा जज्बाती हो जाना उन भावनाओं के प्रति मेरा समर्पण है जिन्होंने मुझे गढ़ा है.
1: बहुत सुंदर. आपकी पसंद का एक और गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं आलोक.
0: एक बहुत अच्छा गाना है और बहुत सकारात्मक है, और ये इसका मेरे जीवन में ये है कि मैं पहली बार जब स्कूल लाइफ में मैंने गाना गाया था तो इसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला था इसी गाने पर. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, और ये मैं अपने पुत्र अंशल को समर्पित कर रहा हूँ.
1: बहुत बढ़िया, सुनते हैं ये गाना.

0: सकारात्मक उत्तर, मतलब ये कहिए कि 1995 में उनका देहांत हुआ, तब तक वो काफी कुछ मान चुके थे कि हाँ ये राह पर है और ये कुछ कर लेगा।
1: आलोक, आपको रिश्तों का कवि कहा जाता है, आपकी एक बहुत सुंदर पंक्ति है झीने झीने रिश्तों पे, कर देती है तुलपाई अम्मा वाली। रिश्तों की बात अगर करें तो रिश्तों को जीना, रिश्तों को संभालना, बचाना कितना चैलेंजिंग लगता है आज के दिनों में एक शायर होने के नाते, क्योंकि संजीदा इंसान है आप और आसपास जो चीजें हो रही हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है कि चीजें बदल गई हैं बहुत? क्या अब अम्मा की तरह कोई इन रिश्तों को तुरपाई कर पाता है? क्या अम्मा यहाँ पे आपको याद आती हैं, मिस होती हैं, या फिर बाकी रिश्तों में भी दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, ये भी एक तरह का रिश्ता ही होता है जहाँ हम घर से ज्यादा वक्त बिता रहे होते हैं?
0: मुझे लगता है मैंने ही नहीं, इस आधुनिक समय में एक बहुत बड़ा दौर गुजरा, उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। कोविड जिस वक्त हम लोग करीब करीब 1.5-2 बरस घरों में रहे, क्या होता है हम ना अपने फेलियर से सीखते हैं, असफलता से सीखते हैं कि हमसे गलती क्या हुई, है ना। हम लोग जिस तेजी से दौड़ रहे थे, मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, उस भारतीय समाज को पहली अक्ल जो है वो कोविड के दौरान आई रिश्तों के बारे में।
1: आलोक, उस दौरान रिश्ते बने भी और रिश्ते खराब भी हुए, खराब रिश्ते अच्छे भी हो गए, अच्छे रिश्ते थोड़े खराब हो गए।
0: आप इसको पॉजिटिव देखिए
1: जी,
0: आप इसको पॉजिटिव यूं देखिए कि लोग रहे और लोगों को रिश्तों की और जिंदगी की समझ में आई। बहुत करीब करीब के लोग जब एक ऐसे उसमें चले गए दौर में, तो लोगों को ये समझ में आया कि यार हम इनके साथ थोड़ा और जी लेते, है ना। तो मुझे लगता है आप इस कार्यक्रम के दौरान कई लेखकों से, कई कलाकारों से बात करेंगी, तो मैंने जितने लोगों से बात की है 90% लोगों ने राशि जी मुझे यही कहा, ये जो दौर था इस दौर ने हमें रिश्तों के करीब ला के रख दिया। मैं एक सीरीज करता हूँ उसमें पिछले,
1: ये सवाल था मेरा जी जी जी, पत्रकारिता में क्या कर रहे हैं,
0: जिनकी 50 साल से ज्यादा की साहित्यिक यात्रा है उनके मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ इन दिनों, उसमें मैंने जावेद अख्तर साहब से बात की।
1: ये बात हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके पसंद का एक गीत सुनते हुए आगे बढ़ते,
0: जावेद अख्तर साहब की बात चली है तो क्यों ना फिर उन्हीं का गाना सुन लिया जाए।
1: जरूर, कौन सा गीत?
0: जावेद साहब की गजल सुनवा दीजिए जो मुझे बहुत अजीज है। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी।
1: आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो सेलेब्स और आज हमारे सेलिब्रिटी हैं जाने माने पत्रकार और शायर आलोक श्रीवास्तव। उनसे बातचीत कर रही हूं मैं, आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। हाँ, तो आप बता रहे थे जावेद साहब के बारे में।
1: तो मैं जब उनको इंटरव्यू कर रहा था तो ऑफिशियली उन्होंने बोला कि भाई ये कोविड ने तो हमको बहुत करीब ला दिया अपने घर, वरना हम तो भागते घूम रहे थे। मतलब वो शबाना जी के हवाले से बात कह रहे थे। तो आपका सवाल ये था कि रिश्तों के बारे में, मैं ये पूरी भूमिका और उसके बाद सिर्फ ये कहूंगा कि आप कितना भी मसरूफ रहिए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्यों किसी और का एग्जाम्पल दूं, मैं अपने ही घर का एग्जाम्पल देता हूं कि एक रोज अंशल 2 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया। तो मेरे स्वभाव में हल्का सा कि अरे कैसे, 2 दिन का बोला था, 1 दिन और उसने एक्सटेंड कर लिया, क्यों 1 दिन एक्सटेंड कर लिया ये। तो मेरी जो पत्नी है नीतू, उन्होंने कहा अच्छा वो घर में रहता है तो आप बात नहीं करते हैं। तो मैंने ये कहा, मैं कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे बात करता हूँ नहीं करता, या वो मुझसे बात कर पाता है नहीं कर पाता, फर्क इससे पड़ता है कि मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो बेसिकली बात ये है कि कंसर्न आपका जो है ना, कि जो भी आपके अपने हैं, आपके अपने रिश्ते हैं, उनसे आपका कंसर्न जो है शार्प होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने आप से निकल के अपने सामने जो एक रिश्ता है उसमें भी आत्मसात होके अपने आप को देखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि रिश्ते जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं आपको बनाने सजाने संवारने में, आपकी जिंदगी को। आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपको मोटिवेट करने में, आप भटकते हैं तो आपको राह पे लाने में।
0: नीतू कहाँ कैसे मिली आपको? मैंने सुना था वो बिल्कुल आपके करीब थी, लेकिन वर्ष लग गए ये जानने के लिए। यही मेरी,
1: बड़ा दिलचस्प था, मेरी इधर उधर बातें चल रही थी, हम लोगों की अरेंज मैरिज है दोनों की,
0: लेकिन तो जानते थे दोनों एक दूसरे।
1: जी जी जी, उनके जो भाई हैं वो मेरे साथ पढ़ते थे स्कूल लाइफ में, उसके बाद हम लोग सब अलग अलग हो गए। करीब 10 बरस में हमारा कोई रابطہ नहीं था। जब मेरे विवाह की बातें चली और इधर उधर का सब देखा जा रहा था, तो मेरे जो मुझसे बड़े भाई थे जिनका देहांत हो गया, तो एक रोज चूंकि संयुक्त परिवार है तो एक दो घर में घमासान हो गई, माता पिता नहीं थे। तो
0: भाई ने किस बात पे
1: घमासान इस पर हुआ कि भाई माता पिता नहीं है इसका क्या मतलब है, छोटे भाई को किसी से भी ब्याह देंगे, मतलब उसकी पसंद का ख्याल रखा जाएगा। तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने ये कहा कि देखिए साहब ऐसा है, आज से कोई 10-12 बरस पहले मैं घर में जाया आया करता था और उनसे मेरा कोई इस तरह का प्रेम संबंध न रहा, बड़ा आदरणीय सा संबंध था, और अगर वो हो और उनका विवाह न हुआ हो और वो अगर स्वीकार कर लें उनके परिवार के लोग, तो आप जाएं और जाके बात पक्की कर दें, मुझे देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमारे भाई गए और वहां उस समय मोबाइल तो था नहीं, उन्होंने फोन किया, हाँ भाई ये हैं भी और अविवाहित भी हैं, बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा सर अगर वो मान जाए तो आप भी अपनी तरफ से हाँ कर दीजिए और चले आइए।
0: लेकिन ऐसा कैसे आलोक जी कि इतने समय से आप उनको जानते थे, 10 साल का फर्क हुआ बीच में,
1: 10 से 12 साल।
0: हाँ, और आप एक कवि होने के नाते कभी कोई ऐसी
1: नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं, ये पूरी ईमानदारी की बात है। आप ये तो अभी तो आप रेनबो की तरफ से बात कर रही है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से

0: मुझे जानती हैं, तो आप नीतू से भी पूछ सकती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर वो अविवाहित हैं और उनको रिश्ता मंजूर है, उन्होंने भी
1: मतलब जहन में थी कहीं आप
0: जहन में, मैं नहीं कह सकता
1: कि 10 साल के बाद आप कह रहे हमारे साथ में
0: हाँ ये हुआ है
1: जाया करता था।
0: अच्छा देखिए इसमें उनके भी बड़कपन को हमें सलाम करना होगा कि उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर नहीं की कि अच्छा अच्छा आलोक हाँ हाँ वो हमारे यहाँ आते थे और ऐसा, तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि नहीं हमें देखना है फिर हम कंफर्म करेंगे कि भाई इतने 10 बरस में पता नहीं कहीं टूट फूट तो नहीं गए, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ऐसा कोई उन्होंने संदेह जाहिर नहीं किया, ना कोई इच्छा जाहिर की। और ना इधर से मैंने कहा हाँ ठीक है ना भली भांति है अविवाहित है आगे अविवाहित,
1: अगर नहीं रहती है अविवाहित तो
0: वापस आ जाता
1: अच्छा
0: फिर कोई और कर दूंगा खोजते।
1: तो नीतू के लिए कोई गाना?
0: हाँ जरूर
1: चलिए सुनते हैं। तुम

0: थोड़ा सा वापस आपके मुशायरों की तरफ आते हैं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि मुशायरे इतने रात तक अब नहीं होते और आपके तो बहुत सारे सोलो शोज होने लगे हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है?
1: इसके पीछे की वजह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या हुआ है कि देखिए, पहले बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रथाएं और परंपराएं, जैसे पहले रामलीलाएं होती थी, आपको ये भी देखना होगा कि अब तो रामलीलाएं नहीं होती गांवों में, शहरों में। बहुत अच्छे वाले रंगमंच के नाटक होते थे, बहुत कम जगहों पर सिमट के रह गए। और इसी तरह बहुत अच्छे स्तर के कवि सम्मेलन, मुशायरे और बैठकें होती थी, वो भी अब ना के बाद। इसका कारण मैं मानता हूँ आज का जो दौर है, आज की जो जिंदगी है जिसमें मसरूफियत बहुत हो गई है, और जो एंटरटेनमेंट के, मन बहलाने के और ज्ञान अर्जित करने के जो माध्यम है वो बढ़ गए हैं। एक हथेली पे हिंदुस्तान क्या, मतलब पूरा विश्व समझ कर आ गया है। तो जिसे देखना होता है वहां देख लेता है, जिसको ज्ञान अर्जित करना होता है, कुछ को सुनना होता है तो वो वहां पर सुन लेता है। तो अब क्या हो गया है कि हम लोगों की बैठ के सुनने की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जा रही है। इसी तरह क्या हो रहा है कि जॉनर्स इतने हो गए हैं कि पहले पता चला कि साहब एक साल में एक शहर में एक ही कार्यक्रम हो रहा है, कवि सम्मेलन या मुशायरा, बड़े शिद्दत से लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं रातों को रजाइयां लेकर और शॉल लेकर बैठे हुए हैं। अब यह हाल है कि अब शहर में चार चार छह छह प्रोग्राम हो रहे हैं अलग अलग जॉनर के, तो लोग उसमें डिवाइड हो चुके हैं।
0: नहीं, प्रोग्राम्स तो पहले भी हुआ करते थे, चाहे क्लासिकल।
1: तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब लोगों के पास ना तो उतना पैशन रहा है ना पेशेंस रहा है। पैशन रहा है सुनने का, ना पेशेंस रहा है।
0: लेकिन एक कवि होने के नाते, एक शायर होने के नाते, जब दर्शकों के बीच में आप होते हैं, वो जो तालियों की आवाजें होती हैं, वो जो वाहवाही होती है, वो जो दोबारा सुनाने की अपील की जाती है, वो
1: तो अभी भी होती है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप 5,000 के मजमे में पढ़ रहे हैं, आप लाल किले का मुशायरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10,000 की ऑडियंस है, लेकिन आपकी जद में, आपकी निगाहों में वही 100, 200, 300 लोग हैं जिनसे आपका आई कांटेक्ट बन रहा है, और उन्हीं की आपको वाहवाह और दाद और वो सब मुकर्रर इरशाद सब सुनाई दे रहा है। ये ठीक है कि आपने 20,000 के मजमे में पढ़ा, 30,000 के मजमे में पढ़ा, लेकिन आपकी जद में तो वही लोग हैं ना। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ उतने ही लोग हैं जिन्हें आप देख पाते हैं उस 5,000 की भीड़ में भी, वो सिलेक्टेड 100-200 लोग बहुत कंसंट्रेट होकर आपको सुन रहे हैं। तो मुझे तो, मैं सच बताऊं आपको, मुझे तो इसमें ज्यादा लुत्फ आने लगा है। और ये बड़ा कॉम्पैक्ट होता है कि आप जाते हैं, जैसे आप बात कर रही हैं मेरी जर्नी के बारे में, ऐसे बात करते हैं और फिर अपनी प्रतिनिधि रचनाएं सुनाते हैं। आप पर पूरा प्रोग्राम केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है,
0: यानी कि फोकस अच्छा लगता है,
1: फोकस अच्छा लगता है। दूसरी बात, अब मैं इसका एक और रूप बताता हूँ आपको। इसका दूसरा रूप ये भी हो रहा है कि कुछ 2-3 पोएट बैठे हुए हैं। जैसे मैं अमेरिका गया था तो वहां मैं था, जावेद अख्तर साहब थे, और हमारे पड़ोसी मुल्क की एक बहुत ही महजब शायरा थी। हम लोग 2 घंटे पढ़ते थे, लोग तल्लीनता से, फॉलोड बाय डिनर मुशायरा होता था। अमेरिका के 15 शहरों में वो मुशायरे हुए और कविता पाठ हुआ तीनों का, और हमने बहुत एंजॉय किया। 500 की गैदरिंग है कहीं, 700 की गैदरिंग है कहीं, ऑडिटोरियम फुल जैम पैक है कहीं पर, 100-200 लोग भी सुनाए हमने।
0: बहुत ज्यादा समय के लिए आप कब बाहर रहे?
1: मैं अमेरिका के मुशायरा हूँ।
0: कितना वक्त?
1: 2-2 महीना।
0: कई बार अंशुल याद आता है आपको?
1: हाँ बिल्कुल, घर याद आता है। हाँ, मैंने गजल भी कही है कि वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है, वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है, अकेला जब भी होता हूँ मुझे घर याद आता है।
0: बहुत सुंदर। कभी अंशुल ने ये शिकायत की कि पापा आप महीनों बाहर रह जाते हैं और जब मैं 3 दिन के लिए बाहर जाता हूँ तो आप मुझसे शिकायतें करते हैं और कहते हैं कि तुमने एक्सटेंड क्यों कर ली अपनी छुट्टी या कुछ ऐसा?
1: उसका लॉजिक होता है, मैं पैसे कमाने जाता हूँ। तो मेरे पास ये लॉजिक होता है।
0: हाँ, और नीतू जी को क्या लॉजिक देते हैं?
1: नीतू जी के लिए लॉजिक बड़ा क्लियर है। मतलब नीतू जी को हर उस चीज से मोहब्बत है जिससे मुझे स्नेह है, जैसे मेरा मन रमता है। मतलब वो बहुत समर्पित,
0: समर्पित,
1: हाँ
0: मानते हैं,
1: बिल्कुल मानता हूँ, और बहुत समर्पित साथी हैं वो, और अंशुल के लिए, मेरे लिए और अपने परिवार के लिए। और एक जो खूबी मैं उनकी देखता हूँ, दिल्ली हम लोग करीब 20 बरस हो गए आए हुए, और हमारा जो परिवार है वो भोपाल में, विदिशा में रहता है। तो मैं ये गौर करता हूँ कि दोपहर का जो वक्फा है, उन्होंने बहुत ही चतुराई, बहुत समझदारी, बहुत निपुणता के साथ बड़े अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है। आज वो मेरी सबसे बड़ी भाभी से बात करती हैं, कल वो मेरी मझली भाभी से बात करती हैं, परसों मेरी छोटी भाभी से बात करती
0: हैं। रिश्तों को बहुत अच्छे से,
1: बहुत अच्छे से, मैं जैसे रचनाओं में पिरोने की कोशिश करता हूँ, वो अपने संस्कारों में, अपने
0: जिंदगी में,
1: अपनी जिंदगी में पिरो के रखे हुए हैं। और मुझे ये स्वीकार करते हुए बिल्कुल भी मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरे परिवार से मुझसे अधिक वो कनेक्ट रहती हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर एक और गीत सुनने, आपकी पसंद का क्या सुनवा रहे हैं आप?
1: मुझे हौसलों से भरे हुए जो गीत होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जो मोटिवेट करते हैं, तो वो सुनवा रहे हैं।

0: इस गीत पे मुझे याद आया आलोक जी, आपकी ही लिखी एक गजल मुझे याद आती है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। यहाँ ये जानना मैं चाहती हूँ कि ये गजल आपने कब लिखी और ये फासला तय करने के लिए ये जो हौसला मिला आपको वो कहाँ से मिला और ये किस फासले का जिक्र है इसमें?
1: इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है कि बहुत अर्ली एज में मैं जगजीत जी से मिला था और मैंने उनसे कहा कि बस एक सपना है कि मेरी गजल आप गा दें। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, 5 सेकंड ठहरे और कहा कि अच्छा, ऐसे कैसे गा दें, रातों रात स्टार बना दें। थोड़ा सा मश्क करो, थोड़ी मेहनत करो, सीखो गजलों की।
0: आप बहुत करीब थे उनके।
1: बहुत करीब, बाद में तो बहुत, जब मैं दिल्ली आ गया तो उसके बाद तो बहुत उनसे मुलाकातें होती नहीं। तो एक रोज ये हुआ कि उनका फोन आया और उन्होंने कहा, देखो वो तुम्हारा जो शेर है ना कि वो सजा दे के दूर जा बैठा, किससे पूछूं मेरी खता क्या है, जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है आपका क्या है। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कोई 20-21 बरस पुरानी बात है। मैं तो बहुत, जैसा मैं हूँ, जज्बाती हो गया। तो बोले कि लेकिन इसका मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मतलब कुछ था कि बेवफा है कि बावफा क्या है उसके बारे में, सो बड़ा ट्रेडिशनल सा मतलब था। चले कोई बात ऐसी हो जो ठक से दिमाग पे लगे। और उनकी ये थ्योरी थी, वो कहते थे कि जो बात एकदम दिल से निकले वो एकदम दिल पे लगती है, तो वो पोएट्री वो सिलेक्ट करते थे। तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगी कि उस रोज हमने फोन पर करीब करीब 10-12 मतले उनको अलग अलग सुनाए और फिर अचानक से अपनी जिंदगी में झांका कि भाई रिश्ते थे, माँ थी, आसपास के और जो लोग थे जिन्होंने मोटिवेट किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो फिर ये मतला हुआ कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो उन्होंने कहा ये चीज चाहिए थी और ये करीब 10 या 12 मतले कहने के बाद ये मतला हुआ था और ये निकला अंदर से ही, जिंदगी के अपने तजुर्बों से, अपनी जिंदगी के अनुभवों से निकला। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है।
0: जरूर सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में आलोक की ही लिखी है।

0: आलोक जी, पिछले दिनों एक और आपका काम सामने आया राष्ट्रपति के संदर्भ में, और ये जानना चाहूंगी कि वो काम कैसे मिला आपको, और फिर यकीनन बड़ा अलग अनुभव रहा होगा।
1: वो सचमुच में बहुत अच्छा अनुभव था, और उस अनुभव ने मुझे गौरव बहुत दिया। मतलब मैं जैसे होता ना कि आप अपने किसी काम पर बड़े इतराते हैं, है ना, कि ये काम मेरे से अच्छा हो गया।
0: तो ये कैसे आप तक आया, कैसे ये?
1: ये दरअसल राष्ट्रपति भवन जो है वो किसी ऐसे लेखक की तलाश में था जो फिल्म मेकर भी हो। तो वंस अगेन एक शाम राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी जो थे वो बंबई में हमारे एक मित्र के यहाँ बैठे हुए थे, और इत्तेफाक देखिए कि वहीं पे आशुतोष राणा बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमको राष्ट्रपति जी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है, उनकी लाइफ पर,
0: रामनाथ कोविंद
1: जो हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति हुए
0: जी।
1: और उस समय वो राष्ट्रपति भी थे। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए बंबई में जो ये काम कर सके। हम दो बड़े लेखकों को ट्राई कर चुके हैं लेकिन वो उस अपेक्षा तक खरे नहीं उतरे। तो आशुतोष जी ने कहा कि भाई आप बंबई का लेखक और फिल्मकार क्यों तलाश रहे हैं, आपके तो दिल्ली में ही एक लेखक और फिल्मकार है। फिर मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि भाई आपका नाम हमको आशुतोष राणा जी ने सुझाया है। तो मैंने सबसे पहले उन्हें फोन लगाया, धन्यवाद बोला, और फिर मैं राष्ट्रपति भवन गया और महामहिम राष्ट्रपति से मेरी मुलाकात करवाई गई। फिर मुझे ब्रीफ किया गया कि हमको ये पूरी लाइफ जो है परोंख, जहां से वो चले और राष्ट्रपति भवन तक की पूरी यात्रा, उस पर एक सिनेमा बनाना है, उस पर एक फिल्म बनानी है। तो मैंने वो एक 10 मिनट का उनको सेगमेंट बना के दिखाया पूरी फिल्म बनाने से पहले। वो उनको बहुत पसंद आया, ये मेरा सौभाग्य। उन्होंने कहा बिल्कुल यही एक लाइन ऑफ फिल्म है और आप इसको पूरा कीजिए। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जिस राष्ट्र का नागरिक हूँ उसके राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति रहते, मैंने फिल्म बनाई और वो राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल चैनल पर मौजूद है, और उसका बहुत अच्छा प्रीमियम भी हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया उस फिल्म का, और उपराष्ट्रपति जी, इस वक्त जो राष्ट्रपति हैं, इन सब की मौजूदगी में फिर उसकी राष्ट्रपति भवन में स्क्रीनिंग हुई। मेरे लिए एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरे लिए स्वयं के लिए सम्मान की बात,
0: हम सबके लिए सम्मान की बात है। आलोक जी, ये बताएं कि आपकी जो ये रचना धर्मिता है या जो लिखते हैं आप, क्या इसका कोई प्रभाव या इसका कोई अंश अंचल में है?
1: उसको म्यूजिक से बहुत शौक है, और अब आजकल म्यूजिक के साथ साथ वो फिल्म मेकिंग, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, फिल्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट हो गए हैं, और अब वो फिल्म मेकिंग की कुछ क्लासेस ले रहे हैं, टेक्निकली जो क्लासेस हैं वो ले रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि परिवार जो था उसको, मेरे बड़े भाई जिनका जिक्र रह गया, जो बहुत स्थापित गीतकार थे, तो उनसे जो एक परंपरा हमारे यहाँ रचनात्मकता की चली आ रही है, तो वो अब मेरे साथ मेरे बाद अंशल के पास भी चली गई है, तो एक रचनात्मक कार्य में वो भी लगे हैं।
0: जीवन से कितने संतुष्ट हैं आप? ये सब
1: पूरी
0: तरह आपके आसपास है,
1: पूरी तरह
0: जो प्रसिद्धि है, परिवार है, लोग हैं, दोस्त हैं, और इस तरह के काम जब आपको करने को मिलते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब मिलते हैं, जो भी आपने बताया कि महामहिम के ऊपर आपको फिल्म बनानी थी, आपके खुद के वीडियोस बहुत सारे हैं जो मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं।
1: मैंने जैसे चर्चा की शुरुआत में बात हमारी हो रही थी कि हम ना बहुत सारे लोगों के बनाए हुए होते हैं, है ना, हमारे अपने बनने में, हमारी अपने बनने की प्रक्रिया में हम खुद अकेले नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये सोच लें कि यार हम बहुत अच्छा डिजर्व करते थे, हमें वो मिला नहीं, ये मेरी नजर में एक बहुत नेगेटिव थॉट है। आपने उस शख्स को नहीं देखा जो आपके पीछे खड़ा हुआ है और आप सा बनना चाह रहा है, तो आपको ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए।
0: आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म आपके जीवन में बहुत ठहराव और सोचने का नजरिया बदलता है कुछ ऐसा?
1: पूरी तरह से बदलता है। ये बॉटल ये रखी हुई है, आप ये क्यों देख रही हैं कि आधी खाली है? आप ये देखिए ना, ये आधी भरी है, और आप अभी इससे और प्यास बुझा सकते हैं अपनी थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरा ये मानना है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया।
0: ये एक्सेप्टेंस भी है, ये मजबूरी भी है?
1: नहीं, एक्सेप्टेंस है ये। देखिए, हर मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो नाकाम हो जाते हैं, और नाकाम लोग जब बैठ के कोशिश करने वाले की कोशिश को जुगाड़ का नाम देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे भाई, आप कीजिए ना, पूरा वातावरण आपके लिए खुला हुआ है, प्रकृति बाहें फैलाए खड़ी है, आप जाइए काम कीजिए। आप अगर काम नहीं करेंगे, और जिसने काम करके कुछ अर्जित किया है, मैं आज किसी बहुत कामयाब आदमी को कोसने लगूं कि इसने तो ये सफलता इस तरह अर्जित की है, अरे उसने वो किया है, उसने उसके लिए एफर्ट्स किए, उसका ड्रीम था, उसने आपको गिरा के अपना रास्ता नहीं बनाया है, उसने अपना रास्ता बनाया। बड़ी बहुत पुरानी कहावत है कि भैया अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की छोटी मत करो। तो आप अपनी लकीर बड़ी कीजिए और वहां ये विश्वास रखिए कि जो आपको मिल रहा है वो आपकी कैपेबिलिटी के ही मुताबिक मिल रहा है। हो सकता है आप कैपेबल भी ना हो उसके और वो दे दिया आपको देवाधिदेव महादेव ने कि चल भाई रख ले। हो सकता है, मैंने जब शिव तांडव किया जो मैं आपको सुनाते हुए भावुक हुआ, उसका वजह यह है, मैं आपको बताऊं, अभी वो वाला हिस्सा रिलीज नहीं हुआ है, मैं जब शिव तांडव कर रहा था तो उसमें एक शब्द आया, वो शब्द था प्रलीन। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि मुझे वो शब्द के अर्थ नहीं पता थे। मैंने कहा अभी आ रहा है, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिवा शिवम। ये जो नए मैंने श्लोक रचे, अब इसमें प्रलीन शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता था और मैंने इसका प्रयोग कर लिया। जो आपने कहा कि आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, मैं क्यों आ गए थे उसका रीजन बता रहा हूं। एक शब्द जिसका मुझे अर्थ भी नहीं पता मैंने रख लिया और उसका वही अर्थ निकला जो होना चाहिए था वहां पर जरूरी। तो ये क्या है? ये मुझे लगता है कि आपको तो पता है कि आपको ये ज्ञान ही नहीं है, फिर ये कैसे आ गया? तो यानी कोई ना कोई एक सुपर पावर है जो आपसे ये काम करवा रही है, तो आप उसके प्रति कृतज्ञ होइए, धन्यवाद ज्ञापित कीजिए अपनों का, अपने बड़ों का, और आगे बढ़िए। ये मत रोइए कि अरे हम डिजर्व करते हैं मिला।
0: मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए आलोक। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद आने के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेनबो स्लिप्स। आज के अतिथि रहे कवि श्री आलोक श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी सवाई।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

निजे पेश हैं एफएम मुख्य समाचार। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा में अलग गुट का दर्जा मिला। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में एआई और आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी एग्री हैकाथॉन योजना को मंजूरी दी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को का पवित्र अडापा विजय अनुष्ठान आज पुरी में के श्री गुंडिचा मंदिर में श्रद्धापूर्वक समापन। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हार्मूज जलडमरू, मध्य अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। और खेलों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज वाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये थे एफएम मुख्य समाचार।

FM रेनबो जो कि है आकाशवाणी से, और मैं हूं आपके साथ ताहिर। और अब प्रोग्राम शुरू होता है रंगे महफिल। आप सभी का, मेरा यानी ताहिर का आदाब।

आपके साथ मैं हूं ताहिर और प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। जगजीत सिंह की आवाज में अगली ये गजल आपके नजर करता हूं।

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं आपके साथ। आहिर प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा, जिसे हम कहते हैं रंगे महफिल। कभी किसी पुरानी इमारत को गौर से देखिए, उसकी दीवारें भी कहानियां संभाल के रखती हैं, है ना। इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, अंदर से मासूम रहता है, बहुत मासूम रहता है। इसीलिए अच्छी गजलें सुनते वक्त हर आदमी अपनी अलग कहानी सुन रहा होता है।

जिंदगी की सबसे कीमती चीज शायद वक्त भी नहीं। कैसा लगता है आपको, वक्त कीमती है? होता है, लेकिन वो लोग होते हैं जिनके साथ वक्त की का एहसास ही होता ही नहीं। फिर चाहे बात 5 मिनट की हो या 5 साल की, सफर की लंबाई नहीं उसकी गर्माहट याद रह जाती है। और गजलें हमें बार बार इसी गर्माहट तक ले आती हैं।

उम्र बिता दी जिनकी तलाश में, उम्र बिता दी जिनकी तलाश में, वो मिले तो सही पर किसी और लिबास में। जिंदगी में कुछ लोग और कुछ मौके हमें उस मोड़ पर छोड़ जाते हैं जहां से आगे का सफर सिर्फ अकेले ही तय करना होता है, है ना। लगता है जैसे वक्त चल रहा है पर हम वहीं ठहर गए हैं। अगर आप भी आज किसी ऐसी उलझन में हैं तो सुनिए ये अगली गजल, शायद ये आपके दर्द को थोड़ी जबान दे दे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक आप प्रोग्राम सुन रहे हैं रंगे महफिल, और मैं हूं आपके साथ ताहिर। जनाब कभी कभी जिंदगी इतनी भरी भरी लगने लगती है कि ना कि थक कर बैठने का मन करता है, लगता है कि सबको खुश रखते रखते हम खुद भी अपने आप को भूल गए हों। होता है ना, जिंदगी आजकल ऐसी है, जिंदगी के इसी बिखरे हुए रंग को समेटते हुए सुनते हैं अगली पेशकश।

जनाब, हर मुस्कुराहट के पीछे करोना नहीं दिखता, कायनात को तो बस खिलौना दिखता है। रात का ये पहर उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है जो दिन भर सबके सामने मुस्कुराते रहे, पर इस अंधेरे में उनके आंसू उनकी मर्जी के बिना बह निकलते हैं। अगर इस वक्त आपकी आंखें भी नम है तो जानिए कि आप अकेले नहीं हैं, और भी है जो रो रहा है, गमजदा है। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। चलिए इस तन्हाई को गजल का साथ दे देते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने बचपन में लौट जाएं, उन बातों को याद करें जो होती थी बचपन में।

वक्त हो चला है दोस्तों अब आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है कि रात के सन्नाटे में गजलों ने आपके दिल को सुकून जरूर दिया होगा। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रंगे महफिल का ये सफर यहीं रोकते हैं, पर हमारा ये रिश्ता दिल से दिल तक हमेशा कायम रहेगा। मैं आपको दोस्त ताहिर आपसे इजाजत लूंगा, शब ग़र कहूंगा और यही कहूंगा कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात फिर से होगी।

प्रस्तुत है एफएम मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा में अलग गुट का दर्जा मिला। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की योजना। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। राजस्व आम सूचना निदेशालय ने 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की। इसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजिटल डीजी लॉकर परिणाम पोर्टल result.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अडापा विजय अनुष्ठान पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमरीका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमले। और खेलों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बारगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात 2:30 बजे मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी दोस्त कुसुम के साथ। जी हाँ, और अब समय है आकाशवाणी। जी हाँ, लीजिए सुनते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत।

सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ना जाने।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

0: थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
1: मैंने क्या किया?
0: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
1: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
0: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
1: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
0: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
1: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
0: मेरे बारे में?
1: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
0: हटो चापलूस कहीं के।
1: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
0: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई

प्रस्तुत है एफएम मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा में अलग गुट का दर्जा मिला। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत एस्टोनिया के बीच नवाचार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। कहा, भारत की तेज आर्थिक वृद्धि वैश्विक निवेशकों के लिए बड़ा अवसर। मणिपुर में असम राइफल्स ने नागरिक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसका मकसद समुदायों के बीच भरोसा बढ़ाना, युवाओं को सशक्त बनाना और सुरक्षा बलों के साथ जनता का सहयोग बढ़ाना था। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालताल के दोनों मार्गों पर अस्थायी रूप से बंद रहेगी। हार्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमले। और खेलों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बारगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात 2:30 बजे मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज के साथ और अब समय हो चुका है सुहानी रात कार्यक्रम का, लीजिए सुनते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एफएम मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा में अलग गुट का दर्जा मिला। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत एस्टोनिया के बीच नवाचार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। कहा, भारत की तेज आर्थिक वृद्धि वैश्विक निवेशकों के लिए बड़ा अवसर। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों पर अस्थायी रूप से बंद रहेगी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका ईरान का युद्ध तेज हुआ। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमले। अमेरिका की सेना ने बताया है कि जॉर्डन में एक सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी हमले के बाद उसके दो सैनिकों की मौत हो गई और एक सैनिक लापता है। और खेलों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बारगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात 2:30 बजे मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ के साथ और अब समय है कार्यक्रम भुलाए न बने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पेश है अब तक के मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र 22 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा में अलग गुट का दर्जा मिला। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ओएमआर शीट की जांच और समीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों और अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी की। कहा, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों पर अस्थायी रूप से बंद रहेगी। हार्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमले। अमेरिका की सेना ने बताया है कि जॉर्डन में एक सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी हमले के बाद उसके दो सैनिकों की मौत हो गई और एक सैनिक लापता है। और खेलों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाई ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए मियामी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल

0: और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा में अलग गुट का दर्जा मिला। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ओएमआर शीट की जांच और समीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों और अभिभावकों के लिए परामर्श जारी की। कहा, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों पर अस्थायी रूप से बंद रहेगी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमले। अमेरिका की सेना ने बताया है कि जॉर्डन में एक सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी हमले के बाद उसके 2 सैनिकों की मौत हो गई और 1 सैनिक लापता हैं। और खेलों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाई ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए मियामी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रही हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मंगल भवन मंगल हारी,
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र कल से 13 अगस्त तक चलेगा। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा में अलग गुट का दर्जा मिला। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ओएमआर शीट की जांच और समीक्षा प्रक्रिया को लेकर छात्रों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। कहा,

फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग से 5 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। खराब मौसम की चेतावनी के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों पर अस्थायी रूप से बंद रहेगी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ, प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमले। अमेरिका की सेना ने बताया है कि जॉर्डन में एक सैन्य ठिकाने पर हुए ईरानी हमले के बाद उसके 2 सैनिकों की मौत हो गई और 1 सैनिक लापता है। और खेलों में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाई ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए मियामी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।